आपके झाबुआ की आवाज रेडियो टेंटिया भील 90.8 FM लाए हैं सुबह सुबह के शुभ विचार और भजन। बने रहे हमारे साथ और सुनते रहें।

कबीर दास जी की यह अमृतवाणी कहती है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, छोटा हो चाहे बड़ा, अमीर हो अथवा गरीब, जीव हो जंतु हो, सबका अंत यही है। एक दिन सब छोड़ छाड़ कर इस मिट्टी में वापस मिल जाना है।

कबीर दास जी ने फरमाया कि मनुष्य को चाहिए कि वो सदा कर्मठ बना रहे और अपने कर्म करने को सदा तत्पर रहे। यदि हम अपने कर्मों को कल पे टालने का प्रयत्न करेंगे तो हो सकता है कि वो काज कभी पूर्ण ही नहीं हो, क्योंकि कल तो किसी ने भी नहीं देखा। इसीलिए कोई भी काज कल पर कभी भी नहीं टालना चाहिए और अपने कर्म को आज ही पूर्ण कर लेना चाहिए।

निर्गुण भक्ति की ज्योत प्रज्वलित करते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इन सब जगह जाने से ईश्वर या खुदा कभी नहीं मिलते। यदि अपने आराध्य को प्राप्त करना है तो उन्हें अपने स्वयं के भीतर खोजना चाहिए।

कबीर दास जी कहते हैं कि हर प्राणी को अपनी वाणी इतनी मधुर रखनी चाहिए कि स्वयं तो उसका मन शीतल हो ही, जो उसकी बात सुन रहा है उसका हृदय भी शीतल हो जाएगा।

कबीर दास जी कहते हैं कि बहुत अधिक धन होने से अथवा बहुत अधिक सत्ता बल होने से कोई बड़ा नहीं होता, मनुष्य बड़ा केवल अपने सद्गुणों से होता है।

संत कबीर दास जी कहते हैं कि दूसरों में सदा बुराई ढूंढने व देखने वाला मनुष्य कभी भी ईश्वर को प्रिय नहीं होता। अतः मानव जाति का यह परम कर्तव्य है कि वो प्रभु द्वारा निर्मित हर वस्तु का, चाहे वो छोटी हो अथवा बड़ी, उसका सम्मान करे। और फिर भी यदि उसका मन नहीं मानता तो सबसे पहले स्वयं के भीतर झांके और अपनी बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न करे।

बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो।

तो चलिए दोस्तों, इन्हीं भजनों के साथ हम सभी का दिन शुभ हो। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा, आज के सुखदायक दिन के बाद कल सुबह मैं फिर प्रभु के नाम के साथ, प्रभु के भजनों के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप हैं आप ही के झाबुआ की आवाज, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन FM रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। आइसलैंडिक वुमेन्स स्ट्राइक, एक दिन ने बदली सोच। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि सिर्फ एक दिन, हाँ बस एक दिन, पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है? हम 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट्स, फ्लावर्स, स्पीचेस, अप्रिसिएशन मैसेजेस और क्या नहीं, लेकिन इस सेलिब्रेशन के पीछे एक लंबी कहानी है, स्ट्रगल की कहानी, वॉइस की कहानी, और एक ऐसे दिन की कहानी जिसने सबको हिला दिया। 1975, देश आइसलैंड। अब आइसलैंड छोटी सी कंट्री है, पॉपुलेशन कम है, लेकिन जो वहां हुआ वो दुनिया की सबसे पावरफुल इक्वालिटी मूवमेंट्स में से एक माना जाता है। 24 अक्टूबर 1975 को आइसलैंड की लगभग 90% वुमेन ने डिसाइड किया कि आज हम काम नहीं करेंगे। और ध्यान दीजिए, सिर्फ ऑफिस का काम नहीं, घर का काम भी नहीं, ना कुकिंग, ना क्लीनिंग, ना चाइल्ड केयर, ना ऑफिस अटेंडेंस। एक दिन के लिए वुमेन सिंपली स्टॉप्ड। इमेजिन कीजिए, स्कूल्स डिस्टर्ब हो गए, ऑफिसेज हाफ एम्प्टी हो गए, फैक्ट्रीज रुक गई, बच्चे फादर्स के साथ ऑफिसेज में बैठे हुए, टेलीफोन एक्सचेंजेस पर क्योस, न्यूज़पेपर्स लेट और क्या नहीं। एक दिन में पूरे देश को समझ आ गया कि अनपेड लेबर होता क्या है, इनविजिबल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और वुमेन के बिना सिस्टम कैसे कोलैप्स हो सकता है। और सबसे पावरफुल बात, ये स्ट्राइक वायलेंस नहीं थी, ये अग्रेसिव भी नहीं थी, ये डिग्निफाइड थी, साइलेंट थी, लेकिन इम्पैक्ट अर्थ शैटरिंग। इस स्ट्राइक के सिर्फ एक साल बाद 1976 में आइसलैंड ने इक्वल राइट्स एक्ट पास किया, और 1980 में आइसलैंड ने दुनिया की पहली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड फीमेल प्रेसिडेंट दी, विद दिस फिन बोगा डोटीर। सोचिए, एक दिन की कलेक्टिव एक्शन ने पॉलिटिकल लैंडस्केप बदल दिया। और इसी दौर में 1975 को यूनाइटेड नेशंस ने भी ऑफिशियली 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में अडॉप्ट किया। वुमेन्स डे सिर्फ एक ग्रीटिंग नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि जब वुमेन यूनाइट होती हैं तो नरेटिव्स शिफ्ट होते हैं, और जब हम वुमेन्स डे पर एम्पावरमेंट बोलते हैं तो याद रखिए, एम्पावरमेंट कोई गिफ्ट नहीं होता, वो क्लेम किया जाता है। आइसलैंड की वुमेन ने हमें यही सिखाया कि कभी कभी दुनिया को समझाने के लिए लाउड स्पीच नहीं, सिर्फ एक साइलेंट पॉज काफी होता है। पॉज कर देखिए,

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारी हंसने का समय।
1: मैंने डिसाइड किया मैं डिजिटल डिटॉक्स करूंगी। फोन साइड पे रखा, डीप ब्रेथ ली। 5 मिनट बाद ऐसी क्यूरियोसिटी हुई कि मैंने फिर से फोन उठाया और चेक किया लोग क्या कर रहे होंगे मेरे बिना। फोन उठाया, किसी ने कोई मैसेज नहीं किया था। तब मुझे समझ आया, मेरा डिटॉक्स नहीं, दुनिया का पीस चल रहा है।
2: मैं उनका चेहरा देखकर ही समझ जाती थी कि वो मुझे हंसाने की कोशिश करने वाले हैं, और पहले से ही कह देती थी, हाँ किशोरदा, पहले गाना फिर हंसना। वाकई उनके साथ गाने में बड़ा मजा आता था।

इंडिया की असली शेरनियां, ग्राउंड लेवल हीरोज, या कहूं शीरोज। दोस्तों, वुमेन्स डे के दिन हम अक्सर सेलिब्रिटीज को सेलिब्रेट करते हैं, फिल्म स्टार्स, पॉलिटिशियंस, सीईओज। लेकिन आज मैं आपको मिलवाना चाहती हूं उन वुमेन से जो हेडलाइंस में कम आती हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर रेवोल्यूशन क्रिएट करती हैं। कहानी शुरू होती है बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के गांव से। नाम बीना देवी, लोग उन्हें कहते हैं मशरूम महिला। अब मशरूम सुनते ही आपको लगता होगा छोटा सा कोई क्रॉप, लेकिन बीना देवी ने मशरूम को लाइवलीहुड रेवोल्यूशन बना दिया। उन्होंने खुद मशरूम कल्टीवेशन सीखा, फिर गांव की औरतों को ट्रेनिंग दी, फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए, फिर मार्केट लिंकेजेस क्रिएट किए। आज उनके इनिशिएटिव्स हजारों फैमिलीज की इनकम इंप्रूव कर रहे हैं। उन्हें मिला नारी शक्ति पुरस्कार, लेकिन अवार्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट था कॉन्फिडेंस। एक गांव की वुमन ने ये प्रूव किया कि एम्पावरमेंट शब्द से नहीं, स्किल से आता है। अब एक और कहानी, मालविका अय्यर। चाइल्डहुड एक्सीडेंट में दोनों हाथ खो दिए, लाइफ रुक सी गई, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी रीराइट की, फिर से लिखी। जी हाँ, फिर से लिखी। आज वो डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, यूएन फोरम्स पर बोल चुकी हैं। उन्होंने एक बार कहा था, डिसेबिलिटी इज नॉट इनेबिलिटी, इट इज अ डिफरेंट एबिलिटी। क्या बात है। फिर एक और नाम, कलावती देवी जी का, बिहार की ही एक और वुमन। उन्होंने मैसोनरी सीखी और 4000 से ज्यादा टॉयलेट्स बनाए स्पेशली वुमेन सेफ्टी के लिए। सोचिए, सैनिटेशन, डिग्निटी, सेफ्टी, ये सभी एम्पावरमेंट के सही मायने हैं, सही मकसद हैं, सही मतलब हैं। वुमेन्स डे सिर्फ ग्लास सीलिंग तोड़ने की बात नहीं करता दोस्तों, ये मड हाउसेस में डिग्निटी बनाने की भी बात करता है। इंडिया में आज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बढ़ रही हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रूरल इकोनॉमी का बैकबोन बन चुके हैं, पुलिस फोर्सेस में वुमेन रिप्रेजेंटेशंस ग्रो हो रहे हैं, स्टार्टअप्स वुमेन लेड हो रहे हैं। पर सबसे बड़ा चेंज क्या है जानते हैं? माइंडसेट। आज की लड़की सिर्फ परमिशन नहीं मांगती, वो पार्टिसिपेशन क्लेम करती है। और वुमेन्स डे हमें ये याद दिलाता है कि हर विलेज, हर मोहल्ला, हर शहर में एक बीना देवी है जो बस एक अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रही है। देकर देखिए।

चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारी हंसने का समय। लड़कियां बोलती हैं, मैं बस 5 मिनट में रेडी हो जाऊंगी, और साइंस आज तक रिसर्च कर रहा है कि ये 5 मिनट अर्थ के हैं या जुपिटर के, क्योंकि जुपिटर का 1 दिन 10 घंटे का होता है। बस वही वाला 5 मिनट होता होगा ये शायद।

राइट टू सिट, एक कुर्सी की क्रांति। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत अजीब सा सवाल करना चाहती हूँ। आपने कभी किसी मॉल, किसी कपड़े की दुकान या ज्वेलरी स्टोर में सेल्स वुमन को नोटिस किया है? शायद नहीं। वो पूरा दिन खड़ी रहती है, कभी 6 घंटे, कभी 8, कभी 10 घंटे तक। और हम बस आते हैं, कपड़े ट्राई करते हैं, उल्टे सुलटे जैसे भी उन्हें वहीं छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन केरला की कैलिकट शहर में एक औरत ने एक दिन ये डिसाइड किया कि ये नॉर्मल नहीं है। उनका नाम है विजी पली थोड़ी। उन्होंने देखा कि शॉप्स में मेल स्टाफ को चेयर्स मिलती हैं, पर फीमेल सेल्स स्टाफ को पूरा दिन खड़ा रहना पड़ता है। रीजन, कस्टमर के सामने बैठना अच्छा नहीं लगता। सोचिए, डिग्निटी का मेजर भी जेंडर के हिसाब से। विजी खुद एक वर्कर थी, उन्होंने इस इनइक्वालिटी को अनएक्सेप्ट किया। उन्होंने डिमांड की बस एक सिंपल चीज की, राइट टू सिट। जी हाँ, बैठने का अधिकार। कुर्सी मांगना कोई रेवोल्यूशन लगता है? नहीं ना। लेकिन जब सिस्टम के अगेंस्ट जाते हो तो छोटी छोटी डिमांड्स भी क्रांति बन जाती हैं। विजी ने वुमेन वर्कर्स को ऑर्गेनाइज किया, मीटिंग्स की, प्रोटेस्ट्स किए, मीडिया को इन्वॉल्व किया, शॉप ओनर्स को कन्फ्रंट किया, और सबसे इम्पोर्टेंट, उन्होंने वुमेन को ये एहसास दिलाया कि कंफर्ट भी इम्पोर्टेंट है, उनका राइट है। हमें लगता है एम्पावरमेंट मतलब सीईओ बनना, रॉकेट साइंटिस्ट बनना या पुलिस ऑफिसर बनना। बिल्कुल सही, पर कभी कभी एम्पावरमेंट का मतलब होता है मुझे बैठने दो। लॉन्ग वर्किंग आवर्स में खड़े रहने से हेल्थ इश्यूज होते हैं, जैसे कि वर्कप्लेस पेन, जॉइंट पेन, क्रॉनिक फटीग। पर इससे भी ज्यादा डेंजरस होता है नॉर्मलाइजेशन ऑफ डिस्कम्फर्ट। विजी ने ये नॉर्मलाइजेशन तोड़ दिया। आखिरकार केरला में पॉलिसीज चेंज हुई, शॉप्स को सीटिंग्स प्रोवाइड करनी पड़ी। एक कुर्सी सिर्फ फर्नीचर नहीं थी, वो एक स्टेटमेंट थी। और 2018 में बीबीसी ने विजी को अपनी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन की लिस्ट में इंक्लूड किया। जी हाँ, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, एक कुर्सी के लिए लड़ी गई लड़ाई के लिए। दोस्तों, वुमेन्स डे पर जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो सिर्फ बोर्डरूम्स की नहीं, रिटेल फ्लोर्स की भी बात करें, क्योंकि चेंज तब कंप्लीट होता है जब वो हर लेवल पर हो। आज अगर आप किसी दुकान में जाओ और देखो कि सेल्स वुमन बैठी है, तो याद रखना वो कुर्सी किसी ने जीती है, और हर जीती हुई कुर्सी एक जीती हुई इज्जत होती है। देखकर देखो।

चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय। पहले लोग घर की घंटी बजाते थे, अब मोबाइल की घंटी बजती है सारा दिन। पहले लोग कहते थे कौन आया है, अब कहते हैं कौन ऑनलाइन आया है। रिश्ते भी अब ऐसे ही हो गए हैं, सामने बैठकर बात नहीं करेंगे पर लास्ट सीन जरूर चेक करेंगे।

0: है।
1: मलाला, एक आवाज जो गोली से भी ज्यादा पावरफुल थी। दोस्तों, कभी कभी दुनिया बदलने के लिए आर्मी चाहिए नहीं होती, कभी कभी सिर्फ एक आवाज काफी होती है। ये कहानी है एक लड़की की जो स्कूल जाना चाहती थी, बस इतनी सी बात, छोटी सी बात। ईयर 2012, एक 15 साल की लड़की मलाला यूसुफ़ज़ई। उसने सिर्फ कहा था कि लड़कियों को पढ़ने का हक है। सिंपल सी बात है, लेकिन कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। तालिबान ने अनाउंस कर दिया कि लड़कियों को स्कूल नहीं जाना चाहिए और लड़कियां स्कूल नहीं जाएंगी। सोचिए, जब आपके सपने पर किसी और का हक हो जाए, कोई और उस पे अपनी मोहर लगा दे, तो कैसा लगता होगा? मलाला ने ब्लॉग लिखना शुरू किया। बीबीसी उर्दू के लिए अनोनिमसली लिखती गई और बस लिखती गई। वो बताती थी कि कैसे स्कूल्स बंद हो रहे थे, कैसे लड़कियां डर के मारे घर में बैठी हैं, कैसे एजुकेशन एक लग्जरी बन गई है। और फिर 9th अक्टूबर 2012 स्कूल बस एक मास्क्ड गनमैन चढ़ा। उसने पूछा, मलाला कौन है? और फिर गोली चली। एक 15 साल की बच्ची को सिर्फ इसीलिए शूट कर दिया गया क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ से शुरू होती है। मलाला बच गई, सर्जरी हुई, वो यूके शिफ्ट हुई और फिर उसने चुप रहना चूज नहीं किया, कभी नहीं। उसने दुनिया के सामने खड़े होकर कहा, वन चाइल्ड वन टीचर वन बुक वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड। यानी एक बच्चा, एक शिक्षक, एक किताब और एक कलम पूरा देश बदल सकता है, पूरी दुनिया बदल सकता है। जिसे चुप कराने के लिए गोली चलाई गई थी, उसकी आवाज और तेज हो गई। ये सिर्फ हिम्मत की कहानी नहीं है, ये एजुकेशन के हक की कहानी है। ये इस बात की कहानी है कि लड़कियां सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं, दुनिया की जिम्मेदारी भी संभाल सकती हैं। मलाला ने मलाला फंड शुरू किया जो वर्ल्ड ओवर गर्ल्स एजुकेशन के लिए काम करता है। आज भी दुनिया में 100 मिलियन से ज्यादा लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती और हर बार जब कोई लड़की क्लासरूम में एंटर करती है, वो सिर्फ खुद नहीं, अपनी फ्यूचर जनरेशंस को एम्पावर करती है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर हम अक्सर सेलिब्रेट करते हैं सक्सेस स्टोरीज, लेकिन मलाला हमें एक और चीज सिखाती है, रेजिस्टेंस। कभी कभी फेमिनिज्म लाउड स्लोगन्स नहीं होता, कभी कभी फेमिनिज्म बस यही होता है कि मन में डर को जीते और उस डर से आगे बढ़े। मैं डर के नहीं रहूंगी, बंद के नहीं रहूंगी और कोई मुझे रोक नहीं सकता अपने हक की लड़ाई लड़ने से। और अगर आप गौर करें, मलाला की कहानी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, ये हर उस जगह की कहानी है जहां लड़कियों को कहा जाता है ये तुम्हारे लिए नहीं है। और हर बार जब कोई लड़की कहती है मैं ट्राई करूंगी, वहीं से रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। दोस्तों, वुमेन्स डे सिर्फ रोजेस और विशेस का दिन नहीं, ये उन आवाजों को याद करने का दिन है जो सिस्टम के अगेंस्ट खड़ी हुई, गिरी, संभली, फिर खड़ी हुई। और अगर आज भी किसी घर में एक लड़की अपने सपने के लिए लड़ रही है, तो याद रखिए, हर मलाला पहले एक नॉर्मल लड़की होती है जिसकी बहुत नॉर्मल सपने होते हैं और इच्छाएं होती हैं। फर्क सिर्फ ये होता है, सिर्फ इतना सा कि वो डर से बड़ा सपना चूज करती है। तो आज आपके पास कोई लड़की अगर है जो पढ़ना चाहती है, कुछ नया सीखना चाहती है, अपना करियर बनाना चाहती है, उसे रोकिए मत, उसका सपोर्ट सिस्टम बनिए। क्योंकि जब एक लड़की पढ़ती है तो सिर्फ एक लाइफ नहीं बदलती, एक पूरा परिवार, एक पूरा समाज उसके साथ आगे बढ़ता है। और शायद इसीलिए एक आवाज, एक पेन, एक क्लासरूम कभी कभी दुनिया की सबसे पावरफुल चीज होती है। इस्तेमाल कर कर देखिए।

डेनाली, जब महिलाओं ने सिर्फ पहाड़ नहीं सोच भी चढ़ ली। दोस्तों, कभी कभी सबसे ऊंचा पहाड़ पत्थर का नहीं होता, सोच का होता है। 1970, नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा माउंटेन डेनाली और एक ऑल वुमेन एक्सपेडिशन टीम ने ये डिसाइड किया, हम समिट करेंगे। उस जमाने में माउंटेनियरिंग सिर्फ मेल डोमिनेटेड थी। लोग कहते थे वुमेन फिजिकली वीक होती हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस हैंडल नहीं कर सकती। और ये सिर्फ वेदर का चैलेंज नहीं था, ये परसेप्शन का चैलेंज था। ग्रेस होमोन और उनकी टीम ने ट्रेनिंग की, प्रेपरेशन की और फिर डेनाली के बेस कैंप तक पहुंची गई। माइनस टेम्परेचर्स, हैवी इक्विपमेंट्स, स्नो स्टॉर्म्स, एल्टीट्यूड सिकनेस का स्ट्रेस, पर उनसे ज्यादा हैवी था सोसाइटी का सारा डाउट। हर स्टेप के साथ वो सिर्फ माउंटेन क्लाइंब नहीं कर रही थी, वो स्टीरियोटाइप्स तोड़ रही थी। और जब उन्होंने समिट अचीव किया, वो सिर्फ एक ज्योग्राफिकल विक्ट्री नहीं थी, वो एक सिंबॉलिक विक्ट्री थी। उन्होंने प्रूव किया करेज का जेंडर नहीं होता, स्ट्रेंथ स्टीरियोटाइप से नहीं डिसाइड होती। आज हम वुमेन माउंटेनियर्स को एवरेस्ट, K2, अंटार्कटिका एक्सपेडिशंस में जाते अक्सर देखते हैं, पर ये रास्ता किसी ने सबसे पहले बनाया था ये शायद बहुत कम ही लोगों को पता है। और हर समिट के पीछे एक अनसीन स्ट्रगल होता है। डेनाली एक्सपेडिशन ने माउंटेनियरिंग कम्युनिटी को फोर्स किया रीथिंक करने के लिए। क्या हम टैलेंट को जेंडर के लेंस से देख रहे हैं? वुमेन्स डे पर जब हम ग्लास सीलिंग की बात करते हैं तो याद रखिए, कुछ सीलिंग्स स्नो से बनी होती हैं और कुछ माइंडसेट से। और जब वुमेन उन दोनों को तोड़ देती हैं, तो दुनिया का नया एल्टीट्यूड मिलता है, एक नई ऊंचाई मिलती है। दोस्तों, हर वुमन की लाइफ में एक डेनाली होता है, एक चैलेंज जो लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, पर जब वो करती हैं तो सिर्फ अपनी नहीं पूरी जनरेशन की हाइट को बदल देती हैं, बढ़ा देती हैं। और शायद इसीलिए वुमेन्स डे सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं, एलिवेशन है। करके देखिए,

फ्रंटलाइन फियरलेस वुमेन हु वेयर करेज। दोस्तों, जब हम वुमेन्स डे की बात करते हैं तो हम सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, लेकिन आज मैं आपको उन वुमेन की कहानी सुनाना चाहती हूँ जो यूनिफॉर्म पहनती हैं, पुलिस यूनिफॉर्म। दिल्ली पुलिस में आज हजारों वुमेन ऑफिसर्स सर्व कर रही हैं। सोचिए, नाइट पेट्रोल, रेस्क्यू ऑपरेशंस, क्राउड कंट्रोल, इन्वेस्टिगेशंस, ये सिर्फ जॉब डिस्क्रिप्शंस नहीं है, ये रिस्क डिस्क्रिप्शंस हैं। सोच कर देखिए। एक ऑफिसर ने शेयर किया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में जब उन्होंने एक छोटी बच्ची को रेस्क्यू किया और उसे उसकी माँ के गले लगते देखा तो सारी थकान खत्म हो गई। उन्होंने कहा, फियर तो हर ड्यूटी का पार्ट है, लेकिन पर्पस उससे बहुत बड़ा है। वुमेन ऑफिसर्स को सिर्फ क्रिमिनल्स का सामना नहीं करना पड़ता, कभी कभी स्टीरियोटाइप्स का भी करना पड़ता है। फील्ड वर्क टफ है, नाइट ड्यूटी सेफ नहीं, फैमिली का क्या, लेकिन आज वुमेन ऑफिसर्स क्राइम ब्रांचेस लीड कर रही हैं, साइबर सेल्स हैंडल कर रही हैं, एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट्स चला रही हैं। और सिर्फ ये दिल्ली की कहानी नहीं, इंडियन एयरफोर्स में वुमेन फाइटर पायलट्स, आर्मी में वुमेन कमांडिंग ऑफिसर्स, स्पोर्ट्स में वुमेन वर्ल्ड चैंपियंस, स्टेम फील्ड्स में साइंटिस्ट्स, और हर जगह एक चीज कॉमन है, डिटर्मिनेशन। इंटरनेशनल वुमेन्स डे की हिस्ट्री लेबर राइट्स मूवमेंट से शुरू हुई थी, वोटिंग राइट्स, इक्वल पे, फेयर वर्किंग आवर्स। आज हम उस जर्नी का एक्सटेंशन देख रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन, लीडरशिप, विजिबिलिटी। लेकिन सफर कंप्लीट नहीं है अभी, जेंडर पे गैप एग्जिस्ट करता है, बहुत बड़ा पे गैप, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करती है। इसीलिए वुमेन्स डे सिर्फ सेलिब्रेशन का नाम नहीं, कॉन्वर्जेशन भी है। जब एक पुलिस वुमन रेस्क्यू करती है, एक साइंटिस्ट रॉकेट लॉन्च करती है, एक एंटरप्रेन्योर अपना स्टार्टअप बिल्ड करती है, तब वो सिर्फ अपना ड्रीम नहीं जीती, वो नेक्स्ट जेनरेशन का बिलीफ बिल्ड करती है। इस वुमेन्स डे पर एक काम तो जरूर कीजिए, सिर्फ क्लैप मत कीजिए, सपोर्ट कीजिए, एनकरेज कीजिए। और जब भी किसी वुमन को ग्रो करते देखें, खुद की सक्सेस को नॉर्मल बना दीजिए, क्योंकि इक्वालिटी जब नॉर्मल लगने लगे तब ही रियल प्रोग्रेस होती है। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

आइए दोस्तों एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ। एक था भिखारी। रेलवे में सफर करते हुए भीख मांगने के दौरान एक बार एक सूट बूट पहने हुए सेठ जी से उसकी मुलाकात हो गई। उसने सोचा कि ये व्यक्ति तो बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर बढ़िया पैसा मिल जाएगा। वो उस सेठ से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा, अरे यार तुम हमेशा मांगते ही हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूं, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूं, मेरी इतनी औकात कहां कि किसी को कुछ दे पाऊं। सेठ बोला, देखो जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में ही विश्वास रखता हूं भाई। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने के लिए हो तभी मैं तुमको बदले में कुछ दे पाऊंगा। तभी स्टेशन आ गया जहां पर उस सेठ को उतरना था। वो ट्रेन से उतरा और चला गया। इधर भिखारी सेठ की कही हुई बात के बारे में सोचता रहा। सेठ के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे तो पाता नहीं, लेकिन मैं तो भिखारी हूं, किसी को कुछ देने के लिए कुछ है ही नहीं मेरे पास। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए मांगता ही रहूंगा, समझ नहीं आ रही बात। बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय लिया कि चलो जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा तो उसके बदले में वो भी उसको कुछ ना कुछ देगा जरूर। लेकिन अब उसके दिमाग में ये सवाल उठ गया कि वो खुद भिखारी है तो भीख के बदले में भला क्या दे देगा दूसरे को। ये बात सोचते हुए पूरा दिन गुजर गया लेकिन उसे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। दूसरे दिन जब स्टेशन के पास बैठा हुआ था वो, तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ गई जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिले हुए थे, जंगली फूल थे। उसने सोचा, अच्छा क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। तो उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। वो ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वो भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता। कुछ ही दिन बीते, उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत लोग भीख देने लगे हैं। वो स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक लोग उसे भीख देते ही रहते थे, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो गए तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही होने लगा। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही सेठ ट्रेन में बैठे हैं, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वो तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, सेठ जी आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ फूल दे दूंगा। सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उन्हें दिए। इस सेठ को यह बात बड़ी पसंद आई। सेठ बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए। इतना कहकर फूल लेकर वो सेठ स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस सेठ द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो बार बार उस सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वो चाबी लग गई है जिसके द्वारा वो अपने जीवन को बदल देगा। वो तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं, मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूं, मैं भी अमीर हो सकता हूं। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद ये पागल हो गया है। अगले दिन से वो भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। एक साल गुजर गया।
उसी स्टेशन पर दो लोग सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा, सेठ जी, क्या आपने मुझे पहचाना? सेठ बोला, नहीं तो, शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। भिखारी बोला, सेठ जी, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। सेठ बोला, भाई मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे हम लोग दो बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी दो बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूं जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में हूं कौन। नतीजा ये निकला कि आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं और इसी व्यापार के काम से बस दूसरे शहर जा रहा हूं। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का ये नियम वास्तव में काम करता है। मैंने ये बहुत अच्छी तरह महसूस किया, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं था, और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूं। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूं। हमारे भारतीय संस्कृति में शायद इसीलिए खुद को जानने पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। और समझने की बात यह है कि जब हम किसी को कुछ देते हैं तब भी हमें कुछ मिलता है। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है।
1: दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

ऐसा लिखा गया है कि सुदामा जी जब भगवान के यहां से चले तो भगवान ने उन्हें कुछ नहीं दिया। सम्मान तो किया लेकिन दिया कुछ नहीं। अब दूसरा कोई होता तो नाराज हो जाता कि मैं आपके यहां अब कभी नहीं आऊंगा। आप किस तरह के दोस्त हो? मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं और मुझे कुछ भी नहीं दिया। मगर जैसे भगवान हैं वैसे ही सुदामा भी भगवान हो गए, भले ही वो महल में नहीं रहते थे। ऐसा लिखा गया है कि ईश्वर को जानने वाला ईश्वर ही हो जाता है। सुदामा ब्रह्म को पहचानने वाले संत हैं, वो ब्रह्म के समान हो गए। उन्हें वही आनंद चित्त की अवस्था मिल गई, वही श्रद्धा की अवस्था मिल गई जो भगवान को मिली हुई है। तो सुदामा जी ने मांगा कुछ भी नहीं। आज का कोई होता तो हंगामा कर देता, खरी खोटी सुनाता, अनशन पर भी शायद बैठ जाता। सुदामा जी ने भी विचार तो किया कि भगवान ने कुछ दिया नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान गरीब हो गए हों। वैसे भगवान तो कभी गरीब नहीं हो सकते ना। संपूर्णता में जिनको सब कुछ मिल गया हो उन्हें ही तो भगवान कहा जाता है। भग का मतलब होता है पूरा ऐश्वर्य, पूरी अमीरी, धर्म संपूर्ण, वैराग्य संपूर्ण, ज्ञान संपूर्ण, सभी कुछ तो होता है भग का मतलब। भगवान को गरीबी कैसे आएगी? वो तो समग्र धर्मशाली, धनशाली हैं। क्यों? ऐसा तो नहीं कि कंजूस हो गए भगवान? फिर सुदामा जी ने सोचा कि ऐसा क्यों सोचें, भगवान तो परम उदार भी हैं, कल्याणकारी गुणों के समुद्र हैं, प्रेम लगाव और शक्ति के समुद्र हैं। भगवान कभी पाप तो करते नहीं। जितने दुर्भाव हमारे मन में आते हैं दोस्तों, उनका मूल कारण पाप ही है। चाहे गुस्सा हो, लालच हो, द्वेष हो, सबके मूल में बैठा है क्या? पाप। सुदामा जी ने समाधान निकाला। अद्भुत भगवान की कृपा है। भगवान ने हमारे परित्याग को, हमारे को जो दिया, रोम रोम से बाहर से भीतर तक हमारा समुदाय की सेवा के लिए जीवन दिया, उससे कहीं हम अलग ना हो जाएं, यही विचार किया होगा। कहीं हम भोगी ना हो जाएं, कहीं हम संतुष्ट ना हो जाएं, कहीं हमारा भजन छूट ना जाए, इसलिए भगवान ने नहीं दिया। कहीं हमारी विशिष्टता लुप्त ना हो जाए, गायब ना हो जाए, कहीं हम समाज के लिए जीना छोड़कर अपने लिए जीना शुरू कर दें, इसलिए भगवान ने हमें कोई भौतिक संसाधन नहीं दिया। अब ये विचारों की महान अवस्था है मित्रों, इससे बड़ा व्यवहार भला क्या होगा। सुदामा जी ने कितना बड़ा समाधान निकाल लिया। अब तो लोग कर्जा लेकर व्यक्तिगत संपत्ति बना लेते हैं, फिर दिवालिया घोषित करके गायब हो जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में हजारों लोग पूर्ण संपत्तिवान होकर भी अपना दिवाला निकाल रहे हैं। ऐसे लोगों को कब और कैसे सुकून मिलेगा, कैसे शांति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: भैया, यदि लोग गलतियों से सबक लेते हैं तो फिर दूसरी गर्लफ्रेंड क्यों बनाते हैं? दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है, शामें कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ देते हैं। बैठ जाता हूं मिट्टी पे अक्सर, मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का तरीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं कि मुझमें कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूं मुझमें कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन। एक मुद्दत से मैंने न तो मोहब्बत बदली और न ही दोस्त बदले हैं। एक घड़ी खरीद कर हाथ पर क्या बांध ली, वक्त पीछे ही पड़ गया है मेरे। सोचा था घर बनाकर सुकून से बैठूंगा, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला मुझे। सुकून की बात मत कर, बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। जीवन की भागदौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत खो जाती है, हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। खुश हूं और सबको खुश रखता हूं, खुश हूं और सबको खुश रखता हूं। लापरवाह हूं खुद के लिए मगर सबकी परवाह करता हूं। मालूम है कोई मोल नहीं है मेरा फिर भी, मालूम है कोई मोल नहीं है मेरा फिर भी, कुछ अनमोल लोगों से रिश्ते रखता हूं, कुछ अनमोल लोगों से रिश्ते रखता हूं। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते

मैं बचपन से ही अपने से बड़ी उम्र के लड़कों और लफंगों के साथ रहा। मैं महज 7 साल का ही तो था, लेकिन तकरीबन जवान हो चुके लड़कों से मेरी दोस्ती रही। उनके साथ ही क्रिकेट खेला, अखाड़ों में कुश्ती लड़ी, वर्जिश की। अपने उस्ताद के पैरों और पीठ पर सरसों का तेल मला, कुछ दाव लगाने सीखे और फिर उस्ताद के कहने पर पास के गांव में लगने वाले मेले में आयोजित दंगल में भाग लेने जाता था। उन दिनों 3 रंगों की लंगोट हुआ करती थी, लाल, सफेद और काली। उन 3 रंगों में से मैंने अपने लिए लाल रंग की लंगोट चुनी। लफंगों के साथ जंगल में खूब भटका, ज्यादातर दोपहरें पेड़ों पर गुजारी, कबूतरों के पीछे भागा, तीतर बटेर का पीछा किया, उन्हें कीटनाशक DDT पाउडर खिलाकर मारा, फिर लकड़ी पर सेक के खाया। यही वो दिन थे जब मैंने बीड़ी पीना सीखा, कभी कभी सिगरेट, फिर धीमे धीमे गांव की अंधेरी गलियों में शराब पीना सीखा। देर रात तक गांव की अंधेरी गलियों में बैठकर मैं ये जानने की कोशिश करता था कि कैसे धुएं के छल्ले बनते हैं, बादलों का धुएं से क्या संबंध है। शायद यहीं से कविताओं ने मेरे भीतर जगह बनानी शुरू की होगी, लेकिन तब मैं जानता नहीं था कि कविता भी कोई चीज होती है। हालांकि अब भी मुझे नहीं पता कि कविता क्या होती है, लेकिन मैं उसे बार बार लिखकर समझने की कोशिश करता रहता हूं। मैं अब तक वो कविता नहीं लिख पाया हूं जिसका मुझे सबसे ज्यादा इंतजार है। खैर, मैं असल कहानी पर आता हूं। तो उन दिनों उस नाजुक उम्र में मैंने शराब, सिगरेट और कुश्ती जैसी सारी सख्त चीजें की। इनमें से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उस वक्त नहीं की जाना चाहिए थी, लेकिन उम्र हमेशा मुझे अपने से आगे की ओर ही धकेलती रही। मैं उन दिनों जंगल, घास, फूल, कांटे, गायें, बेल, तालाब, कुओं और फसलों की संगत में रहता था। मुझे लगता था एक दिन इनमें से ही कुछ बन जाऊंगा। मैं किसी दिन घास बन जाऊंगा और हवा के साथ रहूंगा। कभी लगता मैं कोई कुआं हो सकता हूं जिसका पानी खेतों में जाएगा। कई बार सोचता था कि हो सकता है मैं बड़ा होकर कोई फूल बन जाऊं जो किसी दिन किसी देवता के सर पर रखा जाऊं, या कोई सुंदर स्त्री के बालों के जूड़े में ठूंस दिया जाऊं। खुले आसमान के नीचे मैं अपने घर की टीन की चादरों पर सोए हुए इन्हीं सारी कल्पनाओं में खोया रहता था। कभी आसमान का तारा बन जाता तो कभी जंगल का कोई कांटा। फिर एक दिन मैंने अपने पुरखों से सुना कि मरे हुए लोगों का पेट भरने और उनकी प्यास बुझाने के लिए कौवे छतों पर आते हैं। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

आइए दोस्तों एक मजेदार कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था एक राज्य में, जैसे हमेशा होते हैं। उसका एक मंत्री था जो कि बड़ा समझदार था और नाम भी उसका था बुद्धिमान। ज्यादातर मंत्री इस तरह की कहानियों में समझदार ही होते हैं ना दोस्तों। तो एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर पूछा कि भाई जरा ये बात बताओ, ये भेड़िया धसान का मतलब क्या होता है। मंत्री थोड़ी देर तक तो सोचता रहा और फिर कहा, हुजूर मुझे 2 दिन का मोहलत मिले तो मैं इसका जवाब दे पाऊंगा आपको। राजा ने 2 दिन की मोहलत दे दी। मंत्री जो थे वो सुबह सुबह अगले दिन उठे, नहा धोकर तिलक लगाया और गांव के बाहर तालाब के किनारे चले गए। वहां कई सारे खच्चर घास खा रहे थे। मंत्री ने उनमें से एक की 3 बार प्रदक्षिणा की, यानी कि चक्कर लगाया, और उसका एक बाल नोच कर अपने कान पर रख लिया। तालाब के किनारे कुछ लोग जमा हो गए। एक ने पूछा, मंत्री महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? तब मंत्री ने कहा, देखो जी ये खच्चर काशी जी की यात्रा करके आया है। पहले जन्म में कोई ऋषि मुनि रहा होगा, ये देखते नहीं इसकी आंखों में कैसी भक्ति टपक रही है। मंत्री ने जवाब दिया, बस फिर क्या था, एक एक करके सब लोग उसकी चक्कर लगाने लगे, प्रदक्षिणा करने लगे और उसका एक एक बाल नोच कर कानों पर लगाने लगे। गांव भर में सनसनी फैल गई। सभी लोग वही करने लगे जो मंत्री ने किया था। थोड़ी ही देर में उस खच्चर के सारे बाल नुच गए। वो बेचारा लहू लुहान हो गया और तड़पने लगा। इतने में राजा को भी ये खबर लग गई। वो भी वहां आ पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने भी खच्चर की 3 बार प्रदक्षिणा की, चक्कर लगाया और खोज ढूंढ कर एक बाल नोच लिया। बेचारा खच्चर मौत का मेहमान हो गया। इतने में

महाराज, आप भेड़िया धसान का मतलब जानना चाहते थे ना? देखिए, यही है भेड़िया धसान, जो मैंने कर दिया सब आंख मूंद कर उसी को करने लग पड़े। अब तो आपने अपनी आंखों से देखा ना, कहिए समझ में आया भेड़िया धसान का मतलब? राजा मंत्री की बात सुनकर बड़ा ही खुश हुआ और बहुत शर्मिंदा भी हुआ। उसने खच्चर वाले को खच्चर का दाम दिया और रवाना किया। तो दोस्तों, खामखा में किसी एक चीज को बिना समझे पीछे पीछे मत जाइए। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, जो तुम चल सको तो चलो। इधर उधर हैं कई मंजिलें, इधर उधर हैं कई मंजिलें, जो तुम चल सको तो चलो। बने बनाए हैं सांचे, जो तुम ढल सको हाँ तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। किसी के वास्ते कहां बदलती है जिंदगी, जो तुम खुद को बदल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से बहल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज, कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। यहां कोई किसी को नहीं देता रास्ता, जो मुझे गिरा कर चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
2: एकता और ऐश्वर्या।

0: कैसे हो बच्चों?
1: नमस्ते
0: नमस्ते नमस्ते।
2: अरे भैया
0: आज तो सब बड़े खुश नजर आ रहे हो।
2: हाँ, भैया
0: लेकिन ये क्या, ये तुम कुछ छुपा रहे हो क्या?
2: नहीं कुछ नहीं छुपा रहे।
0: नहीं देखो देखो, ये कुशागर और ये निशांत, इनके इनके हाथ में शायद कुछ है। वाह क्या बात है भाई, है इतने सुंदर फूल। वाह कितने सुंदर फूल है। वाह क्या खुशबू है इन फूलों की। अच्छा ये बताओ भाई, इन फूलों को तुम लेकर कहाँ से आए?
2: ऋचा के बाग के फूल है।
0: ऋचा के बाग के
3: है? हाँ भैया ये मेरे बाग के फूल है।
0: अरे वाह, धन्यवाद धन्यवाद ऋचा, बहुत बहुत अच्छे फूल लेकर आई हो तुम, बहुत अच्छे फूल है ये। अच्छा ये बताओ कि ये फूल तुम लेकर क्यों आए हो मेरे लिए?
3: भैया हम आपको उपहार देना चाहते
0: अच्छा।
3: थे। आप हमें कहानी इतनी सुंदर भी तो सुनाते हो।
0: अरे वाह क्या बात है मेरे शेर, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। वाह क्या खुशबू है इन फूलों की, सचमुच फूल तो सभी को अच्छे लगते हैं। एकता और ऐश्वर्या को भी फूल बहुत सुंदर लगते थे।
3: ये कौन है भैया?
0: वही तो बताने वाला हूँ। हाँ तो बच्चों, मेरी कहानी का नाम है एकता और ऐश्वर्या, और आज के मेरे अक्षर हैं ए और ए। ए ए
1: ए ए
0: ए,
1: ए,
0: ए, ए, ए, ए, ए, ए, ए। हाँ शाबाश, ए से एकता और ए से ऐश्वर्या, एकता और ऐश्वर्या। तो एकता और ऐश्वर्या दो बहनें थीं, दोनों एक दिन एक बाग में घूमने के लिए गईं।
3: ए से एड़ी।
0: हाँ तो बच्चों, वहां पर सुंदर सुंदर फूल खिले थे, जैसे तुम लेकर आए हो मेरे लिए, है कि एकता उन्हें एकटक देखती रहेगी।
3: ए से एकटक।
0: शाबाश। हाँ तो बच्चों, उसने सोचा माली से पूछूं कि उन्होंने इतना सुंदर हर एक गुलाब और हर फूल खिलाया कैसे। हाँ तो बच्चों, फिर एकता और ऐश्वर्या माली को ढूंढने लगी। हाँ तो पता है माली काका मिले ही नहीं।
1: क्यों?
0: बताता हूँ बच्चों, उन्होंने बहुत ढूंढा तो देखा कि माली काका बाग के कोने में एकांत में बैठे थे। एकांत यानी शांत खाली जगह। तो ए से
1: एकांत,
0: एकांत। शाबाश, ए से एकांत,
3: एकांत।
0: तब बच्चों ऐश्वर्या ने माली काका से पूछा,
4: माली काका आपने इतने सुंदर फूल और वो भी इतने बड़े बड़े उगाए कैसे?
0: तो माली काका एकदम गुस्सा हो गए और बोले, दूर हटो यहां से।
3: माली एकदम से गुस्सा क्यों हो गए?
0: अरे बताता हूँ ऋचा, लेकिन पहले बताओ ए से
1: एकदम।
0: ए से
1: एकदम,
0: एकदम। शाबाश, तो गुस्से में एट गए माली काका। ऐसे
3: ऐसे
0: सही कहा तुमने, ऐसे ऐसे ऐसे ऐसा। बिल्कुल सही, शाबाश। तो बच्चों एकता और ऐश्वर्या की बात सुनकर माली काका बोले,
5: अरे ना जाने यहाँ कैसे कैसे लोग चले आते हैं, मैं इतनी मेहनत से फूल उगाता हूँ और ये लोग एक एक फूल तोड़ कर ले जाते हैं, मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। हाँ
3: ये तो बहुत बुरी बात है भैया।
0: हाँ बहुत बुरी बात है,
3: मालिक तो दुखी होते होंगे।
0: बिल्कुल होते थे बच्चों,
3: मेहनत ऐसा नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
3: मैं तो कभी भी फूल नहीं तोड़ता,
0: फूल नहीं तोड़ता। शाबाश। तो बच्चों तब एकता ने पता क्या किया?
1: बताता हूँ जल्दी।
0: हाँ जल्दी बताता हूँ। तब बच्चों एकता ने एक पेड़ की डाल पर ये लिखकर टांग दिया,
1: क्या भैया?
0: यही कि यहाँ फूल तोड़ना एकदम मना है और ऐश्वर्या ने भी बाग के बाहर ये ऐलान कर दिया।
1: भैया
0: उसने ये ऐलान किया कि जो भी फूल तोड़ेगा उस पर जुर्माना होगा और जिसे बाग देखने आना है उसे टिकट भी लेना होगा।
3: अरे वाह, टिकट लगा दिया।
0: हाँ, टिकट लगा दिया।
3: की तो कमाई हो गई।
0: बिल्कुल कमाई हो गई, शाबाश। हाँ। तो बच्चों बताओ, ऐसे
1: ऐश्वर्या,
0: ऐसे ऐश्वर्या,
1: ऐनक
3: ऐसा
0: ऐसा, और ऐसे ऐलान, ऐसे ऐलान। हाँ, ऐलान कर दिया उसने। तो बच्चों इस तरह से एकता और ऐश्वर्या ने मिलकर ये बहुत अच्छा काम किया। माली काका की मेहनत भी बेकार नहीं गई और मेहनत का इनाम भी मिला। बताओ कैसे मिला?
2: अब लोग टिकट लेने लगे।
0: बिल्कुल सही,
2: माली काका को भी कमाई हो गई।
0: बिल्कुल कमाई भी हो गई।
2: अब कोई उनका फूल नहीं तोड़ेगा।
0: अब कोई उनके फूल नहीं तोड़ेगा, शाबाश।
2: अब खुश रहते हैं।
0: अब खुश रहते हैं
3: और बहुत सारे फूल खिलेंगे।
0: बहुत सारे फूल भी खिलेंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने बच्चों। अब लोग टिकट लेकर बाग देखने आते थे और हाँ, फूल भी नहीं तोड़ते थे। इस तरह से न तो फूल टूटते थे और न ही बाग की सुंदरता कम होती थी, बल्कि बाग की सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और हाँ, साथ साथ माली काका धन भी कमाने लग गए थे।
2: खुश हो गए।
3: उनके यहाँ चिड़ियाँ भी आने लग गई।
0: चिड़ियाँ आने लग गई,
2: टूरिस्ट आने लग गए।
3: और उनकी फोटो बाहर छप गई,
0: अखबार में छप गई। यानी उनका बहुत प्रचार हो गया, वो बहुत प्रसिद्ध हो गए दूर दूर तक।
6: ए, ए, ए, ए, ए, ए, ए, ए, ए,

0: ने बाग का माली था बैठा। पूछा जब ऐश्वर्या ने तो माली थोड़ा सा ऐठा। माली को गुस्से में पाकर दोनों का दिल था बैठा। ऐसे एकांत और ऐसे ऐश्वर्या और ऐठा। एकता और ऐश्वर्या ने पूछा,
1: काका गुस्सा क्यों ऐसे? माली बोला,
0: लोग यहाँ पर आते हैं जाने कैसे कैसे, एक एक फूल को तोड़ फेरते हैं मेरी मेहनत पर पानी जैसे।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: तूतुन की रेल छूट गई, पता नहीं कहाँ रह गए बच्चे सभी।
2: अरे लो, आ गए बच्चे, आ गए। नमस्ते, नमस्ते बच्चों, आओ बैठो, चलो अपने अपने जगह पर बैठो।

0: बच्चों आज तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो।
1: हम पार्क में खेल रहे थे।
2: अच्छा तो बहुत मस्ती की होगी तुमने पार्क में, है ना?
0: अच्छा ये बताओ तुम और कहाँ कहाँ मजे करते हो?
1: झूले पर।
2: अच्छा और
3: सहेली के घर पे।
1: मामा जी।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये बताओ नानी जी के घर कौन मजे करता है?
3: मैं गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाता हूँ।
2: अच्छा
3: मैं भी जाता हूँ और हम नानी के घर पे खूब शैतानी करते हैं और उधर मामा जी भी होते हैं हमारे। अच्छा। और मेरी मम्मी भी होती है।
0: अरे वाह। अच्छा बच्चों पता है तुम्हारे जैसा ही एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना नटखट सा बच्चा था जिसका नाम था तुतुन।
2: क्या नाम था?
4: तुतुन।
0: तुतुन को भी अपनी नानी के घर जाना बहुत अच्छा लगता था, तुम्हारी तरह।
2: हाँ और नानी के घर से वापस आने का उसका मन ही नहीं करता था।
3: मेरा भी मन नहीं करता आने
2: अच्छा?
3: का। मैं तो
2: अच्छा?
3: सर्दियों में जाता हूँ।
0: तो ठीक ऐसे ही तुतुन का मन नानी के घर बहुत लगता था, बड़े मजे आते थे उसे वहाँ। एक बार गर्मी की छुट्टियों में तुतुन नानी के घर गया तो छुट्टियां खत्म होने पर तुतुन की मम्मी ने तुतुन से कहा,
2: अरे अरे बेटा तुतुन कहाँ हो, चलो जल्दी से अपना सामान बांधो। हाँ भाई रेलगाड़ी आने वाली है 5:30 बजे, छूट जाएगी, कहाँ हो तुतुन?
0: और पता है बच्चों 5:30 बजे का मतलब क्या होता है?
2: क्या होता है? हाँ
0: सोचो सोचो। अरे मैं बताता हूँ, 5:30 यानी 5:30 क्या?
4: 5:30।
0: शाबाश,
2: बिल्कुल सही कहा। और फिर पता है क्या हुआ? जाने की बात सुनकर तुतुन बहुत उदास हो गया और सोचने लगा,
5: ओहो हम कितनी जल्दी वापस जा रहे हैं, काश हमारी रेलगाड़ी छूट जाए छूट जाए।
2: पर अब क्या हो सकता था, तुतुन को तो जाना था। तो तुतुन अपने मम्मी पापा के साथ 5:15 पर ही रेलवे स्टेशन पहुंच गया। तब तुतुन के पापा बोले,
6: अरे भाई तुतुन जल्दी करो।
7: अरे 5:15 बेटा, कहीं ट्रेन छूट ना जाए।
2: और सुनो सुनो आगे सुनो। ट्रेन छूटने की बात पर तुतुन बहुत खुश हो गया और फिर पता है क्या सोचने लगा?
8: लगता है हमारी ट्रेन छूट गई। अरे मजा आ गया, हमारी ट्रेन छूट गई। अब मैं और भी देर तक नानी के घर रह सकता हूँ।
2: तो बच्चों बताओ क्या तुतुन की ट्रेन निकल गई थी? हाँ
3: नहीं, क्योंकि ट्रेन तो 5:30 निकलनी थी ना।
9: अभी 5:15 ही तो बजे थे।
0: बिल्कुल सही तुमने बताया ईशान। अब ये बताओ 5:30 का क्या मतलब हुआ?
4: 5:30।
0: शाबाश।
2: और 5:15 का मतलब क्या हुआ?
4: 5:15।
2: बिल्कुल
0: सही, इसी बात पर हो जाए ताली। पर बच्चों तुतुन को ये पता ही नहीं था, वो तो खुश हो रहा था कि उसकी ट्रेन छूट गई।
2: और तब तुतुन के पापा ने तुतुन को बताया,
7: अरे बेटा अभी ट्रेन को आने में 15 बाकी हैं, ट्रेन 5:30 पर आएगी, अभी तो 5:15 ही है।
3: अब तो तुतुन दुखी हो गया होगा। उसे तो जाना होगा,
9: अब तो उसे जाना ही पड़ेगा।
0: अरे नहीं बाबा सुनो तो सही, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ।
2: हाँ क्योंकि ट्रेन तो आई ही नहीं। उन लोगों को बहुत देर तक वही इंतजार करना पड़ा।
9: अरे ये कैसे हुआ?
0: यही पूछने तो तुतुन के पापा स्टेशन मास्टर के पास जा पहुँचे और बोले,
7: स्टेशन मास्टर साहब ये ट्रेन क्यों नहीं आई अभी तक, हम बहुत परेशान हैं। अब देखो हमारे टिकट पर तो 5:30 लिखा है।
3: तो स्टेशन मास्टर ने क्या कहा?
0: स्टेशन मास्टर ने कहा,
7: सर 5:30 का मतलब है 5:30, असल में आपकी गाड़ी 5:30 पर चली गई।
0: क्या?
7: सर देखिए रेलवे में 5:30 को 17:30 कहा जाता है, यानी 17:30।
0: क्या मतलब?
4: 17:30।
0: शाबाश।
9: 17:30
3: काफी अजीब सा लग रहा है।
2: हाँ हाँ, तुम्हारी ही तरह तुतुन को भी 17 घंटे 30 मिनट सुनकर ना अजीब लग रहा था।
3: पर ऐसा क्यों कहते हैं दीदी?
2: ऐसा इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि रेलवे में 12 नहीं 24 घंटे की घड़ी का प्रयोग होता है।
0: हाँ, 12 घंटे की घड़ी में एक ही समय 2 बार आता है, इसलिए हमें उसके साथ सुबह, दोपहर, शाम, रात ये सब लगाना पड़ता है। जैसे सुबह के 9 बजे
2: और रात के 9 बजे,
0: सुबह के 5 बजे
2: और शाम के
10: 5 बजे।
0: अच्छा, सुबह के 11 बजे
10: और शाम के 11 बजे।
0: शाम के 11 बजे नहीं बेटा, रात के 11 बजे। बजाओ ताली इसी बात पर।
3: तो तुतुन की रेल छूट गई थी ना? तुतुन को तो बड़ा मजा आ गया होगा।
0: हाँ बच्चों, बहुत मजा आया था। लेकिन अब तुतुन ने 24 घंटे की घड़ी में समय देखना सीख लिया था।
2: हाँ, और पता है 24 घंटे की घड़ी में जब दोपहर के 12 बजे के बाद 1 बजता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं 13 घंटे।
0: क्या कहते हैं?
10: 13 घंटे।
0: हाँ, यानी 12 घंटे में 1 घंटा और जोड़ दिया तो हो गए कितने घंटे? 13 घंटे। शाबाश। अच्छा गुड़िया, तुम मेरी घड़ी देखकर बताओ कि इस वक्त कितने बजे हैं?
3: 4 बजे हैं।
0: 4 बजे हैं, बिल्कुल सही। और शाम होने को है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ?
3: शाम के 4 बजे हैं।
0: शाबाश गुड़िया, बजाओ इसी बात पर ताली।
2: हाँ, तो अब ये बताओ 24 घंटे की घड़ी के हिसाब से क्या समय हुआ?
0: बताओ बताओ।
3: 12, 13, 14, 15, 16
2: बताओ।
3: 16 बजे हैं।
0: 16 बजे हैं नहीं, 16 घंटे हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अच्छा बताओ बच्चों, 12 घंटे की घड़ी में शाम के 6 बजे हूँ तो 24 घंटे की घड़ी के हिसाब से क्या समय होगा?
10: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 घंटे।
0: शाबाश, बिल्कुल सही कहा तुमने, 18 घंटे।
2: तो अब ये बताओ शाम के 6:30 हो तो
3: 18 घंटे 30 मिनट।
0: वेरी गुड।
2: और शाम के 7 बजे? हाँ हाँ, सोचो सोचो।
3: 19 घंटे।
0: अरे वाह, शाबाश, बड़े होशियार बच्चे हैं। वैसे एक बात है, तुतुन भी तुम्हारी तरह बहुत होशियार हो गया था। तो इस तरह हुई कहानी खत्म। बजाओ ताली।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंडिया भील 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।
1: भूखा अमरूद।

0: का अमरूद। एक थी ची ची चिड़िया और एक थी गुनगुन गिलहरी। दोनों सहेलियां थी। हाँ बच्चों, एक दिन चींची ने गुनगुन से कहा,
1: चलो गुनगुन अमरूद के पेड़ पर चढ़कर खेलें।
0: तो बच्चों दोनों पहुंची अमरूद के पेड़ के पास और बोली,
1: अमरूद भैया क्या हम यहाँ खेल सकती हैं?
0: अमरूद ने कहा,
2: हाँ हाँ खेल लो, लेकिन ध्यान रहे मेरी टहनियाँ ना टूटें।
0: चींची चिड़िया हैरान होकर बोली,
1: अरे अमरूद भैया तुम्हें दर्द होता है क्या?
2: और नहीं तो क्या, तुम्हें दर्द होता है ना, वैसे ही हम पेड़ों को भी दर्द होता है।
1: अच्छा अच्छा, हम नहीं तोड़ेंगे टहनियाँ।
0: ऐसा कहकर बच्चों दोनों खेलने लगी। हैं? और कुछ देर के बाद उन्हें भूख लगी। गुनगुन बोली,
1: अमरूद भैया क्या हम तुम्हारे अमरूद खा लें?
0: ये सुनकर बच्चों अमरूद ने कहा,
2: मैं अभी भूखा हूँ, तुम पहले मेरे लिए भोजन लाओ, यानी मेरे आहार का इंतजाम करो।
0: हैरान होकर चींची ने पूछा,
1: अरे तुम खाना भी खाते हो?
0: तो अमरूद बोला,
2: इसमें हैरान होने की क्या बात है, खाना तो सभी को चाहिए, खाना खाकर ही तो हम बढ़ते हैं। तुम भी तो पहले छोटी नन्नी मुन्नी थी, तुम्हारी अम्मा तुम्हें दाना ला ला कर खिलाती थी, तभी तो तुम बड़ी हुई और चलने उड़ने लगी।
0: ये सुन बच्चों चींची ने कहा,
1: लेकिन तुम्हारे लिए खाना कौन लाता है?
0: गुनगुन बोली,
1: और भला तुम खाते क्या हो, हमें बताओ तो झटपट तुम्हारे लिए ले आए खाना।
0: अमरूद ने कहा, बच्चों
2: मैं तो मिट्टी से अपना आहार यानी खाना लेता हूँ, जब जमीन में पानी डाला जाता है ना, तो मेरी जड़ें उस पानी को पीती हैं, तने उस पानी को पहुंचा देते हैं पत्तियों तक, पत्तियां सूरज की रोशनी की सहायता से बनाती हैं खाना, मेरा आहार।
0: गुनगुन ने पूछा,
1: अरे भाई प्रकाश यानी रोशनी से कैसे बनता है तुम्हारा खाना?
0: अमरूद का वृक्ष बोला,
2: जैसे मुन्नी की अम्मा अंगीठी में खाना बनाती है ना, वैसे ही सूर्य का प्रकाश है हमारी अंगीठी, उसी की मदद से पत्तियां मेरा आहार बनाती है। और इसके अलावा जैसे तुम सांस लेती हो ना, मुझे भी चाहिए हवा सांस लेने के लिए।
0: तो बच्चों चींची ये सुनकर बोली,
1: लेकिन अमरूद भैया हमें तो सूर्य के प्रकाश से खाना बनाना आता ही नहीं, हम तुम्हारा आहार कैसे बनाएं?
0: गुनगुन ने पूछा,
1: और शुद्ध वायु कहाँ से लाएं?
0: ये सुनकर बच्चों पास में खड़ा दूसरा अमरूद का पेड़ गाने लगा,

0: पेड़ की ये बात सुनते ही चींची खुश होकर बोली,
1: अरे ये तो बड़ी आसान बात है, गज्जू हाथी तो हमारा दोस्त है। दोस्त अभी लेकर आते हैं उसकी सूंड में भरकर पानी।
0: तो बच्चों झट दोनों पहुंची गज्जू हाथी के पास। उनकी बात सुन गज्जू ने अपनी सूंड में ढेर सारा पानी भरा। फिर वे तीनों चल पड़े अमरूद के पेड़ की ओर। अमरूद के पेड़ की जड़ में गज्जू ने सारा पानी उंडेल दिया, ढेर सारा पानी। बस जड़ों ने पानी ऊपर खींचा, तनों ने पत्ती तक पहुंचाया। सूर्य के प्रकाश की मदद से पत्तियों ने पेड़ का आहार बनाया। अमरूद का पेड़ अब भूखा ना रहा और बोला,
2: आओ आओ तुम भी अपनी भूख मिटाओ, लो ये अमरूद खाओ खाओ।
0: चींची चिड़िया, गुनगुन गिलहरी और गज्जू हाथी ने मिलकर बच्चों खूब मीठे मीठे अमरूद खाए।

0: सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया रेडियो टंट्या भील 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: एक तिनका।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: अपनी जिम्मेदारी निभाना।

0: महानगर के एक बस स्टैंड पर संजय अपने पिताजी के साथ बस का इंतजार कर रहा है। संजय स्कूल के लिए बस की प्रतीक्षा में है। बस स्टैंड पर काफी भीड़ है।
1: भाई साहब, आप किस बस में जाएंगे?
2: कौन से नंबर की बस निकली है अभी?
0: संजय पिताजी से पूछता है,
3: बाबूजी अभी तक बस नहीं आई, कहीं स्कूल को देर ना हो जाए।
4: आती ही होगी बस। अरे देखो ना, अपनी बस के इंतजार में लोग सड़क के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं।
3: हाँ बाबूजी, ऐसे में सामने से आती बस दिखाई कैसे देगी?
4: हाँ ये तो है।
0: तभी एक युवक उन दोनों के पास आता है और कहता है,
5: आप दोनों बीच सड़क से हटकर फुटपाथ पर आ जाइए।
4: जी।
3: आप कौन है?
5: मेरा नाम आदित्य है। आप थोड़ा फुटपाथ पर आ जाइए।
4: जी ठीक है, आओ बेटा आओ, इधर ऊपर आ जाओ फुटपाथ।
6: भाई साहब आप ये फुटपाथ पे
7: क्यों? इतने लोग खड़े हैं और तुम हमसे क्यों कह रहे हो भाई?
5: हाँ हाँ, मैं औरों से भी कह रहा हूँ, आप तो आ जाइए।
7: हम यही ठीक है, आप अपना काम,
5: आप अपना काम करिए। किनारे थोड़ा किनारे आ जाइए आप।
2: ठीक तो
5: भाई साहब, फुटपाथ पे आ जाइए आप। बच्चे अब भी आ जाइए फुटपाथ पे। बहन जी फुटपाथ पे आ जाइए आप।
3: बाबू जी देखिए,
5: बहन जी
3: आदित्य भैया एक एक करके सबको कितनी अच्छी बात कह रहे हैं।
4: हाँ बहन जी, और कुछ लोग उसकी बात मानकर फुटपाथ पर आ भी रहे हैं।
3: पर वो दो आदमी तो अभी सड़क पर ही

0: आपने उस युवक की बात मान ली होती तो ऐसे चोट तो मान लगती।
1: अरे वो भला आदमी तो कितनी बार समझा रहा था मगर यही नहीं माने। अब लग गई ना।

0: संजय स्कूल पहुंचा। वहां अध्यापिका जी कक्षा में पूछ रही थी,
1: बच्चों कल मैंने आपसे कहा था कि आप ग्रुप बनाकर कक्षा के कमजोर बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या आपने ऐसा किया?
2: हाँ, मैंने तो किया है।
1: रानी तुम बताओ।
3: बहन जी, मेरे साथी रमेश ने पढ़ाने में कोई रुचि ही नहीं ली, इसलिए मैंने भी किसी को नहीं पढ़ाया।
1: रानी, ये तो गलत बात है। देखो, हमें अपनी जिम्मेदारी निभाते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। हमें केवल अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।
3: जी बहन जी।
4: बिल्कुल ठीक, जैसे आदित्य भैया आज बस स्टैंड पर कर रहे थे।
1: आदित्य भैया कौन?
0: तब संजय ने अध्यापिका जी को बताया कि बस स्टैंड पर कैसे आदित्य भैया लोगों को फुटपाथ पर खड़े होने के लिए प्रेरित कर रहे थे। महानगर की एक सड़क पर अखबार का एक पत्रकार लोगों से बातचीत कर रहा है।
5: भाई साहब।
6: जी, मुझसे कुछ कहा?
5: जी हाँ, आप ये बताइए कि आज के वातावरण को, अपने समाज को अगर अच्छा बनाना हो तो क्या करना चाहिए?
6: मैं तो ये कहूँगा कि इसके लिए समाज में शांति होनी चाहिए, आपस में भाईचारा होना चाहिए
5: जी,
6: लोगों में ईमानदारी होनी चाहिए। पर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के समाज में ये सब बहुत ही कम रह गया है। मैं तो कहूँगा सब खत्म हो गया है।
5: नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ये सब खत्म हो गया है। क्यों बहन जी, आप क्या कहती हैं?
1: अरे कौन से जमाने की बात कर रहे हैं आप भी, आजकल कुछ ठीक भी है क्या? आप छोड़िए भी, हमें क्या करना है इन बेकार की बातों में पढ़कर, हम तो चलते हैं।
7: रुकिए, ये बेकार की बात नहीं है। जब सब कुछ गलत हो रहा है तो यूं मुंह फेर कर मत जाइए, आगे बढ़िए। शायद आपकी एक छोटी सी कोशिश भी इस गलती को सुधारने में काम आ जाए। ये समाज सबका है, इसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी सबकी ही है।
0: बहाना।

0: उषा जी।
1: जी सर।
0: ये पत्र आज ही भिजवा दीजिए, बहुत जरूरी है ये।
1: सर आज?
0: जी आज।
1: सर आज तो नहीं जा सकता।
0: पर क्यों? अभी बजे हैं सुबह के 10 और डाक जाती है दोपहर को 3:30 बजे, तब तक ये टाइप होकर पोस्ट हो सकता है ना?
1: सर अभी तो ये टाइप भी नहीं हो सकता।
0: पर क्यों?
1: सर अभी तो लाइट ही नहीं है।
0: लाइट नहीं है तो क्या हुआ, इस कमरे में तो काफी रोशनी है, आप बिना लाइट के भी इसे टाइप कर सकती हैं।
1: सर मेरा मतलब है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है इसलिए कंप्यूटर नहीं चलेगा।
0: पर इलेक्ट्रिसिटी आ भी तो जाएगी।
1: सर इलेक्ट्रिसिटी तो 1 घंटे बाद आएगी। और
0: क्या?
1: तब तक चाय का
0: तो चाय पीकर लौटने का इरादा नहीं है क्या?
1: सर है तो,
0: पर क्या?
1: तब तक इस कंप्यूटर पर इतनी भीड़ हो जाएगी कि मेरी बारी आज आएगी ही नहीं।
0: आप इसे शुक्ला जी के कंप्यूटर पर कर लीजिएगा, वो खाली पड़ा रहता है।
1: शुक्ला जी का कंप्यूटर तो पहले ही खराब पड़ा है।
0: चलिए जाने दीजिए उषा जी, आप लाइट इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर चाय या अपनी बारी किसी का इंतजार मत कीजिए।

0: आप इस पत्र को साधारण टाइपराइटर पर टाइप करके दे दीजिए। क्या ये हो सकता है?
1: हाँ सर, ये तो हो सकता है।
2: काम न करने के इतने बहाने और काम करने का कोई बहाना नहीं।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए कार्यक्रम बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत, शीर्षक है पशु पक्षियों पर आधारित प्यारे प्यारे बाल गीत।

0: बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम, लेखक प्रोफेसर के.जी. रस्तोगी, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी, कार्यक्रम निर्माण रमेश रानी शर्मा। ये बाल गीत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से अपना बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और दोस्तों, हमारे किसान साथियों के लिए खेतीबाड़ी कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत को हम लेकर आते हैं और खास तौर पर उन सेगमेंटों पर बात करते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बेहद जरूरी रहती है। और श्रोता साथियों, आपको बता देना चाहते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी में आज हम तीन तीन कंपोनेंटों पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला बात करेंगे हम कि हमारे किसान साथी, चूंकि मशरूम की खेती करना बड़ा मुश्किल बात तो नहीं है क्योंकि सरकार इसके लिए ट्रेनिंग्स देती है, सब्सिडी भी देती है, लेकिन मशरूम की खेती आखिरकार कैसे की जाती है इस पर हम खास बातचीत करेंगे। साथ साथ में हम सीप की जो खेती रहती है यानी मोतियों की खेती रहती है, अभी आपने सुना होगा कि मोतियों की खेती कैसी होती है, उस पर भी आज हम जिक्र करेंगे। और साथ साथ में हम सफल किसान की कहानी हम लेकर आएंगे और साथ में एक और कंपोनेंट जोड़ना चाहेंगे आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में कि केंद्रीय पशु पंजीकृत योजना आखिरकार क्या है, किसानों को के आय को बढ़ाने के लिए, पशुपालन को बढ़ाने के लिए किस तरीके की योजना है, कैसे हमारे किसान साथी इसमें पंजीकरण करा सकते हैं, कैसे इसका लाभ ले सकते हैं, तीनों चारों कंपोनेंटों पर आज हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन साथियों, इससे पहले हम कुछ बातें करना चाहते हैं अपने किसान साथियों से, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे में हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि बरसात का मौसम जैसे ही आए और हम अपनी फसल लगाना स्टार्ट कर दें, लेकिन उन किसान साथियों से कहना चाहेंगे कि इससे पहले हम तैयारी करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि किसी भी हम कार्य को करते हैं उससे पहले हम प्लानिंग करते हैं कि हमें इस कार्य को करना होगा, इस कार्य को करने के लिए क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या चुनौतियां हैं, कैसे इसको किया जाता है, ये सारी बातचीत हम ध्यान में रखते हैं, एक सोचते हैं कि कैसे खेती की जाती है, कैसे इस काम को किया जाता है। ऐसे ही खेती की बात आती है कि हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि आगे चलकर हम भविष्य में या फिर आगे चलकर कौन सी खेती करें, कैसे करें, क्योंकि उनके लिए कुछ ऑप्शन नहीं है, पथरीला इलाका है, सीमित खेती है, सिंचाई के ज्यादा साधन नहीं है, किसान साथी सोच रहे हैं क्या करें। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM लेकर आते हैं आपके लिए नई नई जानकारियां इस कार्यक्रम के माध्यम से, और बहुत सारी बातें हम अपने श्रोता साथियों को बता देना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे बातचीत और बहुत सारे मुद्दों को रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM जल्द शुरू करने वाला है, और आप जुड़े रहिए हमारे रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM से और सुनते रहिए आप अपने मन पसंदीदा कार्यक्रमों को। चलिए, आपको हम देर नहीं करवाते हैं और हमारे सेगमेंटों का समय होता है और सुनते हैं। सबसे पहले सेगमेंट में हम आज जानेंगे कि किस तरीके से मशरूम की खेती की जाती है, कौन सा उपयुक्त समय रहता है हमारे किसान साथियों के लिए, कैसे की जाती है, आइए इस खास रिपोर्ट को, और साथ साथ में हम सुनेंगे इसमें केंद्रीय पशु पंजीकृत योजना के बारे में। तो ऐसे ही बनी रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात है।
3: आज मशरूम फार्मिंग में सरकार द्वारा मिल रहे प्रोत्साहन एवं कौशल विकास के फलस्वरूप एक बड़े वर्ग ने इसकी कृषि को अपना व्यवसाय बना लिया है। कम पूंजी, कम जगह एवं कम समय में ज्यादा से ज्यादा कमाने की इन्हीं हसरतों ने आज मशरूम फार्मिंग को जन्म दिया। अब आप भी यदि घर बैठे मात्र कुछ पैसों की लागत से अपना खुद का मशरूम बिजनेस शुरू कर लाखों कमाना चाहते हैं, तो मशरूम का व्यापार खास आपके लिए ही है। आज काफी लोग मशरूम की खेती कर लाखों कमा रहे हैं। कि मशरूम की खेती से पहले एक उपयुक्त स्थान का चुनाव काफी महत्वपूर्ण होता है। मशरूम काफी नाजुक होती है, इसलिए भंडारण से वितरण के बीच ज्यादा देर आपकी फसल को खराब कर सकती है। साथ ही मार्केट से ज्यादा दूरी आपकी कुल लागत को भी बढ़ा सकती है। मशरूम की खेती के लिए 35 से 40 डिग्री तक का तापमान अनुकूल माना जाता है। साथ ही मशरूम के विकास के लिए नमी की भी काफी आवश्यकता होती है। हवा में 85 से 90 प्रतिशत तक की आर्द्रता बनाए रखना एक चैलेंज हो सकता है। अमूमन मशरूम की खेती के लिए मई से अक्टूबर तक का समय बिल्कुल उपयुक्त समझा जाता है। हालांकि आवश्यक वातावरण एवं माहौल बना आप 12 महीने इसकी खेती कर सकते हैं। शुरुआती चरण में यदि आप मशरूम की खेती छोटे लेवल पर करना चाहते हैं, तो 400 स्क्वायर फीट तक की जगह आपके लिए उपयुक्त रहेगी। भारत में मशरूम की खेती के लिए मूलतः तीन तरह की क्यारियां बनाई जाती हैं। इसमें पहला है लटकाकर। इसमें मशरूम के लिए कंपोस्ट का निर्माण कर प्लास्टिक बैग में कंपोस्ट रख बीच में बीज की एक परत बना लें। ऊपर से कंपोस्ट की परत दर परत में बीज को रोपकर प्लास्टिक का मुंह धागे से बांध दें। किसी स्टैंड के सहारे कंपोस्ट को झुला कर रख दें। ये विधि खासकर उनके लिए काफी उपयुक्त है जबकि आपके पास जगह का अभाव हो। मशरूम उगाने की दूसरी विधि है जमीन में क्यारियां बनाकर। जमीन में क्यारियां बना कंपोस्ट को फैलाकर बीज को रोपा जाता है। समय समय पर सिंचाई एवं आवश्यक देखभाल के फलस्वरूप मशरूम की खेती की जाती है। और मशरूम उगाने की तीसरी विधि है बांस का बेड बनाकर। यदि आप जमीन में क्यारियां बना खेती नहीं करना चाहते, तो फिर आप बांस का मचान बना सकते हैं। बांस अथवा किसी लकड़ी की मदद से जमीन से थोड़ा ऊपर बांस का बेड अथवा मचान बना उस पर मशरूम के बीज बो सकते हैं। अब आपको जरूरत होगी मशरूम की खेती के लिए कंपोस्ट की तैयारी करने की। मशरूम की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है कंपोस्ट की तैयारी, जिसमें बीजों को बोया जाता है। भारत में ज्यादातर कंपोस्ट की तैयारी में पुआल का उपयोग किया जाता है। पुआल बाजार से काफी कम कीमत पर आसानी से खरीदा जा सकता है। अब बारी है पुआल को कंपोस्ट में बदलने की। शुरुआती दौर में 5 से 10 किलो तक पुआल से काम चल जाएगा। सबसे पहले भूसे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले। ध्यान दे, टुकड़ा न बहुत छोटा न बहुत बड़ा हो। आधा इंच का पुआल आदर्श माना जाता है। अब भूसे को किसी टब अथवा टंकी में पानी से भर रात भर के लिए फूलने के लिए छोड़ दे। ध्यान दे, पुआल में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बढ़ाने के लिए आप सॉल्युबल लिक्विड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपके नजदीकी खाद्य भंडार से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। रात भर कंपोस्ट को भिगोने के बाद अब इस कंपोस्ट को निकालकर जमीन पर सूखने के लिए छोड़ दें। ध्यान दें, पुआल न ज्यादा गीला न ही ज्यादा सूखा रहे। 2 से 3 घंटे बाद पुआल को हाथ से दबाकर चेक कर लें। यदि काफी दबाने पर थोड़ा पानी निकल रहा है, तो ये कंपोस्ट आपके लिए आदर्श है। आप चाहें तो इसमें नाइट्रोजन एवं फास्फोरस कंटेंट बढ़ाने के लिए थोड़ा यूरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाई गई क्यारियों में अब आप इस कंपोस्ट को फैलाते एवं थोड़ी थोड़ी दूरी पर मशरूम के बीजों को बो दें। अब दोबारा बीजों के ऊपर एक परत कंपोस्ट की दें तथा बीज रोप दें। इस प्रकार परत दर परत कंपोस्ट के बीच में बीज रोप कर कुछ दिन के लिए छोड़ दें। ध्यान रहे, कमरे का तापमान 35 से 40 डिग्री तक बना रहे। आवश्यक नमी बनाए रखने के लिए हर 2 से 3 दिनों के अंतराल में पानी का छिड़काव करते रहे। मशरूम की फसल को कीट पतंगों एवं अन्य हानिकारक कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक दवा का भी छिड़काव करे। ध्यान रहे, कमरा में किसी तरह की रोशनी ना पहुंचने पाए। फसल होने में 3 से 4 हफ्तों का वक्त लगता है। कोशिश करें बीच बीच में आवश्यक नमी एवं कमरे का तापमान चेक करते रहे। शुरुआती दौर में 30 किलोग्राम भीगे पुआल से 5 किलो तक फ्रेश मशरूम उगाया जा सकता है। मशरूम के भंडारण एवं वितरण में ज्यादा समय ना लगाएं। आप प्लास्टिक में 100 250 ग्राम अथवा 1 किलो का पैक बना इसे या तो सीधा मार्केट में उतार दें अथवा किसी सब्जी वाले के हाथों अपनी फसल बेच दें। जरा इन बातों पर भी ध्यान दें। मशरूम के बीज को आवश्यक नमी पहुंचाने के लिए हर 2 से 3 दिनों के बीच में पानी का छिड़काव करते रहें। रूम में साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। कंपोस्ट को छूने अथवा मशरूम के बीजों के संपर्क से पहले हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोएं एवं कोशिश करें कमरे में जूते चप्पल इत्यादि पहनकर प्रवेश न करें। भारत में आप इन जगहों से मशरूम की खेती करना सीख सकते हैं। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, पूसा, दिल्ली। राजेंद्र एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, पूसा, समस्तीपुर, बिहार। ओडिशा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर, ओडिशा। हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, R&D सेंटर, मुरथल, सोनीपत। ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर NEH रीजन, उमरोई रोड, बोरापानी, मेघालय। डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, ICAR, चंपाघाट, सोलन, हिमाचल प्रदेश।
4: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और अभी आपने सुना इस महत्वपूर्ण जानकारी को और जाना कि किस तरीके से हमारे किसान साथी, चूंकि पथरीला इलाका है तो क्या कर सकते हैं, तो मशरूम की खेती भी हमारे किसान साथी कर सकते हैं। जाना कि किस तरीके से हमारे किसान साथी मशरूम की खेती कर सकते हैं, क्या क्या लाभ हैं, कहाँ कहाँ बेच सकते हैं और इससे कितना लाभ होता है मशरूम की खेती करने से, ये सारी बातों को हमने जाना इस कार्यक्रम खेतीवाड़ी के माध्यम से। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनते हैं कि जो हमारी योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है, केंद्रीय पशु पंजीकृत योजना के बारे में जानेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया 90.8 FM, आपका रेडियो, आपकी बात है।

0: किसानों को पशुओं की खरीद और बिक्री में मदद मिले और किसान की आमदनी में बढ़ोतरी हो, इसके लिए भारत सरकार ने एक कार्यक्रम केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना लागू किया, जिसके तहत गाय और भैंस की महत्वपूर्ण नस्लों के दुग्ध उत्पादन का रिकॉर्ड करके पशु पंजिका में लिखा जाता है। इस कार्यक्रम में उन्नत नस्ल के पशुओं के प्रमाणीकरण और पशुओं के उत्पादन का लेखा जोखा लिखा जाता है। पशु पंजीकरण योजना के उद्देश्य इस प्रकार है। पंजीकरण के माध्यम से बेहतर जर्म प्लाज्म यानी उच्च कोटि की आनुवांशिकी का पता लगाना, प्रजनन क्षेत्र में पशुओं का व्यवस्थित दुग्ध अभिलेखन शुरू करना, पशु चुनाव के लिए दुग्ध अभिलेखन कार्य को बढ़ावा देना, सभी पंजीकृत किए हुए पशुओं के इकट्ठे किए हुए आंकड़ों को प्रकाशित करना ताकि पशु पालकों का मार्गदर्शन हो और पशुओं को खरीदने व बेचने में इसका योगदान मिले, पशुओं की खरीद बिक्री और आयात निर्यात को नियंत्रित करना ताकि उनकी गुणवत्ता को नियंत्रित किया जा सके तथा आयात व निर्यात के लिए स्तर निर्धारित किया जा सके, पशु पालकों को योजना के बारे में जागृत करना और जानकारी देना ताकि पशुओं के सुधार में उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना में पशु पंजीकरण पुस्तक होती है, इसमें उन पशुओं की सूची रखी जाती है जो कि पशु पंजीकरण पुस्तक के नियम व नियमावली पर खरे उतरते हैं। इस पंजीकरण के तहत पंजीकृत पशु पालकों को प्रोत्साहन राशि तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं जो पशु पालकों को पशु खरीदने तथा बेचने में मदद करते हैं। अब सवाल ये है कि इस योजना के तहत सुविधा का लाभ कैसे उठाया जाए। ये सुविधा देसी गाय व भैंसों के लिए है। इस सुविधा का लाभ गौशाला और अभिलेखन केंद्र के आसपास के पशु झुंड उठा सकते हैं। पंजीकृत पशुओं का ब्यौरा कंप्यूटरीकृत होता है। पशु पालकों तक योजना को आसानी से पहुंचाने के लिए दुग्ध अभिलेखन केंद्र पशु चिकित्सालय पर रखा जाता है। खास बात ये है कि पशु पंजीकरण इकाइयां दुग्ध अभिलेखन योजना को समयबद्ध विस्तार के लिए प्रशिक्षण भी देती है। गौरतलब है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हरियाणा में गाय और मुर्रा भैंस के लिए संयुक्त रूप से एक यूनिट 1962 में रोहतक में स्थापित की गई। ये इकाई हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्यों में संचालित है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान गिर व कांकरेज गाय और सूरती भैंस के लिए एक इकाई अहमदाबाद में स्थापित की गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंत में दो और इकाइयां एक आंध्र प्रदेश में और एक राजस्थान में स्थापित की गई। इस प्रकार चार इकाइयां रोहतक हरियाणा, अहमदाबाद गुजरात, ओंगल आंध्र प्रदेश और अजमेर राजस्थान में चल रही है। पशु पालक स्थानीय केवीके या कृषि विभाग से संपर्क कर केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें और इस योजना का लाभ उठाएं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बात।

0: कहाँ प्रशिक्षण मिलेगा, इसकी सारी जानकारी इस सेगमेंट में सुनते हैं।
1: भारत में मोतियों का इस्तेमाल लंबे समय से ही किया जा रहा है। मोती शुरू से ही सजने संवरने और सजावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहले सिर्फ प्राकृतिक रूप से मिलने वाले मोतियों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बदलते दौर में मांग को देखते हुए मोतियों का उत्पादन किया जा रहा है, जिसे हम सरल भाषा में सीप पालन या मोती की खेती कहते हैं। ये इतना सरल और सस्ता है कि किसान इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। सीप पालन के लिए सबसे जरूरी प्रशिक्षण लेना है। कई संस्थानों में सरकार के द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा जिले के मत्स्य विभाग से भी जानकारी ली जा सकती है। मोती एक प्राकृतिक रत्न है जो सीप में बनता है। जब सीप में कोई बाहरी पार्टिकल जैसे मिट्टी के कण या कोई सूक्ष्म जीव चला जाता है तो वो उसे बाहर निकालने के लिए एक तरल छोड़ती है। ऐसे ही धीरे धीरे उस कण पर सीप परत दर परत एक चमकदार कोटिंग बना देती है और फिर एक निश्चित समय बाद यही मोती बन जाता है। सीप पालन को शुरू करने के लिए सबसे पहले स्थान का चयन करना होता है जहां सीप को आसानी से पाला जा सके। सीप को छोटे स्तर से घर में पाला जा सकता है, जबकि बड़े स्तर पर पालने के लिए तालाब की जरूरत होती है। इसके बाद किसान को सीप खरीद कर सीपों को खुले पानी में 2 दिन के लिए रखते हैं, जिससे धूप और हवा लगने के बाद सीप का कवच और मांसपेशियां ढीली हो जाती है। मांसपेशियां ढीली होने के बाद सीप की सर्जरी कर सीप के अंदर सांचा डाल दें। किसान चाहे तो सामान्य मोतियों का भी उत्पादन कर सकते हैं। मोती बनते समय सांचा जब सीप को चुभता है तो वो उस पर अपने अंदर से निकलने वाला एक पदार्थ छोड़ता है जो मोती में बदल जाता है। सीपियों के प्रकार लेमिनेनिस मार्जिनेनिस, लेमिनेनिस कोरियनस, पाइरेसिया। सीप पालन के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। कम से कम 10x10 फीट या बड़े आकार के तालाब में सीप पालन किया जा सकता है। सीप में छोटी सी शल्य क्रिया के बाद इसके भीतर 4 से 6 मिलीमीटर व्यास वाले साधारण या आकर्षक आकृति के मोती तैयार किए जा सकते हैं। शल्य क्रिया के बाद सीप को बंद कर दिया जाता है। इन सीपों को नायलॉन बैग में 10 दिनों तक एंटीबायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है। अब इन सीपों को तालाबों में डाल दिया जाता है। इसके लिए इन्हें नायलॉन बैगों में रखकर यानी 2 सीप प्रति बैग बांस या बोतल के सहारे लटका दिया जाता है और तालाब में 1 मीटर की गहराई पर छोड़ दिया जाता है। प्रति हेक्टेयर 20,000 से 30,000 सीप की दर से इनका पालन किया जा सकता है। अंदर से निकलने वाला पदार्थ बीट के चारों ओर जमने लगता है जो अंत में मोती का रूप लेता है। करीब 10 माह बाद सीप को खोलकर मोती निकाल लिया जाता है। बेहतर उत्पादन के लिए सबसे जरूरी संबंधित विषय में जानकारी का होना है। इसके लिए किसानों को चाहिए कि वो सीप पालन शुरू करने से पहले प्रशिक्षण लें। सरकारी संस्थान ग्रामीण नवयुवकों, किसानों व छात्र छात्राओं को मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों और किसान हेल्पलाइन से भी मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण की जानकारी ली जा सकती है।
0: अभी आपने हमारे किसान साथियों ने सुना कि किस तरीके से मोतियों का हम खेती कर सकते हैं, यानी हम मोतियों का जो खेती रहती है उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे प्रशिक्षण लिया जाता है, ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से जानी है। और भी बातें हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम, यानी लेते हैं छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बनी रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बातें।

0: तब किसान की मेहनत सार्थक होती है, तो खेतों में खुशी की तरंगे बिखरने लगती है और बंजर जमीन भी हरियाली की चुनर ओढ़ लेती है। वैसे तो राजस्थान की धरती को मरुभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ के किसान प्रकृति का सीधा सामना करते हुए सफलता की कहानी गढ़ रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक किसान से मिलवाएंगे जिन्होंने कृषि का शायद ही कोई क्षेत्र छोड़ा हो जिसमें कामयाबी ना पाई हो। जयपुर राजस्थान का बेहद खूबसूरत शहर, जहां देश के हर हिस्से से पर्यटक पहुंचते हैं। यहां से करीब एक घंटे की दूरी और 36 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आता है कालख गांव, जो पहचाना जाता है किसान गंगाराम सेपट के नाम से, जो सेपट ऑर्गेनिक कृषि फार्म का संचालन करते हैं। उनके यहाँ जितनी भी पैदावार ली जाती है वो सभी जैविक तरीके से ली जाती है। गंगाराम कृषि के साथ साथ बहुत कुछ करते हैं, जैसे जैविक खेती, पॉली हाउस में खेती, पशुपालन, मछली पालन, जल संचय करना और सोलर पैनल लगाकर बिजली का इस्तेमाल कर खेती के हर कार्य को संपन्न कर रहे हैं। वो बताते हैं कि आज वो जिस मकाम पर है उसके पीछे उनकी व उनके परिवार की मेहनत तो है ही, साथ ही सरकार का पूरा सहयोग भी रहा। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर गंगाराम ने अपने कार्य क्षेत्र में इजाफा किया। आज उनके खेतों में हर तरह की फसलें लहलहा रही है, जिसमें विदेशी सब्जियां भी शामिल है। उनके खेतों की सब्जियां बड़े शहरों तक पहुंचाई जाती है, जिससे परिवार को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है।
1: राजस्थान में पानी की काफी कमी है, रेगिस्तान है, और इस वजह से हम लोग बरसात का एक एक बूंद इकट्ठा करते हैं। मेरे पास में पॉली हाउस है, पॉली हाउसों के ऊपर जितनी भी बारिश होती है उन सबको मैं पाइप के द्वारा मेरे फार्म पॉन्ड के अंदर लेके आता हूँ। फार्म पॉन्ड में जो साइज है मेरी 50x50 मीटर का, लगभग 75 लाख लीटर पानी इसके अंदर हम बरसात का पूरा पानी इकट्ठा करते हैं और इसी के आधार पर पूरे साल भर हम लोग सिंचाई करते हैं। इसके फार्म पॉन्ड के जो है भारत सरकार का जो स्कीम है NHM और NHB दोनों के द्वारा 50% सब्सिडी मिलती है। इसमें मेरे जो है इस फार्म पॉन्ड बनाने में 8,35,000 रुपया खर्चा हुआ था तथा सब्सिडी के रूप में मुझे 5 लाख रुपए मिले थे। साथ ही फार्म पॉन्ड से जो पानी की सिंचाई करने के लिए मेरे पास में सोलर पैनल है, सोलर पैनल पे भी मैंने सब्सिडी ली है। 3 HP का इसमें भी मैंने कनेक्शन ले रखा है और जिसमें 67,000 रुपए मेरे फार्मर शेयर के लगे हैं। साथ ही इसमें 1,32,000 रुपए मेरे अनुदान प्राप्त हुआ है। इस फार्म पॉन्ड के अंदर मैंने 7 प्रकार की मछलियां डाल रखी, जिसमें 3 प्रकार की देसी मछलियां हैं और 4 प्रकार की विदेशी मछलियां हैं जो अलग अलग लेयर में अपना भोजन करती है। और देसी मछलियों में कटला है, रोहू है और मरगला है, और विदेशी में कॉमन कॉर्प है, गोल्डन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प और ग्रास कॉर्प है। इन मछलियों को हमारे पास में विशेष प्रकार के कोई भोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे खेत में जो भी वेस्टेज पदार्थ होता है हम लोग मछलियों के लिए डाल देते हैं। इसके अलावा जो हमारे और भी कई बार क्या होता है, वेस्टेज पदार्थ कम होता है तो हम बाजरे का दाना और सरसों की खली मिलाकर इनको भिगो कर देते हैं। और जो मछलियों का वेस्टेज है वो हमारे खेत के लिए, हमारी फसल के लिए उर्वरक शक्ति बढ़ाने का काम करता है, और साथ ही हमारा जो पानी का EC और PH है वो मेंटेन करने का काम है। इसके अंदर अगर मछलियां नहीं डालेंगे तो इसके अंदर एल्गी आ जाती है जो हमारे फिल्टर पंप को चोक कर देती है, इस वजह से इसको मछलियां डाली गई है। साथ ही मछलियों का जो है एक्स्ट्रा इनकम के बेचने पर हमें एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होगी, तो ये हमारे साथ में इंटीग्रेट फार्मिंग का एक अच्छा उदाहरण है। मैं सभी युवा साथियों से सलाह देना चाहता हूं कि अपने फार्म खेत के अंदर बरसात के पानी को इकट्ठा करें, उसमें पॉन्ड बनाएं।

आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से कार्यक्रम खेती बाड़ी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथियों, अभी आपने इन सफल किसानों की कहानी को सुना और जाना कि किस तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल किया है, यानी खेती के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल किया है। उन्होंने योजनाओं का लाभ लिया है, उन्होंने आधुनिक पद्धति से खेती की है, उन्होंने वर्मी कम्पोस्ट पर जोर दिया है, तो तमाम प्रकार की उन्होंने योजनाओं का लाभ लेते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि सफल किसान के नाम से उनको जाना जाता है राजस्थान में। तो साथियों, हमें आशा है कि ऐसे ही हमारे किसान साथी अब सोच रहे होंगे कि हम भी एक उन्नतशील किसान बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमें वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए आप समय समय पर कृषि विस्तार अधिकारी अपने झाबुआ जिले में बैठे हुए हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, खासतौर पर जो KBK रहता है उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो नई नई पद्धति से और नई नई योजनाओं के साथ लाभ लेकर आप एक अच्छी पद्धति से खेती करके मुनाफा कमा सकते हैं, यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है। मित्रों, अब हमारा समय होता है आज के कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारे फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार।

ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग के प्रोग्राम में दोस्तों आइए, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जो मेहमान, जो मेरे दोस्त प्रोग्राम में है, उनका नाम है राहुल गोस्वामी। बेहद खूबसूरत, बेहद जहीन किस्म के इंसान। आज हम उनसे बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनसे कई सवाल करेंगे और बहुत खूबसूरत गीत भी सुनेंगे। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार कि आप हमारे प्रोग्राम में आए।
1: थैंक यू सर, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी मेरे को।
0: बहुत खूब। राहुल भाई, हमारे सुनने वालों के लिए अपना परिचय दीजिए कि आप कहाँ हैं, क्या करते हैं, कौन हैं आप?
1: मैं राहुल गोस्वामी और मैं दिल्ली में हूँ अभी, और अभी एक फार्मा कंपनी में मैं एज ए रीजनल मैनेजर काम कर रहा हूँ। और छोटा सा परिवार है मेरा, जो मेरे मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहता हूँ। पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, वाइफ है, चार छोटे बच्चे हैं, और बस अपने वर्किंग को एंजॉय करते हुए लाइफ को जी रहा हूँ।
0: बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यही तो सफलता होती है जिंदगी की, कि छोटा सा खूबसूरत परिवार, सुखी है, शांति है, खूब मेहनत करते हैं, अपने काम को आगे बढ़ाते हैं, जो कुछ भी हमें अचीव करना है हमारी लाइफ में उसके प्लान्स बनाते हैं। बहुत बढ़िया बात राहुल भाई। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को इसी रंग में रंगे हुए एक बहुत खूबसूरत से गीत से।

0: और राहुल भाई आगे बढ़ते हैं और एक क्यूट सा प्यारा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आप बचपन में क्या बनना चाहते थे मेरे भाई?
1: बचपन में मेरा शौक था, मुझे आर्मी बहुत पसंद है, इंडियन आर्मी। तो मैं चाहता था कि मैं एक जीडी सोल्जर बनूं आर्मी का, बट बहुत ट्राई किया, जिंदगी को शायद या ऊपर वाले को शायद मंजूर नहीं था, तो मैं आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाया। और फिर एक अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था, अभी फार्मा लाइन में हूँ।
0: ओके, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देखिए, राहुल जी सीजन्ड प्रोफेशनल हैं। जिंदगी की ऊंच नीच सभी की जिंदगी में आती है, लेकिन हम उससे सीख लेते हुए आगे बढ़े ये ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए
1: बिल्कुल सर।
0: एक उत्साह भरा हुआ एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: राहुल, मुझे बताइए, आप गाने सुनते होंगे, म्यूजिक से कुछ तो लगाव आपका
1: हाँ
0: रहा होगा, तो
1: जी, बहुत लगाव है।
0: आपके सबसे पसंदीदा गायक सिंगर कौन है और क्यों?
1: जी सब, मुझे सबसे पसंदीदा सिंगर जो है वो किशोर कुमार जी हैं। बिकॉज किशोर कुमार जी ऐसे सिंगर हैं, मतलब जो मैं मानता हूँ उनके गाया हुआ हर गाना मतलब कहीं ना कहीं जिंदगी से रिलेटेड रहता है। उनका रोमांस, उनका सादगी, उनका इमोशन, मतलब मुझे बहुत पसंद है किशोर कुमार जी।
0: भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग। तो चलिए दोस्तों, फिर किशोर कुमार जी का ही एक गीत हो जाए, जोश से भरा हुआ।

0: बहुत बहुत बढ़िया। ये बड़े मजेदार सवाल है और मुझे बड़ा पसंद है राहुल भाई। अगर आपको
1: जी
0: आपकी तीन इच्छाएं पूरी कर देने वाला कोई जिन कहीं से मिल जाए, कोई देवता या कोई परी कहीं से मिल जाए और आपसे कहे कि तीन इच्छाएं मांग लीजिए, तो क्या मांगेंगे आप?
1: मैं सबसे पहले तो मांगूंगा अपनी सेहत, अपने परिवार की सेहत
0: बहुत बढ़िया,
1: जो
0: बहुत
1: अच्छी रहे,
0: बढ़िया।
1: और दूसरा मैं मांगूंगा कम से कम मेरे अकाउंट में इतना पैसा हो, मतलब 100 करोड़, 200 करोड़। और तीसरा कहीं ऐसी वादियों में, खूबसूरत वादियों में एक बहुत बड़ा घर हो जिसमें मैं अपनी फैमिली के साथ हर ऐशो आराम के साथ रहूं।
0: क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। आपके साथ आपके जवाब, सच कहूं राहुल भाई, मुझे बहुत पसंद आए। आप अपने परिवार के लिए, अपने लिए स्वास्थ्य मांगते हैं, सुख सुविधाओं से भरपूर घर मांगते हैं, बहुत अच्छी बात है। जाहिर सी बात है, कई लोगों को लगेगा सुन के कि बड़ा ही सेल्फिश आदमी है, लेकिन दरअसल दोस्तों समझिए इस बात को, अगर आप एक अकेले यूनिट को खुश रख सकें इस दुनिया में, तो जाहिर सी बात है अपने आप से आपके चारों तरफ की दुनिया खुश रहने लग जाएगी। हम
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: अपने आप से इतना प्यार करें कि जब वो भर जाए छलके तो दूसरों को मोहब्बत मिले। आप दूसरों से प्यार कर रहे हैं और अपने आप को ही प्यार नहीं करते तो क्या फायदा हुआ? बहुत
1: बिल्कुल
0: खूब बहुत खूब राहुल भाई, बहुत बढ़िया। तो चलिए सुनते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: आपको थोड़ा और अच्छा से समझने के लिए हमें बताइए ना कि आपकी हॉबीज क्या है।
1: हॉबीज की मैं बात करूं तो मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है।
0: अरे वाह,
1: मतलब मैं जनरली घर में बनाता हूं, तो उसमें चाहे चाइनीज हो, इंडियन हो या कोई स्वीट डिश हो, वो मेरे को बहुत पसंद है।
0: वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बात कही आपने कि आपको खाना बनाना बहुत पसंद है, चाहे वो चाइनीज हो चाहे कोई दूसरी डिशेस हो। कमाल है। तो आपको क्या लगता है कि सबसे बढ़िया चीज आप क्या बनाते हैं?
1: मैं सबसे बढ़िया चीज उड़द चने की दाल, माँ चने की दाल।
0: वाह भाई दोस्तों, सुना आप? देखिए राहुल जी बिल्कुल अपने दिल से बात कर रहे हैं, कोई किसी चीज को छुपा नहीं रहे हैं, किसी चीज को पेंट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल एक प्यारे से इंसान की तरह वो बता रहे हैं कि वो माँ की दाल बनाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। सिंपल, बहुत ही सिंप्लिसिटी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: राहुल मुझे ये बताइए कि आज तक की आपकी जिंदगी में सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि क्या रही है, मतलब सबसे अच्छा अकॉम्प्लिशमेंट आपको क्या मिला है जो आपको लगता हो कि ये मेरे लिए सबसे अच्छा अकॉम्प्लिशमेंट है।
1: मैं अगर इसमें जाऊं सर, तो मतलब जब मैं स्टडी करता था तो मैंने अपना एक छोटा, मेरे फादर जो है बिजनेस किया करते थे मतलब स्पोर्ट्स का, तो मेरे फादर एक छोटे से कमरे से काम किया करते थे, तो मैंने स्टडी के साथ साथ है ना वो हम मुकाम हासिल किया था कि मेरे पास करीबन 17-18 वर्कर काम करते थे। एक मेरा ब्रांड आता था बैडमिंटन रैकेट में किटकैट करके,
0: ओके
1: वो अचीवमेंट मेरी लाइफ की थी। यहाँ मैंने छोटी सी एज में वो किया था, बट अभी नहीं है वो, कुछ सरकमस्टेंसेस ऐसे बने कि मुझे वाइंड अप करना पड़ा। तो मैं अपनी लाइफ की सबसे अच्छी अचीवमेंट वही मानता हूँ कि मैंने छोटी सी टाइम में एक अच्छा नाम किया था स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में।
0: ओके बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, हम कुछ अपने दिमाग से सोचते हैं, मेहनत करते हैं और कोई चीज बनती है। ठीक है, मैं मानता हूं कुछ स्थितियां, परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं कि वो आगे ना बढ़ पाए, लेकिन हमें वो बहुत खुशी दे के जाती है। बहुत बहुत बढ़िया राहुल भाई। तो चलिए दोस्तों, फिर एक और गीत सुन लेते हैं।

0: आगे बढ़ते हुए राहुल, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको आज तक की जिंदगी में सबसे अच्छा गिफ्ट क्या मिला है और किसने दिया?
1: सर देखिए, अगर बात करें तो गिफ्ट की, तो मतलब पेरेंट्स ने जन्म दिया तो सबसे बड़ा गिफ्ट तो वही है। दूसरा, अगर मतलब इस दुनिया की बात करें तो मुझे एक वॉच पसंद थी, टाइटन की वाटरप्रूफ वॉच आई थी फर्स्ट टाइम।
0: ओके,
1: तो वो गिफ्ट मुझे मेरे मामा जी ने दिया था।
0: अरे वाह,
1: वो गिफ्ट मैंने अभी भी संभाल के रखा हुआ है।
0: बहुत बढ़िया,
1: मतलब मेरे लिए अच्छा है, सबसे बेस्ट गिफ्ट था मेरा।
0: क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी चीजें जो हमारी जिंदगी में आती हैं, कई बार वो गिफ्ट्स नहीं होती जो हमारे दिल को छू के जाती हैं। जैसा राहुल ने बताया कि एक सिंपल घड़ी है, वाटरप्रूफ घड़ी है। यूं देखा जाए तो सारी घड़ियां आज की डेट में वाटरप्रूफ हैं, लेकिन उस जमाने में शायद एक यूनिक घड़ी रही होगी जो राहुल को पसंद थी और उसके उनके मामा जी ने उनको वो गिफ्ट दी। क्या बात है, बड़ी प्यारी याद है भाई। और मैं सच कहूंगा, आपके भोले भाले जवाब मुझे बड़े प्यारे लग रहे हैं, बहुत खूब। तो चलिए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: राहुल, आपका कोई निक नेम है क्या? कोई छद्म नाम जिसे लोग आपको प्यार से बुलाते हैं, और उसका क्या मतलब है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, मेरे मैंने घर वाले मेरे कुछ बुलाते हैं, रोहित नाम है मेरा निकनेम।
0: ओके, बहुत खूब।
1: तो मतलब पेरेंट्स मेरे और नेबर्स वगैरह सब इसी नाम से मेरे को बुलाते हैं। मतलब मैं रोहित नाम की अगर डेफिनेशन बात करूं तो सर, रोहित नाम का मतलब होता है सर सूर्य की पहली किरण।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: और अगर इसको और डीपली देखेंगे तो सर ये भगवान श्री कृष्ण के बेटे रोहित रोहित से निकला है।
0: ओके, अच्छा,
1: तो ये है सर इसका।
0: वेरी नाइस, बहुत खूब। देखिए दोस्तों, राहुल को यानी कि रोहित को पता है कि उनका नाम क्या है और उसका मतलब भी क्या है। मैं इसको बहुत अच्छा इंट्रोस्पेक्शन कहूंगा कि कम से कम राहुल को अपने बारे में गहराई से मालूम है कि वो कौन है, क्यों है, उसका मतलब क्या है। बहुत खूब, बहुत खूब।

0: राहुल, आपका सबसे पसंदीदा रंग क्या है और वो रंग आपके बारे में क्या कहता है?
1: मेरा पसंदीदा रंग है सर नेवी ब्लू।
0: ओके,
1: तो नेवी ब्लू मुझे पसंद इसलिए, एक तो सर मेरा कलर कॉम्प्लेक्स जो है मेरा फेयर है थोड़ा सा, तो मुझ पे सूट करता है। और दूसरा सर वो है ना, चीजों को एब्जॉर्व कर लेता है, मतलब उसके संग कुछ भी आएगा तो वो अपने अंदर समा लेता है,
0: बहुत खूब
1: तो मुझे नेवी ब्लू कलर बहुत पसंद है।
0: भाई, वाह, क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, बहुत खूबसूरत सा रंग जो राहुल जी के बारे में बहुत कुछ कहता है, बहुत बढ़िया। तो चलिए अगला गीत सुन लेते हैं।

0: राहुल, अब हम हमारे प्रोग्राम की उस जगह आ गए हैं जहां मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए कोई संदेश दीजिए।
1: सर संदेश क्या, मतलब यही है सर, मतलब सर लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, तो उनको मतलब हम लोगों को सहन भी करना पड़ता है और कभी कुछ सिखाते भी हैं वो। बाकी सर लाइफ में ना दोस्त बहुत जरूरी हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि दोस्त बनाते रहने चाहिए।
0: भाई वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। दोस्त वो फैमिली होती है जो हम इस दुनिया में अपने तरीके से बनाते हैं। बहुत खूब राहुल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जो आपने हमें वक्त दिया हमारे प्रोग्राम में आए।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
0: हमारे सुनने वालों को भी आपको सुनकर बहुत मजा आया होगा।
1: थैंक यू सर, शुक्रिया।

दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

0: छोड़ूंगी ना मैं तुझे,
1: सिद्ध न कर मान जा,
0: बिन तेरे राजी सकूंगी हाँ हाँ हाँ हाँ।
1: ये रोग दिल को ना लगा,
0: रोग तो लग चुका,
1: इश्क ये है।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

आइए दोस्तों एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ। एक था भिखारी। रेलवे में सफर करते हुए भीख मांगने के दौरान एक बार एक सूट बूट पहने हुए सेठ जी से उसकी मुलाकात हो गई। उसने सोचा कि ये व्यक्ति तो बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर बढ़िया पैसा मिल जाएगा। वो उस सेठ से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा, अरे यार तुम हमेशा मांगते ही हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूं, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूं, मेरी इतनी औकात कहां कि किसी को कुछ दे पाऊं। सेठ बोला, देखो जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में ही विश्वास रखता हूं भाई। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने के लिए हो तभी मैं तुमको बदले में कुछ दे पाऊंगा। तभी स्टेशन आ गया जहां पर उस सेठ को उतरना था। वो ट्रेन से उतरा और चला गया। इधर भिखारी सेठ की कही हुई बात के बारे में सोचता रहा। सेठ के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे तो पाता नहीं, लेकिन मैं तो भिखारी हूं, किसी को कुछ देने के लिए कुछ है ही नहीं मेरे पास। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए मांगता ही रहूंगा, समझ नहीं आ रही बात। बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय लिया कि चलो जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा तो उसके बदले में वो भी उसको कुछ ना कुछ देगा जरूर। लेकिन अब उसके दिमाग में ये सवाल उठ गया कि वो खुद भिखारी है तो भीख के बदले में भला क्या दे देगा दूसरे को। ये बात सोचते हुए पूरा दिन गुजर गया लेकिन उसे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। दूसरे दिन जब स्टेशन के पास बैठा हुआ था वो, तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ गई जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिले हुए थे, जंगली फूल थे। उसने सोचा, अच्छा क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। तो उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। वो ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वो भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता। कुछ ही दिन बीते, उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत लोग भीख देने लगे हैं। वो स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक लोग उसे भीख देते ही रहते थे, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो गए तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही होने लगा। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही सेठ ट्रेन में बैठे हैं, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वो तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, सेठ जी आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ फूल दे दूंगा। सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उन्हें दिए। इस सेठ को यह बात बड़ी पसंद आई। सेठ बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए। इतना कहकर फूल लेकर वो सेठ स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस सेठ द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो बार बार उस सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वो चाबी लग गई है जिसके द्वारा वो अपने जीवन को बदल देगा। वो तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं, मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूं, मैं भी अमीर हो सकता हूं। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद ये पागल हो गया है। अगले दिन से वो भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। एक साल गुजर गया।
उसी स्टेशन पर दो लोग सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा, सेठ जी, क्या आपने मुझे पहचाना? सेठ बोला, नहीं तो, शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। भिखारी बोला, सेठ जी, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। सेठ बोला, भाई मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे हम लोग दो बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी दो बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूं जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में हूं कौन। नतीजा ये निकला कि आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं और इसी व्यापार के काम से बस दूसरे शहर जा रहा हूं। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने ये बहुत अच्छी तरह महसूस किया, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं था, और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूं। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूं। हमारे भारतीय संस्कृति में शायद इसीलिए खुद को जानने पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। और समझने की बात यह है कि जब हम किसी को कुछ देते हैं तब भी हमें कुछ मिलता है। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है।
1: दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते

ऐसा लिखा गया है कि सुदामा जी जब भगवान के यहां से चले तो भगवान ने उन्हें कुछ नहीं दिया। सम्मान तो किया लेकिन दिया कुछ नहीं। अब दूसरा कोई होता तो नाराज हो जाता कि मैं आपके यहां अब कभी नहीं आऊंगा। आप किस तरह के दोस्त हो? मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं और मुझे कुछ भी नहीं दिया। मगर जैसे भगवान हैं, वैसे ही सुदामा भी भगवान हो गए, भले ही वो महल में नहीं रहते थे। ऐसा लिखा गया है कि ईश्वर को जानने वाला ईश्वर ही हो जाता है। सुदामा ब्रह्म को पहचानने वाले संत हैं, वो ब्रह्म के समान हो गए। उन्हें वही आनंद चित्त की अवस्था मिल गई, वही श्रद्धा की अवस्था मिल गई जो भगवान को मिली हुई है। तो सुदामा जी ने मांगा कुछ भी नहीं। आज का कोई होता तो हंगामा कर देता, खरी खोटी सुनाता, अनशन पर भी शायद बैठ जाता। सुदामा जी ने भी विचार तो किया कि भगवान ने कुछ दिया नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान गरीब हो गए हों। वैसे भगवान तो कभी गरीब नहीं हो सकते ना। संपूर्णता में जिनको सब कुछ मिल गया हो उन्हें ही तो भगवान कहा जाता है। भग का मतलब होता है पूरा ऐश्वर्य, पूरी अमीरी, धर्म संपूर्ण, वैराग्य संपूर्ण, ज्ञान संपूर्ण, सभी कुछ तो होता है भग का मतलब। भगवान को गरीबी कैसे आएगी? वो तो समग्र धर्मशाली धनशाली है। क्यों? ऐसा तो नहीं कि कंजूस हो गए भगवान? फिर सुदामा जी ने सोचा कि ऐसा क्यों सोचे, भगवान तो परम उदार भी हैं, कल्याणकारी गुणों के समुद्र हैं, प्रेम लगाव और शक्ति के समुद्र हैं। भगवान कभी पाप तो करते नहीं। जितने दुर्भाव हमारे मन में आते हैं दोस्तों, उनका मूल कारण पाप ही है। चाहे गुस्सा हो, लालच हो, द्वेष हो, सबके मूल में बैठा है क्या? पाप। सुदामा जी ने समाधान निकाला। अद्भुत भगवान की कृपा है। भगवान ने हमारे परित्याग को, हमारे को जो दिया, रोम रोम से बाहर से भीतर तक हमारा समुदाय की सेवा के लिए जीवन दिया, उससे कहीं हम अलग ना हो जाएं, यही विचार किया होगा। कहीं हम भोगी ना हो जाएं, कहीं हम संतुष्ट ना हो जाएं, कहीं हमारा भजन छूट ना जाए, इसलिए भगवान ने नहीं दिया। कहीं हमारी विशिष्टता लुप्त ना हो जाए, गायब ना हो जाए, कहीं हम समाज के लिए जीना छोड़कर अपने लिए जीना शुरू कर दें, इसलिए भगवान ने हमें कोई भौतिक संसाधन नहीं दिया। अब ये विचारों की महान अवस्था है मित्रों, इससे बड़ा व्यवहार भला क्या होगा। सुदामा जी ने कितना बड़ा समाधान निकाल लिया। अब तो लोग कर्जा लेकर व्यक्तिगत संपत्ति बना लेते हैं, फिर दिवालिया घोषित करके गायब हो जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में हजारों लोग पूर्ण संपत्तिवान होकर भी अपना दिवाला निकाल रहे हैं। ऐसे लोगों को कब और कैसे सुकून मिलेगा, कैसे शांति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: भैया, यदि लोग गलतियों से सबक लेते हैं तो फिर दूसरी गर्लफ्रेंड क्यों बनाते हैं? दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है, शामें कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ देते हैं। बैठ जाता हूं मिट्टी पे अक्सर, मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का तरीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं कि मुझमें कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूं मुझमें कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन। एक मुद्दत से मैंने न तो मोहब्बत बदली और न ही दोस्त बदले हैं। एक घड़ी खरीद कर हाथ पर क्या बांध ली, वक्त पीछे ही पड़ गया है मेरे। सोचा था घर बनाकर सुकून से बैठूंगा, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला मुझे। सुकून की बात मत कर, बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। जीवन की भागदौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत खो जाती है, हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। खुश हूं और सबको खुश रखता हूं, खुश हूं और सबको खुश रखता हूं। लापरवाह हूं खुद के लिए मगर सबकी परवाह करता हूं। मालूम है कोई मोल नहीं है मेरा फिर भी, मालूम है कोई मोल नहीं है मेरा फिर भी, कुछ अनमोल लोगों से रिश्ते रखता हूं, कुछ अनमोल लोगों से रिश्ते रखता हूं। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

मैं बचपन से ही अपने से बड़ी उम्र के लड़कों और लफंगों के साथ रहा। मैं महज 7 साल का ही तो था, लेकिन तकरीबन जवान हो चुके लड़कों से मेरी दोस्ती रही। उनके साथ ही क्रिकेट खेला, अखाड़ों में कुश्ती लड़ी, वर्जिश की। अपने उस्ताद के पैरों और पीठ पर सरसों का तेल मला, कुछ दाव लगाने सीखे और फिर उस्ताद के कहने पर पास के गांव में लगने वाले मेले में आयोजित दंगल में भाग लेने जाता था। उन दिनों 3 रंगों की लंगोट हुआ करती थी, लाल, सफेद और काली। उन 3 रंगों में से मैंने अपने लिए लाल रंग की लंगोट चुनी। लफंगों के साथ जंगल में खूब भटका, ज्यादातर दोपहरें पेड़ों पर गुजारी, कबूतरों के पीछे भागा, तीतर बटेर का पीछा किया, उन्हें कीटनाशक DDT पाउडर खिलाकर मारा, फिर लकड़ी पर सेक के खाया। यही वो दिन थे जब मैंने बीड़ी पीना सीखा, कभी कभी सिगरेट, फिर धीमे धीमे गांव की अंधेरी गलियों में शराब पीना सीखा। देर रात तक गांव की अंधेरी गलियों में बैठकर मैं ये जानने की कोशिश करता था कि कैसे धुएं के छल्ले बनते हैं, बादलों का धुएं से क्या संबंध है। शायद यहीं से कविताओं ने मेरे भीतर जगह बनानी शुरू की होगी, लेकिन तब मैं जानता नहीं था कि कविता भी कोई चीज होती है। हालांकि अब भी मुझे नहीं पता कि कविता क्या होती है, लेकिन मैं उसे बार बार लिखकर समझने की कोशिश करता रहता हूं। मैं अब तक वो कविता नहीं लिख पाया हूं जिसका मुझे सबसे ज्यादा इंतजार है। खैर, मैं असल कहानी पर आता हूं। तो उन दिनों उस नाजुक उम्र में मैंने शराब, सिगरेट और कुश्ती जैसी सारी सख्त चीजें की। इनमें से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उस वक्त नहीं की जाना चाहिए थी, लेकिन उम्र हमेशा मुझे अपने से आगे की ओर ही धकेलती रही। मैं उन दिनों जंगल, घास, फूल, कांटे, गायें, बेल, तालाब, कुओं और फसलों की संगत में रहता था। मुझे लगता था एक दिन इनमें से ही कुछ बन जाऊंगा। मैं किसी दिन घास बन जाऊंगा और हवा के साथ रहूंगा। कभी लगता मैं कोई कुआं हो सकता हूं जिसका पानी खेतों में जाएगा। कई बार सोचता था कि हो सकता है मैं बड़ा होकर कोई फूल बन जाऊं जो किसी दिन किसी देवता के सर पर रखा जाऊं, या कोई सुंदर स्त्री के बालों के जूड़े में ठूंस दिया जाऊं। खुले आसमान के नीचे मैं अपने घर की टीन की चद्दरों पर सोए हुए इन्हीं सारी कल्पनाओं में खोया रहता था। कभी आसमान का तारा बन जाता तो कभी जंगल का कोई कांटा। फिर एक दिन मैंने अपने पुरखों से सुना कि मरे हुए लोगों का पेट भरने और उनकी प्यास बुझाने के लिए कौवे छतों पर आते हैं। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

आइए दोस्तों एक मजेदार कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था एक राज्य में, जैसे हमेशा होते हैं। उसका एक मंत्री था जो कि बड़ा समझदार था और नाम भी उसका था बुद्धिमान। ज्यादातर मंत्री इस तरह की कहानियों में समझदार ही होते हैं ना दोस्तों। तो एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर पूछा कि भाई जरा ये बात बताओ, ये भेड़िया धसान का मतलब क्या होता है। मंत्री थोड़ी देर तक तो सोचता रहा और फिर कहा, हुजूर मुझे 2 दिन का मोहलत मिले तो मैं इसका जवाब दे पाऊंगा आपको। राजा ने 2 दिन की मोहलत दे दी। मंत्री जो थे वो सुबह सुबह अगले दिन उठे, नहा धोकर तिलक लगाया और गांव के बाहर तालाब के किनारे चले गए। वहां कई सारे खच्चर घास खा रहे थे। मंत्री ने उनमें से एक की 3 बार प्रदक्षिणा की, यानी कि चक्कर लगाया, और उसका एक बाल नोच कर अपने कान पर रख लिया। तालाब के किनारे कुछ लोग जमा हो गए। एक ने पूछा, मंत्री

सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, जो तुम चल सको तो चलो। इधर उधर हैं कई मंजिलें, इधर उधर हैं कई मंजिलें, जो तुम चल सको तो चलो। बने बनाए हैं सांचे, जो तुम ढल सको हाँ तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। किसी के वास्ते कहाँ बदलती है जिंदगी, जो तुम खुद को बदल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से बहल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज, कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो।

0: यहां कोई किसी को नहीं देता रास्ता, जो मुझे गिरा कर चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो।
1: दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम में बॉलीवुड के बेमिसाल कॉमेडी अभिनेता महमूद साहब के बारे में हम बात करेंगे। महमूद साहब का जन्म 29 सितंबर 1932 को हुआ था। महमूद अली ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने हास्य के विभिन्न रंगों को बिखेर कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। वैसे तो महमूद ने हर तरह की भूमिकाओं को बखूबी निभाया, लेकिन कॉमेडी से सरोबार उनके किरदारों को अलग पहचान मिली। हो जाए उनके ऊपर फिल्माया हुआ ये गीत।

महमूद ने फिल्मों में 4 दशक तक काम करके 300 से ज्यादा फिल्मों में अपने एक्टिंग और हास्य शैली से बतौर कॉमेडियन एक अलग शैली बनाई थी। उनका अपना स्टाइल था। महमूद के लिए सबसे ज्यादा गर्व की बात तो ये थी कि कई कलाकारों ने उनके पात्रों की नकल की, उनकी एक्टिंग की कॉपी करने की कोशिश की। यहां तक कि बॉलीवुड के सरताज अमिताभ बच्चन ने भी इनके हैदराबादी पात्र की कॉपी करने की कोशिश की। आइए सुने इनकी फिल्म का एक गीत।

साहब की खासियत ये थी कि वे दर्शकों को जितना हंसा हंसा कर लोट पोट कर सकते थे, उतने ही संजीदा किरदार निभाकर दर्शकों को रुला भी सकते थे। लीजिए पेश खिदमत है उनकी फिल्म का ये गीत।

महमूद जी अभिनेता मुमताज अली के बेटे थे। यूं तो महमूद ने बाल कलाकार के रूप में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन बड़े होते होते इन्होंने फिल्मों के अलावा भी कई काम किए। बहुत ही कम लोग जानते होंगे दोस्तों, महमूद ने अपने समय की मशहूर अदाकारा मीना कुमारी को कुछ समय के लिए टेबल टेनिस की ट्रेनिंग भी दी थी। आइए उनकी फिल्म का एक गीत सुनते हैं।

0: हर कलाकार ही की तरह इन्होंने भी अपनी शुरुआती दौर में बहुत संघर्ष किया। इन्होंने कई सालों तक जूनियर आर्टिस्ट के रूप में प्यासा, सीआईडी और दो बीघा जमीन जैसी फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए, लेकिन इन्हें सामान्य रूप से अभिनय करने के बजाय कॉमेडी से ओतप्रोत किरदारों को करने में ज्यादा मजा आता था, जिसे दर्शकों के बीच भी खासा पसंद किया जाता था। इतना ही नहीं, महमूद साहब ने 1965 में भूत बंगला के साथ निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रखा। बड़ी मजेदार बात यह है कि भूत बंगला फिल्म में इनका डांस बेहद मशहूर हुआ। आइए दोस्तों सुने यही गीत।
1: सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ।
2: आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूँ
1: और गाने में ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

0: 1974 में इन्होंने फिल्म कुंवारा बाप का भी निर्देशन किया, जिस फिल्म ने दर्शकों को बहुत प्रभावित किया और बहुत रुलाया। इसके अलावा महमूद कई फिल्मों में बतौर पार्श्व गायक भी काम करते रहे। तो हो जाए उनकी फिल्म का ये गीत।
1: चुनिया, अरे किधर है रे तू?

महमूद ने कपूर खानदान की तीनों पीढ़ियों पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर की फिल्म हमजोली में नकल कर दर्शकों को हंसा हंसा कर खूब लोटपोट किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने पड़ोसन फिल्म में साउथ इंडियन म्यूजिक टीचर का किरदार निभाकर संगीत में कॉमेडी को जन्म दिया। आइए हो जाए यही गीत।

0: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत जात, अरे आय आय आय आय आय आय, चतुर नार बड़ी होशियार करके सिंगार, अपने ही जाल मेरे मन के द्वार फंसत जात, घुसत जात, हम हंसत जात, हम मरत जात, मरत जात, अरे मरत जात।
1: एक नामी कलाकार होने के बावजूद महमूद डाउन टू अर्थ थे। इसी का नतीजा था कि वे नए लोगों को काम देने का पूरा मौका देते थे। उन्होंने संगीतकार राहुल देव बर्मन को फिल्म छोटे नवाब के लिए काम करने का मौका दिया, जो कि बॉलीवुड के लिए एक नायाब तोहफा बनकर उभरा। आइए सुनते हैं उन्हीं का एक गीत।

0: सकती।
1: अरे नहीं भाई नहीं, हाँ बुरा हो वक्त तो साया भी अपना दूर रहता है। वफादारी का शिकवा क्या, जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है।
0: अरे क्या

0: अगर कुछ नाम हो जाए तो आकर घेर लेते हैं।
1: हाँ, जहाँ वाले मोहब्बत करके वादा क्या निभाएंगे।
0: सच भाई हुए।

महमूद ने अमिताभ बच्चन के संघर्ष के दिनों में मदद करने के लिए बॉम्बे टू गोवा को, खास करके बच्चन के करियर को आगे बढ़ाने के लिए बनाया था। इतना ही नहीं, इनकी जोड़ी को आईएस जौहर के साथ भी पसंद किया गया। इन दोनों ने जौहर महमूद इन हांगकांग, नमस्ते जी, जौहर महमूद इन गोवा जैसी फिल्में दी जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। आइए दोस्तों सुनते हैं इनकी फिल्म का एक और प्यारा सा गीत।

महमूद साहब को 1963 में आई फिल्म दिल तेरा दीवाना के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें कई फिल्मों प्यार किए जा, वारिस, पारस और वरदान के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। आइए दोस्तों, इनकी ही फिल्म का एक और फड़कता हुआ गीत सुनते हैं।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। बने रहिए मेरे साथ इस प्रोग्राम आज के कलाकार में।
1: अरे तू

आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

बिस्वजीत चटर्जी, जो सिंपल बिस्वजीत के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म 14 दिसंबर 1936 में हुआ था। ये हिंदी सिनेमा के मशहूर एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिंगर और पॉलिटिशियन भी बने। चलिए शुरुआत करते हैं इनकी फिल्म के इस गीत से।

बहुत ही स्वाभाविक अभिनय और बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध थे बिस्वजीत चटर्जी। इन्होंने बंगाली फिल्मों और हिंदी फिल्मों के दर्शकों के दिलों पर सालों साल राज किया। चलिए हो जाए इनकी फिल्म का ये गीत।

बिस्वजीत कोलकाता में पले बढ़े और इनके एक्टिंग की सफर की शुरुआत बंगाली फिल्मों से हुई। माया, मृग और दुई भाई जैसी सफल बंगाली फिल्मों में एक्टिंग करने के बाद बिस्वजीत ने हिंदी फिल्मों का रुख किया। चलिए इनकी फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

बिस्वजीत कोलकाता से मुंबई आए। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने बंगाली फिल्मों की तरह इस सफल अभिनेता को सर आंखों पर लिया। परिणाम स्वरूप बेहद कम समय में बिस्वजीत की झोली हिंदी फिल्मों से भर गई। चलिए उनकी फिल्म का एक और नगमा सुनते हैं।

1962 में बिस्वजीत चैटर्जी की पहली फिल्म 20 साल बाद प्रदर्शित हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। देखते ही देखते बिस्वजीत हिंदी फिल्मों के तेजी से उभरते हुए अभिनेता बन गए। हो जाए उनकी फिल्म का ये गीत।

बिस्वजीत के चाहने वालों ने उन्हें किंग ऑफ रोमांस की उपाधि दी। है ना मजेदार बात। बिस्वजीत पर फिल्माए गए गीतों की लोकप्रियता ने उनके फिल्मी करियर में चार चांद लगा दिए। चलिए हो जाए उनका ये खूबसूरत सा गीत।

बिस्वजीत चैटर्जी ने कई यादगार फिल्मों में नायक की भूमिका निभाई, जिनमें मेरे सनम, शहनाई, अप्रैल फूल, दो कलियां और शरारत खास हैं। हो जाए उनकी फिल्म का ये गीत। ये

विश्वजीत को उस समय के लगभग सभी हीरोइनों के साथ एक्टिंग करने का मौका मिला, खास करके आशा पारिख, मुमताज, माला सिन्हा और राजश्री के साथ उनकी रोमांटिक जोड़ी हमेशा बहुत पसंद की गई। तो सुनिए उनकी फिल्म का ये गीत।

हिंदी फिल्मों में मिली सफलता के बाद भी बिस्वजीत ने बंगाली फिल्मों में अभिनय करना नहीं छोड़ा। वो कोलकाता आते जाते रहते थे और चुनिंदा बंगाली फिल्मों में अभिनय करते रहे, जिनमें सुपरहिट फिल्म चौरंगी उल्लेखनीय है। चलिए उनकी फिल्म का ये गीत।

अभिनय के बाद विश्वजीत ने फिल्म डायरेक्शन की तरफ भी कदम बढ़ाए। 1975 में फिल्म बनी कहते हैं मुझको राजा, जिसका निर्माण और निर्देशन दोनों इन्होंने ही किया। इस फिल्म में थे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा और रेखा। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा बिजनेस किया।

विश्वजीत की अनगिनत फिल्में आईं। उन्होंने 2002 तक फिल्मों में काम किया। चलिए विश्वजीत की इस फिल्म का एक और नगमा सुनते हैं।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: दोस्तों, आप हैं आप ही के दोस्त समीर के साथ 90.8 FM रेडियो टांटिया भील आपके झाबुआ की आवाज पर। तो दोस्तों, लीजिए शुरू करते हैं गजलों का ये महकता हुआ प्रोग्राम आज शाम।
1: धीरे धीरे हर शम बुझी रफ्तार।
0: गजलों की इस शाम के प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो राइटर शायरा हमारे साथ प्रोग्राम में हैं, उनका नाम है डॉक्टर दुर्गा सिन्हा जी। डॉक्टर दुर्गा सिन्हा जी बनारस से हैं और BHU में मनोविज्ञान विभाग की लेक्चरर थी। अभी ये बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, लेखिका हैं। इनकी तमाम किताबें अमेजॉन पर भी हैं और हिंदी साहित्य की सेवा में लगी हुई हैं। अभी डॉक्टर दुर्गा सिन्हा US में हैं और हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में हैं। मैम, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे प्रोग्राम में आए।
2: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: आपका स्वागत करते हुए मैम, बस एक सबसे पहला मासूम सा सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, इससे पहले कि हम आपके लेखन के बारे में बात करें, कि आप बचपन में क्या बनना चाहते थे मैम?
2: मैं बचपन में ऐसा कोई खास सपना नहीं था, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी जो सिविल सर्विसेज में थे, वो ही रिटायर्ड एज कलेक्टर, तो उनका मानना ये था कि लड़कियों को टीचिंग में जाना चाहिए। तो शुरू से ही मन में भरा था कि यूनिवर्सिटी के लेक्चरर बनना चाहिए तुम्हें। तो एक मन में फीलिंग थी कि हाँ, मैं, उनका मानना यह था कि बच्चों के साथ रहोगे तो कभी बुजुर्गियत नहीं आएगी, और मुझे लगता है उनकी बात बहुत सच थी। आज भी मैं अपने आप को उन्हीं बच्चों के स्तर का ही महसूस करती हूँ मन से, उनके साथ रहकर।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दुर्गा मैम। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी पहली गजल सुनाएं जो हमारे श्रोताओं के लिए मैं समर्पित करना चाहूंगा, प्लीज मैम।
2: जी जी, जरूर। तो जैसा मैंने कहा कि मैं मनोविज्ञान की अध्यापिका तो नहीं कहूंगी, मैं विद्यार्थी ही रही हूँ और आज भी विद्यार्थी ही हूँ मैं, और साहित्य को भी मैं सीख रही हूँ। तो मेरी पहली गजल जो मैं सभी को समर्पित करती हूँ कि हमें अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है, तो इसका उन्वान ही मैंने रखा है, जरूरी है।
0: जी,
2: खुद से खुद की अपनी पहचान जरूरी है, खुद से खुद

की है, खुद से खुद की अपनी पहचान जरूरी है। धर्मों में बटकर हम सीमित होते जाते, मंदिर में पूजा मस्जिद में अजान जरूरी है, खुद से खुद की अपनी पहचान जरूरी है। हम

0: खुद से खुद की अपनी पहचान जरूरी है। मुफलिस इतने देखे मुश्किल से जीते हैं, उन सब का ही अब तो उत्थान जरूरी है। खुद से खुद की अपनी पहचान जरूरी है।
1: बहुत खूब।
0: दिन रात यहाँ कटते हंसते गाते रोते, सबके ही होठों पर मुस्कान जरूरी है। अभिमान उदार हमें अपने इस जीवन पर, उदार मेरा तखल्लुस है, अभिमान उदार हमें अपने इस जीवन पर, हर जीवन का अब तो सम्मान जरूरी है। खुद से खुद की अपनी पहचान जरूरी है। खुद को पहचान ले तो हमें लगता है कि दुनिया में किसी तरह की कोई मुश्किल, कोई समस्या ही नहीं रहेगी।
1: बहुत खूब, बहुत सुंदर बात कही, बहुत सुंदर बात कही मैम आपने
0: जी,
1: कि अगर हम खुद को पहचान लें तो इस दुनिया में कोई तकलीफ रहेगी ही नहीं।
0: बिल्कुल, हम दूसरों की जगह अपने को रख करके देखना शुरू कर सकेंगे और फिर वो नहीं करेंगे जो हमें सचमुच नहीं करना चाहिए।
1: बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने किसी पसंदीदा गजल गायक की कोई गजल हमें बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुनवा सकें।
0: मैं देखिए, मैं बहुत सारे बेगम अख्तर, गुलाम अली, नुसरत फतेह अली खान और मीना कुमारी, इन लोगों की गजलों को, गजलें हम लोग बहुत सुनते थे और सुनते रहते हैं। मुझे मीना कुमारी जी की गजल एक बहुत प्रिय है, यूं तेरी गुजर से दीवानावार गुजरे, अगर आप सुनाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैम आइए दोस्तों, सुनते हैं मीना कुमारी जी की ही गाई हुई ये प्यारी सी गजल।

0: आगे बढ़ते हैं मैम, और आपसे बस एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि आपका सबसे पसंदीदा खाना क्या है और क्यों?
1: बड़ा कठिन सवाल
0: है। कठिन ये तो बहुत ही आसान होना चाहिए।
1: मुझे सब चीजें

0: पसंद है
1: जी,
0: और इसका श्रेय मैं देती हूँ कि मुझे 7 साल हॉस्टल में रहने का सुअवसर मिला है
1: जी।
0: तो हॉस्टल में रह करके जो भी मिलता था वो हमें खाना जरूर, और उस जमाने के हॉस्टल में आपको पता है जब मैंने पढ़ाई की तो 1961 में मैं 11th में हॉस्टल में चली गई थी कक्षा में, तो उस समय का ये था डिसिप्लिन अनुशासन दूसरे ही प्रकार का था, आज के तरह का नहीं था। तो सब चीजें खाना है और सब चीजों को लेना है और खाना भी है
1: जी।
0: तो वहीं से टेस्ट डेवलप हुआ सब चीजें, वैसे मिठाई कम, नमकीन चाट पकौड़े और ये सब चीजें ज्यादा पसंद है जो हमें लगता है कि महिलाओं को पसंद भी आती है
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही कहा, बहुत बहुत बहुत अच्छा। तो दुर्गा मैम, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपना अगला कलाम हमें सुनाएं।
0: जी मैं अपनी अलग तरीके की बात कहती हूँ कि गजल मैं लिख रही हूँ, बस अपने गजल है कि नहीं है, नज्म है, क्या है, बहुत ज्यादा मैं उन बंदिशों में नहीं घूमती हूँ, मैं अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करती हूँ। हो सकता है मैं गजल के पैरामीटर पर ना भी खरी उतरूं,
1: कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने बिल्कुल सही फरमाया, आपकी भावनाओं का ही आदर होना चाहिए।
0: जी
1: जी,
0: तो मैं एक अपनी मनपसंद गजल पेश करती हूँ।
1: जी,
0: खूबसूरत गजल लिख रही हूँ, आशिकी की पहल लिख रही हूँ,

की फजल लिख रही हूँ, खूबसूरत गजल लिख रही हूँ।

دوستی کی نزل لکھ رہی ہوں، خوبصورت غزل۔

चाहतों से समल लिख रही हूँ, खूबसूरत गजल लिख

ओ मैं गजल लिख रही हूँ, खूबसूरत गजल लिख रही हूँ। अंतिम बंद है किसी

0: प्यार मैं नकल लिख रही हूँ, खूबसूरत गजल लिख रही हूँ, आशिकी की पहल लिख रही हूँ। शुक्रिया।
1: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही सुंदर गजल, बहुत ही सुंदर गजल।
0: क्या आपको अच्छी लगी?
1: तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा दुर्गा मैम कि अपने किसी पसंदीदा गजल गायक की कोई गजल बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुनवा सकें।
0: तो आप गुलाम अली साहब की गजल सुनवा दीजिए। मैं तो गुलाम अली जी की तो सभी गजलें बहुत प्रिय हैं
1: जी, फिर भी कोई खास गजल?
0: चुपके चुपके।
1: जी बिल्कुल ठीक। आइए दोस्तों सुनते हैं डॉक्टर दुर्गा मैम की फरमाइश पर गुलाम अली साहब की गाई हुई ये प्यारी सी गजल।

0: बहुत खूब, बहुत ही सुंदर गजल। दुर्गा मैम, आपका सबसे पसंदीदा रंग कलर कौन सा है और क्यों?
1: मेरा पसंदीदा कलर लाल है
0: जी,
1: और ऑरेंज भी है, पर लाल इसलिए पसंद है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि प्रेम का रंग है लाल,
0: जी
1: तो रेड कलर मुझे बहुत भाता है।
0: बहुत खूब, बहुत सुंदर। तो आगे बढ़ते हुए मैं फिर से आपको, आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा, आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि एक और गजल हमारे दोस्तों के लिए सुनाएं।
1: जी, मैंने जैसा अभी कहा आपको कि मैंने देह दान किया है
0: जी।
1: और मैं ये मानता हूँ कि देखिए ब्लड डोनेशन बहुत लोग करते हैं, रक्तदान देते हैं,
0: जी
1: धन दान देते हैं, विद्या दान देते हैं, और अभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि देह दान हम जलाकर राख कर देते हैं अपने शरीर को, इससे बेहतर जिन्हें जरूरत है उनको हमारे देह से, अगर जो भी शरीर का अंग हमारा सही है वो उनको मिल जाए और उनको जिंदगी मिल जाए तो बहुत ज्यादा लाभ होगा समाज को। और हमने एक लेक्चर भी सुना मेडिकल कॉलेज में जाकर, तो उन्होंने जो बातें हमें विस्तार से बताई, हमें लगा कि हमारे शरीर में पढ़ने के लिए अगर हम कॉलेज को ही दे दें शरीर को तो वो ज्यादा उपयोगी बन पड़ेगा। ईश्वर कैसा रखेगा अपने शरीर को नहीं पता, लेकिन ये है कि हम कोशिश करें कि हम स्वस्थ रह सकें और हमारे मरने के बाद भी हम काम आ सकें समाज के लिए।
0: बहुत सुंदर।
1: उसी भाव को लेकर मैंने एक गजल लिखने की कोशिश की है, आशा है आप सभी को पसंद आएगी।
0: जी इरशाद।
1: अरमान अपने जीने का, अरमान अपने जीने का किया कीजिए, अरमान अपने जीने का किया कीजिए, खुद के लिए भी थोड़ा थोड़ा जिया कीजिए, खुद के लिए भी थोड़ा थोड़ा जिया कीजिए। माना के दोस्ती में, माना के दोस्ती में कोई गैर नहीं है, माना के दोस्ती में कोई गैर नहीं है, एहसान दुश्मनों का भी लिया कीजिए, अरमान अपने जीने का किया कीजिए। वर

0: कुछ कीजिए पुरुषार्थ भी फिर दुआ कीजिए, अरमान अपने जीने का किया कीजिए। हर दान से बढ़कर है देह दान आज अब, हर दान से बढ़कर है देह दान आज अब, कुछ इस तरफ भी सोचिए कुछ किया कीजिए, अरमान अपने जीने का किया कीजिए। माना उदार हमने देखा नहीं रब को, माना उदार हमने देखा नहीं रब को, फिर भी उसी की चाह में ही जिया कीजिए, अरमान अपने जीने का किया कीजिए, खुद के लिए भी थोड़ा थोड़ा जिया कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये मानती हूँ कि खुद के लिए जीना मतलब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, तभी तो आपका शरीर दूसरे के लिए काम आ सकेगा।
1: बिल्कुल ठीक फरमाया मैम आपने, बहुत बहुत ही सच्ची और सीधी सी बात कही। आपकी इस गजल से पहले जो आपने बताया कि आपने देह दान किया है, मुझे बहुत गर्व है, बहुत खुशी है इस बात की कि आप जैसे प्रबुद्ध लोग, आप जैसे सीनियर लोग हमारे समाज के, इतनी समझदारी से ये फैसला ले रहे हैं, जबकि हमारे ही समाज में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, जिन्होंने पता नहीं पीएचडी से भी ऊपर कुछ कुछ पढ़ाई कर रखी है।
0: पीएचडी तो मैंने भी कर रखी है, पर
1: लेकिन आपने समझदारी से उस पढ़ाई को गुना है ना, अपनी जिंदगी में उतारा है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, उनसे करबद्ध माफी मांगते हुए कि जो पढ़ तो बहुत लेते हैं, समझदार नहीं होते। कहीं पर मैंने एक पढ़ा था और मुझे बहुत पसंद आता है वो जुमला, और मैं अक्सर देता रहता हूं कि बहुत सारी पढ़ाई लिखाई समझदारी की निशानी नहीं होती। लॉट ऑफ एजुकेशन इज नॉट गारंटी ऑफ विजडम। तो छोटे छोटे दकियानुसी विचारों वाले लोग जो बड़े बड़े पीएचडी करके बैठे होते हैं, बहुत ही तकलीफ पहुंचाते हैं। बहुत ही आहत होता हूं मैं जब मैं देखता हूं कि इतना पढ़ा लिखा आदमी इतनी छोटी बात कर रहा है, बड़ा दुख होता है। चलिए जाने देते हैं मैम, उनकी जिंदगी उनके सहारे, हमारी जिंदगी हमारे सहारे। आपने देहदान करके एक मिसाल कायम की, आज की जनरेशन को बताया है कि किस तरीके से हम हमेशा इस दुनिया के काम आते रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगा कि अपने किसी पसंदीदा गजल गायक की कोई गजल बताएं।
0: पसंदीदा गजल गायक के, मैं तो फिर मीना कुमारी को ही दूंगी
1: जी।
0: आवाज चांद तन्हा है आसमां तन्हा।
1: बहुत खूब, बहुत ही प्यारी गजल। आइए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारी सी गजल मीना कुमारी जी की गाई हुई।

0: बहुत ही सुंदर गजल। मैम, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक छोटा सा सवाल, अगर मैं किसी को आपके बारे में बताऊं तो आप क्या चाहेंगी कि मैं आपका परिचय उनको कैसे दूं?
1: बस मैं एक सामान्य गृहिणी हूं और परिवार से प्रेम करती हूं, केवल अपने परिवार से ही नहीं, मैं पूरा विश्व मैं परिवार मानती हूं। अपने देश अपनी भाषा के लिए मैं कार्यरत हूं और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूं कि मैं सतत जो उद्देश्य लेकर चल रही हूं अपने जीवन में, उस उद्देश्य में सफल हूं और सक्रिय रहूं, अनवरत सेवा कर सकूं अपने समाज की, देश की, विश्व की, क्योंकि मैं अपने को केवल भारत का ही नहीं कहती हूं, पूरे विश्व। हम इंसान हैं तो इंसान हम सीमित नहीं है, हमारा विशाल हृदय होना चाहिए। और शायद उदार जो नाम है हमारा, हालांकि उदार में परिवार के ही लोगों के नाम है, उन्हीं अक्षरों से मिलकर ये मेरा तखल्लुस मैंने रखा है, पर इतना छोटा नहीं है परिवार मेरा, मेरा परिवार पूरा विश्व है। तो व्यापकता, विशालता अपने हृदय में लेकर चल रही हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि लोग भी इसी तरह से मुझे जाने कि पूरे विश्व को जो परिवार मानकर चल रहे थे, ऐसी एक महिला जिन्होंने अपनी भावनाएं जो अभिव्यक्त भी की है, मैंने, आप देख रहे होंगे कि मैं अकेले किसी एक व्यक्तिगत भाव को लेकर नहीं, समग्रता के भाव को लेकर मैं लिखने की कोशिश करती हूँ।
0: जी बहुत खूब, बहुत सुंदर। मैम, मैं गुजारिश करूंगा कि एक गजल और सुनाएं हमारे श्रोताओं के लिए।
1: ठीक है, सुनाती हूँ मैं। मैंने अभी मीना कुमारी जी की गजल चांद तन्हा आसमां तन्हा की फरमाइश की आपसे, तो आप इसको उसके साथ संलग्न कर सकते हैं। कोई खुशी नहीं थी तेरी आशिकी से पहले,

पहले धड़का नहीं था दिल भी, दिल की लगी से पहले कोई खुशी नहीं थी। खुद को ही जानती थी, खुद को ही मानती थी, खुद को ही जानती थी, खुद को ही मानती थी। मैं भी तो मैं कहाँ थी, तेरी दोस्ती से पहले कोई खुशी नहीं थी। अल्फाज बोलते हैं जब से मिली हूँ तुमसे, अल्फाज बोलते हैं

नहीं है, वो खुदा बनेगा कैसे, वो खुदा बनेगा कैसे, बने आदमी से पहले कोई खुशी नहीं थी। अंतिम बंद है, मेरी बंदगी ने तुझको अबूदार खुदा बनाया, मेरी बंदगी ने तुझको अबूदार खुदा बनाया, तू भी खुदा कहाँ था, तू भी खुदा कहाँ था।

0: थी। शुक्रिया।
1: बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत ही बेहतरीन गजल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत आपका।
1: अब मैं फिर से गुजारिश करूंगा कि अपने किसी पसंदीदा गजल गायक की गजल बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुनवा सकें।
0: गुलाम अली साहब की आवारगी।
1: बहुत खूब, बहुत ही प्यारी गजल। आइए दोस्तों सुनते हैं गुलाम अली साहब की ये प्यारी सी गजल। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत आभार। आपकी गजलें हमने सुनी, आपसे बातचीत हमने की, श्रोताओं ने आपके इतने सालों के अनुभवों का लुत्फ उठाया, उसका फायदा लिया। आपके आपने जो एक मिसाल कायम की है देह दान करके, अपने समाज को सिखाया है कि किस तरह से हम रूढ़ीवादी सोच को छोड़कर समाज के लिए चाहें तो कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब
0: जी। और अगर आप इजाजत दें तो एक संदेश।
1: जी जरूर जरूर जरूर जरूर।
0: शायद ये आखिरी गजल होगी।
1: जी जरूर जरूर इरशाद। जी जी जी।
0: तो मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग जीवन में, देखिए परेशानियां और संघर्ष के बिना तो जीवन नहीं है
1: जी।
0: लेकिन अगर आप, जैसा मैंने कहा कि पहले तो खुद को पहचाने, और पहचान करके संघर्षों में भी अगर हम गुनगुनाते रहें, मुस्कुराते रहें और उन परेशानियों को बहुत ज्यादा दिल से न लगाएं, कोशिश करें उन पर एक तरह से उनको दूर करने की और उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित न होने की, तो हम बड़े बहुत खुश रह सकते हैं। और हम जब खुश रहते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी खुश रहता है। आप दुखी तो आप उस दुख की जो भावना है वो उसका ही संचार और प्रसार कर रहे हैं आपस में, जो भी आपके संपर्क में आता है। आप अगर मन से प्रसन्न हैं, खुश हैं, खुश रहने की कोशिश, किसके जीवन में दुख नहीं है? कौन अस्वस्थ नहीं होता है? शरीर से अस्वस्थ होता है, मन से अस्वस्थ होता है। लेकिन कोशिश हमारी अगर हो कि हम समय दें थोड़ा सा उसको, कि समय के प्रवाह में धीरे धीरे वो सुख जब नहीं रहता है तो दुख भी नहीं, क्यों रहेगा, दुख भी नहीं रहेगा। तो मैं एक छोटी सी संदेशात्मक आप कह सकते हैं। गीत गाए नहीं तो किया कुछ नहीं। गीत गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही संदेश है। गीत गाए नहीं तो किया कुछ नहीं। गीत गाए नहीं तो किया कुछ नहीं। मुस्कुराए नहीं तो मिला कुछ नहीं। हर सपन की अधूरी सी एक रात है। हर सपन की अधूरी सी एक रात है। स्वप्न आए नहीं तो हुआ कुछ नहीं। सपना देखिए, ख्वाब देखेंगे वही पूरे होंगे। स्वप्न आए नहीं तो हुआ कुछ नहीं। गीत गाए नहीं जिन अंधेरों से डरते रहे उम्र भर। जिन अंधेरों से डरते रहे उम्र भर। सामना जब हुआ डर रहा ही नहीं। गीत गाए नहीं तो किया कुछ नहीं। अपने

करो उसके रहमो करम का पता कुछ नहीं, गीत गाए नहीं तो किया कुछ नहीं। ओ बुझ न जाए चराग रखना कोशिश यही, बुझ न जाए चराग रखना कोशिश यही, हौसले से बड़ा हौसला कुछ नहीं, गीत गाए नहीं तो किया कुछ नहीं। ओ कुछ तो हमसे कहो क्या सुनाए तुम्हें, कुछ तो हमसे कहो क्या सुनाए तुम्हें, अन कहा कह दिया पर कहा कुछ नहीं, गीत गाए नहीं तो किया कुछ नहीं। उसने सब कुछ दिया जू न मांगा उधार, उसने सब कुछ दिया जू न मांगा उधार, उसकी रहमत से बढ़कर दुआ कुछ नहीं, गीत गाए नहीं तो किया कुछ नहीं, मुस्कुराए।

0: जो आपकी परेशानी है, जो आपकी समस्या है, मुझ तक पहुंचाइए। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी परेशानियों को कम कर सकूं। और मेरी कोशिश तब से आज तक जारी है, यहाँ रह करके भी। अभी मैं 3 साल ही हुए हैं अमेरिका आए, यहाँ भी मैं हमारे 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जो मेरे संपर्क में हैं, यहाँ विदेश में रहने वाले हमारे साथी कह लीजिए कि जिनको जरूरत है और वो बात करते हैं। तो हम लोग ऑनलाइन बहुत से, आजकल तो ये डिजिटल वर्ल्ड ने दुनिया छोटी कर दी है, ऑनलाइन हम लोग बहुत सी समस्याओं का समाधान भी करने की कोशिश करते हैं। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अवसाद में डूबने से अच्छा है कि अपने अंदर झांक कर अपने हौसले को, अपनी शक्तियों को पहचानिए और बढ़ाने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका आशीर्वाद, आपके संदेश हमने सुने, सारे श्रोताओं ने सुने, बहुत लाभान्वित हुए वो। आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे प्रोग्राम में आए।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं कुछ, मेरी जो मेरे शब्द हैं उन शब्दों का कुछ प्रभाव पड़ेगा लोगों पर। ईश्वर ने चाहा तो जरूर उससे लोग लाभान्वित होंगे।

दोस्तों आज शाम गजलों के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल नई गजलें लेकर मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा आपके पास। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और दोस्तों, हमारे किसान साथियों के लिए खेतीबाड़ी कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत को हम लेकर आते हैं और खास तौर पर उन सेगमेंटों पर बात करते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बेहद जरूरी रहती है। और श्रोता साथियों, आपको बता देना चाहते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी में आज हम तीन तीन कंपोनेंटों पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला बात करेंगे हम कि हमारे किसान साथी, चूंकि मशरूम की खेती करना बड़ा मुश्किल बात तो नहीं है क्योंकि सरकार इसके लिए ट्रेनिंग्स देती है, सब्सिडी भी देती है, लेकिन मशरूम की खेती आखिरकार कैसे की जाती है इस पर हम खास बातचीत करेंगे। साथ साथ में हम सीप की जो खेती रहती है यानी मोतियों की खेती रहती है, अभी आपने सुना होगा कि मोतियों की खेती कैसी होती होगी, उस पर भी आज हम जिक्र करेंगे। और साथ साथ में हम सफल किसान की कहानी हम लेकर आएंगे और साथ में एक और कंपोनेंट जोड़ना चाहेंगे आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में कि केंद्रीय पशु पंजीकृत योजना आखिरकार क्या है, किसानों को के आय को बढ़ाने के लिए, पशुपालन को बढ़ाने के लिए किस तरीके की योजना है, कैसे हमारे किसान साथी इसमें पंजीकरण करा सकते हैं, कैसे इसका लाभ ले सकते हैं, तीनों चारों कंपोनेंटों पर आज हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन साथियों, इससे पहले हम कुछ बातें करना चाहते हैं अपने किसान साथियों से, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि गर्मी का मौसम चल रहा है। ऐसे में हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि बरसात का मौसम जैसे ही आए और हम अपनी फसल लगाना स्टार्ट कर दें, लेकिन उन किसान साथियों से कहना चाहेंगे कि इससे पहले हम तैयारी करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि किसी भी हम कार्य को करते हैं उससे पहले हम प्लानिंग करते हैं कि हमें इस कार्य को करना होगा, इस कार्य को करने के लिए क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या चुनौतियां हैं, कैसे इसको किया जाता है, ये सारी बातचीत हम ध्यान में रखते हैं, एक सोचते हैं कि कैसे खेती की जाती है, कैसे इस काम को किया जाता है। ऐसे ही खेती की बात आती है कि हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि आगे चलकर हम भविष्य में या फिर आगे चलकर कौन सी खेती करें, कैसे करें, क्योंकि उनके लिए कुछ ऑप्शन नहीं है, पथरीला इलाका है, सीमित खेती है, सिंचाई के ज़्यादा साधन नहीं है। किसान साथी सोच रहे हैं क्या करें, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम लेकर आते हैं आपके लिए नई नई जानकारियां इस कार्यक्रम के माध्यम से, और बहुत सारी बातें हम अपने श्रोता साथियों को बता देना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे बातचीत और बहुत सारे मुद्दों को रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम जल्द शुरू करने वाला है और आप जुड़े रहिए हमारे रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम से और सुनते रहिए आप अपने मन पसंदीदा कार्यक्रमों को। चलिए, आपको हम देर नहीं करवाते हैं और हमारे सेगमेंटों का समय होता है और सुनते हैं। सबसे पहले सेगमेंट में हम आज जानेंगे कि किस तरीके से मशरूम की खेती की जाती है, कौन सा उपयुक्त समय रहता है हमारे किसान साथियों के लिए, कैसे की जाती है, आइए इस खास रिपोर्ट को। और साथ साथ में हम सुनेंगे इसमें केंद्रीय पशु पंजीकृत योजना के बारे में। तो ऐसे ही बनी रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम, अपना रेडियो अपनी बात है।
2: आज मशरूम फार्मिंग में सरकार द्वारा मिल रहे प्रोत्साहन एवं कौशल विकास के फलस्वरूप एक बड़े वर्ग ने इसकी कृषि को अपना व्यवसाय बना लिया है। कम पूंजी, कम जगह एवं कम समय में ज्यादा से ज्यादा कमाने की इन्हीं हसरतों ने आज मशरूम फार्मिंग को जन्म दिया। अब आप भी यदि घर बैठे मात्र कुछ पैसों की लागत से अपना खुद का मशरूम बिजनेस शुरू कर लाखों कमाना चाहते हैं, तो मशरूम का व्यापार खास आपके लिए ही है। आज काफी लोग मशरूम की खेती कर लाखों कमा रहे हैं। कि मशरूम की खेती से पहले एक उपयुक्त स्थान का चुनाव काफी महत्वपूर्ण होता है। मशरूम काफी नाजुक होती है, इसलिए भंडारण से वितरण के बीच ज्यादा देर आपकी फसल को खराब कर सकती है। साथ ही मार्केट से ज्यादा दूरी आपकी कुल लागत को भी बढ़ा सकती है। मशरूम की खेती के लिए 35 से 40 डिग्री तक का तापमान अनुकूल माना जाता है। साथ ही मशरूम के विकास के लिए नमी की भी काफी आवश्यकता होती है। हवा में 85 से 90 प्रतिशत तक की आर्द्रता बनाए रखना एक चैलेंज हो सकता है। अमूमन मशरूम की खेती के लिए मई से अक्टूबर तक का समय बिल्कुल उपयुक्त समझा जाता है। हालांकि आवश्यक वातावरण एवं माहौल बना आप 12 महीने इसकी खेती कर सकते हैं। शुरुआती चरण में यदि आप मशरूम की खेती छोटे लेवल पर करना चाहते हैं, तो 400 स्क्वायर फीट तक की जगह आपके लिए उपयुक्त रहेगी। भारत में मशरूम की खेती के लिए मूलतः 3 तरह की क्यारियां बनाई जाती हैं। इसमें पहला है लटकाकर। इसमें मशरूम के लिए कंपोस्ट का निर्माण कर प्लास्टिक बैग में कंपोस्ट रख बीच में बीज की एक परत बना लें। ऊपर से कंपोस्ट की परत दर परत में बीज को रोपकर प्लास्टिक का मुंह धागे से बांध दें। किसी स्टैंड के सहारे कंपोस्ट को झुला कर रख दें। ये विधि खासकर उनके लिए काफी उपयुक्त है जबकि आपके पास जगह का अभाव हो। मशरूम उगाने की दूसरी विधि है जमीन में क्यारियां बनाकर। जमीन में क्यारियां बना कंपोस्ट को फैलाकर बीज को रोपा जाता है। समय समय पर सिंचाई एवं आवश्यक देखभाल के फलस्वरूप मशरूम की खेती की जाती है। और मशरूम उगाने की तीसरी विधि है बांस का बेड बनाकर। यदि आप जमीन में क्यारियां बना खेती नहीं करना चाहते, तो फिर आप बांस का मचान बना सकते हैं। बांस अथवा किसी लकड़ी की मदद से जमीन से थोड़ा ऊपर बांस का बेड अथवा मचान बना उस पर मशरूम के बीज बो सकते हैं। अब आपको जरूरत होगी मशरूम की खेती के लिए कंपोस्ट की तैयारी करने की। मशरूम की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है कंपोस्ट की तैयारी, जिसमें बीजों को बोया जाता है। भारत में ज्यादातर कंपोस्ट की तैयारी में पुआल का उपयोग किया जाता है। पुआल बाजार से काफी कम कीमत पर आसानी से खरीदा जा सकता है। अब बारी है पुआल को कंपोस्ट में बदलने की। शुरुआती दौर में 5 से 10 किलो तक पुआल से काम चल जाएगा। सबसे पहले भूसे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले। ध्यान दे, टुकड़ा न बहुत छोटा न बहुत बड़ा हो। आधा इंच का पुआल आदर्श माना जाता है। अब भूसे को किसी टब अथवा टंकी में पानी से भर रात भर के लिए फूलने के लिए छोड़ दे। ध्यान दे, पुआल में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बढ़ाने के लिए आप सॉल्युबल लिक्विड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपके नजदीकी खाद्य भंडार से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। रात भर कंपोस्ट को भिगोने के बाद अब इस कंपोस्ट को निकालकर जमीन पर सूखने के लिए छोड़ दें। ध्यान दें, पुआल न ज्यादा गीला न ही ज्यादा सूखा रहे। 2 से 3 घंटे बाद पुआल को हाथ से दबाकर चेक कर लें। यदि काफी दबाने पर थोड़ा पानी निकल रहा है, तो ये कंपोस्ट आपके लिए आदर्श है। आप चाहें तो इसमें नाइट्रोजन एवं फास्फोरस कंटेंट बढ़ाने के लिए थोड़ा यूरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाई गई क्यारियों में अब आप इस कंपोस्ट को फैला दें एवं थोड़ी थोड़ी दूरी पर मशरूम के बीजों को बो दें। अब दोबारा बीजों के ऊपर एक परत कंपोस्ट की दें तथा बीज रोप दें। इस प्रकार परत दर परत कंपोस्ट के बीच में बीज रोप कर कुछ दिन के लिए छोड़ दें। ध्यान रहे, कमरे का तापमान 35 से 40 डिग्री तक बना रहे। आवश्यक नमी बनाए रखने के लिए हर 2 से 3 दिनों के अंतराल में पानी का छिड़काव करते रहें। मशरूम की फसल को कीट पतंगों एवं अन्य हानिकारक कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक दवा का भी छिड़काव करें। ध्यान रहे, कमरा में किसी तरह की रोशनी ना पहुंचने पाए। फसल होने में 3 से 4 हफ्तों का वक्त लगता है। कोशिश करें बीच बीच में आवश्यक नमी एवं कमरे का तापमान चेक करते रहे। शुरुआती दौर में 30 किलोग्राम भीगे पुआल से 5 किलो तक फ्रेश मशरूम उगाया जा सकता है। मशरूम के भंडारण एवं वितरण में ज्यादा समय न लगाएं। आप प्लास्टिक में 100, 250, 500 ग्राम अथवा 1 किलो का पैक बना इसे या तो सीधा मार्केट में उतार दें अथवा किसी सब्जी वाले के हाथों अपनी फसल बेच दें। जरा इन बातों पर भी ध्यान दें। मशरूम के बीज को आवश्यक नमी पहुंचाने के लिए हर 2 से 3 दिनों के बीच में पानी का छिड़काव करते रहें। रूम में साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। कंपोस्ट को छूने अथवा मशरूम के बीजों के संपर्क से पहले हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोएं एवं कोशिश करें कमरे में जूते चप्पल इत्यादि पहनकर प्रवेश ना करें। भारत में आप इन जगहों से मशरूम की खेती करना सीख सकते हैं। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, पूसा, दिल्ली। राजेंद्र एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, पूसा, समस्तीपुर, बिहार। ओडिशा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर, ओडिशा। हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, R&D सेंटर, मुरथल, सोनीपत। ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर NEH रीजन, उमरोई रोड, बोरापानी, मेघालय। डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, ICAR, चंपाघाट, सोलन, हिमाचल प्रदेश।
1: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और अभी आपने सुना इस महत्वपूर्ण जानकारी को और जाना कि किस तरीके से हमारे किसान साथी, चूंकि पथरीला इलाका है तो क्या कर सकते हैं, तो मशरूम की खेती भी हमारे किसान साथी कर सकते हैं। जाना कि किस तरीके से हमारे किसान साथी मशरूम की खेती कर सकते हैं, क्या क्या लाभ हैं, कहाँ कहाँ बेच सकते हैं और इससे कितना लाभ होता है मशरूम की खेती करने से, ये सारी बातों को हमने जाना इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी के माध्यम से। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनते हैं कि जो हमारी योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है, केंद्रीय पशु पंजीकृत योजना के बारे में जानेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आपके RJ मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो, आपकी बात है।

किसानों को पशुओं की खरीद और बिक्री में मदद मिले और किसान की आमदनी में बढ़ोतरी हो, इसके लिए भारत सरकार ने एक कार्यक्रम केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना लागू किया, जिसके तहत गाय और भैंस की महत्वपूर्ण नस्लों के दुग्ध उत्पादन का रिकॉर्ड करके पशु पंजिका में लिखा जाता है। इस कार्यक्रम में उन्नत नस्ल के पशुओं के प्रमाणीकरण और पशुओं के उत्पादन का लेखा जोखा लिखा जाता है। पशु पंजीकरण योजना के उद्देश्य इस प्रकार है। पंजीकरण के माध्यम से बेहतर जर्म प्लाज्म यानी उच्च कोटि की आनुवांशिकी का पता लगाना, प्रजनन क्षेत्र में पशुओं का व्यवस्थित दुग्ध अभिलेखन शुरू करना, पशु चुनाव के लिए दुग्ध अभिलेखन कार्य को बढ़ावा देना, सभी पंजीकृत किए हुए पशुओं के इकट्ठे किए हुए आंकड़ों को प्रकाशित करना ताकि पशु पालकों का मार्गदर्शन हो और पशुओं को खरीदने व बेचने में इसका योगदान मिले, पशुओं की खरीद बिक्री और आयात निर्यात को नियंत्रित करना ताकि उनकी गुणवत्ता को नियंत्रित किया जा सके तथा आयात व निर्यात के लिए स्तर निर्धारित किया जा सके, पशु पालकों को योजना के बारे में जागृत करना और जानकारी देना ताकि पशुओं के सुधार में उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना में पशु पंजीकरण पुस्तक होती है, इसमें उन पशुओं की सूची रखी जाती है जो कि पशु पंजीकरण पुस्तक के नियम व नियमावली पर खरे उतरते हैं। इस पंजीकरण के तहत पंजीकृत पशुपालकों को प्रोत्साहन राशि तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं, जो पशुपालकों को पशु खरीदने तथा बेचने में मदद करते हैं। अब सवाल ये है कि इस योजना के तहत सुविधा का लाभ कैसे उठाया जाए। ये सुविधा देसी गाय व भैंसों के लिए है। इस सुविधा का लाभ गौशाला और अभिलेखन केंद्र के आसपास के पशु झुंड उठा सकते हैं। पंजीकृत पशुओं का ब्यौरा कंप्यूटरीकृत होता है। पशु पालकों तक योजना को आसानी से पहुंचाने के लिए दुग्ध अभिलेखन केंद्र पशु चिकित्सालय पर रखा जाता है। खास बात ये है कि पशु

0: पंजीकरण इकाइयां दुग्ध अभिलेखन योजना को समयबद्ध विस्तार के लिए प्रशिक्षण भी देती है। गौरतलब है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हरियाणा में गाय और मुर्रा भैंस के लिए संयुक्त रूप से एक यूनिट 1962 में रोहतक में स्थापित की गई। ये इकाई हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्यों में संचालित है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान गिर व कांकरेज गाय और सूरती भैंस के लिए एक इकाई अहमदाबाद में स्थापित की गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंत में दो और इकाइयां एक आंध्र प्रदेश में और एक राजस्थान में स्थापित की गई। इस प्रकार चार इकाइयां रोहतक हरियाणा, अहमदाबाद गुजरात, ओंगल आंध्र प्रदेश और अजमेर राजस्थान में चल रही है। पशुपालक स्थानीय केवीके या कृषि विभाग से संपर्क कर केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें और इस योजना का लाभ उठाएं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें। अब नई चीज हम जान लेते हैं क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों को हम वही चीजें बताते रहते हैं, वही बातें सुनाते रहते हैं। आज कुछ नया करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अब कि सीप की खेती, जो मोतियों की खेती रहती है, वो किस तरीके से होती है। ये भी एक व्यवसाय है हमारे किसान साथियों की, नई चीज है। आइए जानते हैं कि हमारे किसान साथी किस तरीके से मोतियों का खेती कर सकते हैं। लेकिन साथियों, इनसे बातचीत करने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं प्यारे से गीत को।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और साथियों, अभी आपने इस प्यारे से गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी मोतियों की खेती कर सकते हैं, कैसे इसका प्रशिक्षण, कहाँ प्रशिक्षण मिलेगा, इसकी सारी जानकारी इस सेगमेंट में सुनते हैं।
1: भारत में मोतियों का इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है। मोती शुरू से ही सजने संवरने और सजावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहले सिर्फ प्राकृतिक रूप से मिलने वाले मोतियों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बदलते दौर में मांग को देखते हुए मोतियों का उत्पादन किया जा रहा है, जिसे हम सरल भाषा में सीप पालन या मोती की खेती कहते हैं। ये इतना सरल और सस्ता है कि किसान इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। सीप पालन के लिए सबसे जरूरी प्रशिक्षण लेना है। कई संस्थानों में सरकार के द्वारा निशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा जिले के मत्स्य विभाग से भी जानकारी ली जा सकती है। मोती एक प्राकृतिक रत्न है जो सीप में बनता है। जब सीप में कोई बाहरी पार्टिकल जैसे मिट्टी के कण या कोई सूक्ष्म जीव चला जाता है, तो वो उसे बाहर निकालने के लिए एक तरल छोड़ती है। ऐसे ही धीरे धीरे उस कण पर सीप परत दर परत एक चमकदार कोटिंग बना देती है और फिर एक निश्चित समय बाद यही मोती बन जाता है। सीप पालन को शुरू करने के लिए सबसे पहले स्थान का चयन करना होता है जहां सीप को आसानी से पाला जा सके। सीप को छोटे स्तर से घर में पाला जा सकता है, जबकि बड़े स्तर पर पालने के लिए तालाब की जरूरत होती है। इसके बाद किसान को सीप खरीद कर सीपों को खुले पानी में दो दिन के लिए रखते हैं, जिससे धूप और हवा लगने के बाद सीप का कवच और मांसपेशियां ढीली हो जाती है। मांसपेशियां ढीली होने के बाद सीप की सर्जरी कर सीप के अंदर सांचा डाल दें। किसान चाहे तो सामान्य मोतियों का भी उत्पादन कर सकते हैं। मोती बनते समय सांचा जब सीप को चुभता है तो वो उस पर अपने अंदर से निकलने वाला एक पदार्थ छोड़ता है जो मोती में बदल जाता है। सीपियों के प्रकार लेमिनेनिस मार्जिनेनिस, लेमिनेनिस कोरियनस, पाइरेसिया। सीप पालन के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। कम से कम 10x10 फीट या बड़े आकार के तालाब में सीप पालन किया जा सकता है। सीप में छोटी सी शल्य क्रिया के बाद इसके भीतर 4 से 6 मिलीमीटर व्यास वाले साधारण या आकर्षक आकृति के मोती तैयार किए जा सकते हैं। शल्य क्रिया के बाद सीप को बंद कर दिया जाता है। इन सीपों को नायलॉन बैग में 10 दिनों तक एंटीबायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है। अब इन सीपों को तालाबों में डाल दिया जाता है। इसके लिए इन्हें नायलॉन बैगों में रखकर यानी 2 सीप प्रति बैग बांस या बोतल के सहारे लटका दिया जाता है और तालाब में 1 मीटर की गहराई पर छोड़ दिया जाता है। प्रति हेक्टेयर 20,000 से 30,000 सीप की दर से इनका पालन किया जा सकता है। अंदर से निकलने वाला पदार्थ पीठ के चारों ओर जमने लगता है जो अंत में मोती का रूप लेता है। करीब 10 माह बाद सीप को खोलकर मोती निकाल लिया जाता है। बेहतर उत्पादन के लिए सबसे जरूरी संबंधित विषय में जानकारी का होना है। इसके लिए किसानों को चाहिए कि वो सीप पालन शुरू करने से पहले प्रशिक्षण लें। सरकारी संस्थान ग्रामीण नवयुवकों, किसानों व छात्र छात्राओं को मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों और किसान हेल्पलाइन से भी मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण की जानकारी ली जा सकती है।
0: अभी आपने कि हमारे किसान साथियों ने सुना कि किस तरीके से मोतियों का हम खेती कर सकते हैं, यानी हम मोतियों का जो खेती रहती है उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे प्रशिक्षण लिया जाता है, ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से जानी है। और भी बातें हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम, यानी लेते हैं छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बनी रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांडिया भी 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बातें।

0: किसान की मेहनत सार्थक होती है तो खेतों में खुशी की तरंगे बिखरने लगती है और बंजर जमीन भी हरियाली की चुनर ओढ़ लेती है। वैसे तो राजस्थान की धरती को मरुभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ के किसान प्रकृति का सीधा सामना करते हुए सफलता की कहानी गढ़ रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक किसान से मिलवाएंगे जिन्होंने कृषि का शायद ही कोई क्षेत्र छोड़ा हो जिसमें कामयाबी ना पाई हो। जयपुर राजस्थान का बेहद खूबसूरत शहर जहां देश के हर हिस्से से पर्यटक पहुंचते हैं। यहां से करीब एक घंटे की दूरी और 36 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आता है कालख गांव, जो पहचाना जाता है किसान गंगाराम सेपट के नाम से, जो सेपट ऑर्गेनिक कृषि फार्म का संचालन करते हैं। उनके यहाँ जितनी भी पैदावार ली जाती है वो सभी जैविक तरीके से ली जाती है। गंगाराम कृषि के साथ साथ बहुत कुछ करते हैं, जैसे जैविक खेती, पॉली हाउस में खेती, पशुपालन, मछली पालन, जल संचय करना और सोलर पैनल लगाकर बिजली का इस्तेमाल कर खेती के हर कार्य को संपन्न कर रहे हैं। वो बताते हैं कि आज वो जिस मकाम पर है उसके पीछे उनकी व उनके परिवार की मेहनत तो है ही, साथ ही सरकार का पूरा सहयोग भी रहा। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर गंगाराम ने अपने कार्य क्षेत्र में इजाफा किया। आज उनके खेतों में हर तरह की फसलें लहलहा रही है जिसमें विदेशी सब्जियां भी शामिल है। उनके खेतों की सब्जियां बड़े शहरों तक पहुंचाई जाती है जिससे परिवार को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है।
1: ये राजस्थान में पानी की काफी कमी है, रेगिस्तान है और इस वजह से हम लोग बरसात का एक एक बूंद इकट्ठा करते हैं। मेरे पास में पॉली हाउस है, पॉली हाउसों के ऊपर जितनी भी बारिश होती है उन सबको मैं पाइप के द्वारा मेरे फार्म पॉन्ड के अंदर लेके आता हूँ। फार्म पॉन्ड में जो साइज है मेरी 50x50 मीटर का, लगभग 75 लाख लीटर पानी इसके अंदर हम बरसात का पूरा पानी इकट्ठा करते हैं और इसी के आधार पर पूरे साल भर हम लोग सिंचाई करते हैं। इसके फार्म पॉन्ड के जो है भारत सरकार का जो स्कीम है NHM और NHB दोनों के द्वारा 50% सब्सिडी मिलती है। इसमें मेरे जो है इस फार्म पॉन्ड बनाने में 8,35,000 रुपया खर्चा हुआ था तथा सब्सिडी के रूप में मुझे 5 लाख रुपए मिले थे। साथ ही फार्म पॉन्ड से जो पानी की सिंचाई करने के लिए मेरे पास में सोलर पैनल है, सोलर पैनल पे भी मैंने सब्सिडी ली है। 3 HP का इसमें भी मैंने कनेक्शन ले रखा है और जिसमें 67,000 रुपए मेरे फार्मर शेयर के लगे हैं। साथ ही इसमें 1,32,000 रुपए मेरे अनुदान प्राप्त हुआ है। इस फार्म पॉन्ड के अंदर मैंने 7 प्रकार की मछलियां डाल रखी जिसमें 3 प्रकार की देसी मछलियां हैं और 4 प्रकार की विदेशी मछलियां हैं जो अलग अलग लहर में अपना भोजन करती है। और देसी मछलियों में कटला है, रोहू है और मरगला है और विदेशी में कॉमन कॉर्प है, गोल्डन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प और ग्रास कॉर्प है। इन मछलियों को हमारे पास में विशेष प्रकार के कोई भोजन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे खेत में जो भी वेस्टेज पदार्थ होता है हम लोग मछलियों के लिए डाल देते हैं। इसके अलावा जो हमारे और भी कई बार क्या होता है वेस्टेज पदार्थ कम होता है तो हम बाजरे का दाना और सरसों की खली मिलाकर इनको भिगोकर देते हैं और जो मछलियों का वेस्टेज है वो हमारे खेत के लिए, हमारी फसल के लिए उर्वरक शक्ति बढ़ाने का काम करता है और साथ ही हमारा जो पानी का EC और PH है वो मेंटेन करने का काम है। इसके अंदर अगर मछलियां नहीं डालेंगे तो इसके अंदर एल्गी आ जाती है जो हमारे फिल्टर पंप को चोक कर देती है, इस वजह से इसको मछलियां डाली गई है। साथ ही मछलियों का जो है एक्स्ट्रा इनकम के बेचने पर हमें एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होगी तो ये हमारे साथ में इंटीग्रेट फार्मिंग का एक अच्छा उदाहरण है। मैं सभी युवा साथियों से सलाह देना चाहता हूं कि अपने फार्म खेत के अंदर बरसात के पानी को इकट्ठा करें, उसमें पॉन्ड बनाए, मछली पालन कर सकते हैं, साथ में खेती कर सकते हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। किसी भी और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आज भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें हैं जैसे पॉली हाउस लगा सकते हैं, ड्रिप सिंचाई यंत्र है, सोलर सिस्टम है, इन सबका उपयोग करके अपने अच्छे से आप नई तकनीकी के द्वारा खेती कर सकते हैं और अच्छा लाभ और मुनाफा कमा सकते हैं।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
3: आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
4: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से कार्यक्रम खेती बाड़ी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथियों, अभी आपने इन सफल किसानों की कहानी को सुना।

होंगे कि हम भी एक उन्नतशील किसान बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमें वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए आप समय समय पर कृषि विस्तार अधिकारी अपने झाबुआ जिले में बैठे हुए हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, खासतौर पर जो KBK रहता है उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो नई नई पद्धति से और नई नई योजनाओं के साथ लाभ लेकर आप एक अच्छी पद्धति से खेती करके मुनाफा कमा सकते हैं, यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है। मित्रों, अब हमारा समय होता है आज के कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारे फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, और चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आप लो रेडियो आपड़ी बातें। ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आप लो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार किसान भाइयों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का, सभी किसान पंच भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और किसान साथी कैसे हैं आप? हमें आशा है कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और हमारे किसान साथी इस कार्यक्रम का इंतजार भी कर रहे हैं। और तो इंतजार की घड़ी अब खत्म है क्योंकि रेडियो टांटिया भील 90.8 FM जो झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है वो लेकर आ गया है का मन पसंदीदार कार्यक्रम खेती बाड़ी। और खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं और खास तौर पर हम छोटे छोटे बिंदुओं पर बातचीत करते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। आज के हमारे इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज हम स्टार्टअप पर जरूर बात करेंगे क्योंकि स्टार्टअप हमारे देश की एक महत्वाकांक्षा योजनाओं में से एक है कि स्टार्टअप में किस तरीके से हमारे किसान साथी एक आधुनिक पद्धति से, एक वैज्ञानिक पद्धति से और नई नई तकनीकी से किस तरीके से खेती कर सकते हैं उस पर एक नजर डालेंगे। साथ साथ में पशुजन जो चूंकि गर्मियों का मौसम आ रहा है, गर्मियों के इस मौसम में खासतौर पर दुधारू पशु जो दूध देने वाले रहते हैं उनका ख्याल हम किस तरीके से रख सकते हैं, क्या खान पान उसका उनका होना चाहिए, उस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। और साथ में हम तीसरी बात बताएंगे जो हमारे कैलेंडर रहता है, मासिक कैलेंडर, यानी इस माह में हम किस तरीके से अपने पशुओं को क्या कुछ देना चाहिए उस पर भी जिक्र करेंगे। और साथ में एक राजस्थान के उन्नतशील किसान जिन्होंने पानी कम पानी वाली फसलें यानी गेहूं की प्रजाति लगाकर अपने खेती में बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है, यानी खेती में उन्होंने एक लक्ष्य उन्होंने बनाया था कि हम कम पानी वाली फसलों करेंगे और खास तौर पर उन लक्ष्य को उन्होंने पूरा किया और आज उनका नाम सभी की जुबान पर रहता है। उनसे भी हम बातचीत करेंगे और साथ में आपको बता देना चाहते हैं कि कार्यक्रम खेती बाड़ी में श्रोता साथियों खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं। खासतौर पर ये देखते हैं कि गर्मियों का मौसम है और इस गर्मियों के मौसम में चूंकि अभी हमारे झाबुआ जिले के हमारे साथी किसान साथी घर पर बैठे होंगे, क्या कुछ कर सकते हैं उस पर हम बात करते हैं। तो आइए देर नहीं करते हैं, आपको इस रिपोर्ट को हम सुनवाते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपड़ी बातें।
2: आज के युवा स्टार्टअप्स के जरिए अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। एक तरफ इन्हें आर्थिक सहायता देकर सरकार भी इनका साथ दे रही है तो वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की तरफ से स्टार्टअप्स के कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट।
3: भारत बदल रहा है, देश के युवा अब एक नई बागडोर संभालने को तैयार है जिसमें नौकरी तलाश करने की परिपाटी को छोड़ते हुए नौकरी देने पर फोकस किया जा रहा है। और इसी सोच को आगे ले जाने के लिए सरकार भी अपने अहम कदम उठा रही है जिसमें स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी की तंत्र बनाना है। स्टार्टअप देश के युवाओं के लिए एक ऐसा मौका है जिसके जरिए वो खुद का काम शुरू करते हैं, खुद को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि स्टार्टअप सिर्फ सूचना प्रौद्योगिकी, मनोरंजन और इंजीनियरिंग आदि सेवाओं में ही किया जा सकता है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में भी स्टार्टअप तेजी से कारोबार के मैदान में आ रहा है। स्टार्टअप से जहां युवाओं को रोजगार मिलता है वहीं ये किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने में भी मदद करता है। इससे खेती में निवेश बढ़ता है और किसान की आय में भी बढ़ोतरी होती है।
4: हम लोग एग्री स्टार्टअप्स को यहां पे इंक्यूबेट करते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करते हैं एग्री स्टार्टअप्स के लिए जो कि भारत सरकार की स्टार्टअप नीति के तहत एनरोल्ड है। और उन स्टार्टअप्स के लिए अलग अलग स्टेजेस पर, जैसे कि यदि आपके पास अपना कोई स्टार्टअप का विचार है, आपको अभी समझ नहीं आ रहा कि कैसे आप एक अपना स्टार्टअप बनाएंगे, तो उसके लिए हमारा एक प्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम है जो कि एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है, जहां पर आप आकर उस आइडिया को कॉन्सेप्ट नोट बनाने के लेवल तक जा सकते हैं। तो वो उस तरीके के प्रोग्राम्स भी हम रन करते हैं। देन फिर अगर आपका कॉन्सेप्ट प्रिपेयर्ड है और आप एक बेसिक लेवल पर हैं लेकिन आपको उसको फाइनल प्रोटोटाइप के लेवल तक नहीं ले जा पा रहे, तो उसके लिए अलग प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर फंडिंग्स भी एसोसिएटेड हैं। जो भी फंडिंग भी ग्रांट इन एड की तर्ज के ऊपर हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तीसरे तरह के प्रोग्राम्स वो हैं जिनके अंदर आपका अगर एक प्रोटोटाइप रेडी है और आप कमर्शलाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 25 लाख तक का फंड हम प्रोवाइड करते हैं। वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की आरकेवीवाई रफ्तार स्कीम के तहत हम उसके अंदर फंड्स दे रहे हैं। उसके अलावा महिला उद्यमियों के लिए भी हम वुमेन क्वेक करके एक प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसके अंदर हम उनको एम्पावर कर रहे हैं, उनको सशक्त बना रहे हैं कि वो कैसे अपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को आगे ले जा सके। तो कुछ प्रोग्राम्स और हैं जो हम किसान भाइयों के लिए करना चाहते हैं, जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को हम अपने स्टार्टअप्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, जहां पे एफपीओस को जो भी दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को हमारे स्टार्टअप सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके की पहलों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।
3: कृषि क्षेत्र में आ रही नई नई तकनीकें भी एग्री स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो रही हैं। पूसा मेले में ऐसे ही कई इनोवेटिव आइडियाज दिखाई दिए जो कृषि को और बेहतर बना सकते हैं।
5: हमारे स्टार्टअप का नाम रैवटेक लैब्स है और हम क्वालिटी एनालिसिस सॉल्यूशंस बनाते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये एप्पल को स्कैन करने की मशीन बनाई है हमने। तो इसमें नॉन इन्वेसिवली बिना कट करे, बिना जूस करे हम आपको बता सकते हैं कि इसकी मिठास कितनी है, इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, कि ये कितने दिनों बाद सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, और ये इसकी मॉइस्चर कंटेंट कितनी है। सिमिलर प्रोडक्ट्स हमने बनाई है, एक ग्रेन एनालाइजर भी बनाई है जिसमें गेहूं जैसे ग्रेन्स की आप प्रोटीन कंटेंट, ग्लूटेन कंटेंट नॉन इन्वेसिवली चेक करके देख सकते हैं।
3: हमने पूसा मेले में लगे एक स्टॉल में मिनी ड्रोन देखा। ये ड्रोन खेतों की रखवाली करने और सूचनाएं देने में सक्षम है। महज 8 से 10 हजार कीमत का ये ड्रोन किसानों की एक बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है।
4: ये हमारा ड्रोन है, ये ड्रोन इनोवेशन के साथ हमने एसोसिएट करके ये चीज बनाया है। तो ये बेसिकली काम ये करता है, ये आपका सर्वेलेंस का काम करता है। जैसे आप इसको, ये आपके खेत में जाता है और आपके खेत में कोई भी मोशन होता है, कोई भी हलचल होती है, तो ये उस चीज को डिटेक्ट करता है और आपके फोन में इसकी फोटोज भेजता है। और इसमें स्पीकर भी लगा है, तो कोई एनिमल वगैरह आता है, जैसे अगर एक गाय आई है तो वो उसमें एनिमल किसी लायन का साउंड करेगा, तो लायन का साउंड करेगा तो उससे क्या होगा कि मतलब जो गाय है वो वहां से भाग जाएगी, वहां से हट जाएगी। तो ये आपको कुछ 10,000 का पड़ेगा एंड ये सब अलग अलग प्राइजेस है। ये आपको 6,500 का पड़ेगा एंड बाकी सब ये 4,500 का आपको पड़ेगा। एंड या दिस इज ऑल अबाउट कॉस्ट एंड किसानों को कहां मिलेगा, तो ये हमारा वेबसाइट है www.fifarm.com, तो वहां से आप परचेस कर सकते हैं। वहां पर आप लाइक साइट में जाके आप देख सकते हैं, काफी सारे सामान है हमारे वहां पे, तो आप वहां पे जाके गो आउट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं।
3: अब पढ़े लिखे युवा नए नए आइडियाज के साथ कृषि क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स कर रहे हैं। कृषि उद्यमिता में नए आयामों को बढ़ावा देने और युवाओं को स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से भी समय समय पर कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनके तहत युवाओं को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता भी दी जाती है। युवा इनका लाभ लेकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।
1: रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस खास रिपोर्ट को सुना, कार्यक्रम में बहुत सारी बातचीत, बहुत सारे सेगमेंट हैं जो आपको बताने हैं, लेकिन साथी इससे पहले उनकी हम रिपोर्ट आपको साझा करें, इससे पहले हम सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम, आपना रेडियो अपनी बातें।

0: એમ તરાપ મારે થોડો.
1: रेडियो टांटा व्हील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में. और अभी आपने इस भीली गीत को सुना और ये गीत खास तौर पर विवाह में बजाया जाता है. तो अभी आपने इसका आनंद लिया. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे सेगमेंट हैं. अब हम बात करेंगे कि हमारे जो दुधारू पशु हैं उनकी गर्मियों में किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए. आइए सुनते हैं इस खास रिपोर्ट को.
2: गर्मियां दस्तक दे चुकी हैं. अब तापमान धीरे धीरे बढ़ने भी लगा है जो पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है. जब बात देश के उन हिस्सों की हो जहां अभी से तापमान 40 डिग्री के पार चल रहा है, ऐसे इलाकों में जरूरी हो जाता है कि पशु की हर तरह से समुचित सुरक्षा की जाए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से नुकसान की आशंकाएं बढ़ जाती हैं. इसीलिए पशुपालकों और किसानों को चाहिए कि वो कुछ बातों का खास ख्याल रखें. कौन से हैं वो पहलू, इस बारे में पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद रियाज से चर्चा की हमारी संवाददाता सुनैना सरकार ने.
3: किसान भाइयों बहनों, बदलते मौसम में हमें अपने दुधारू पशुओं का किस तरह ख्याल रखना चाहिए, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद रियाज. सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में. तो जैसा कि आप जानते हैं, गर्मियों का मौसम आ गया है और आगे तापमान में वृद्धि होने वाली है, तो ऐसे में हमें हमारे दुधारू पशुओं का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए?
4: देखिए, अभी सर्दी का मौसम गया है और अब गर्मी पूरे उत्तर भारत में शुरू हो गई है, बल्कि पूरे देश में ही गर्मी शुरू हो चुकी है. तो अब जिस तरीके से सर्दी में हमें कुछ विशेष प्रकार के ध्यान रखने होते हैं इस अपने पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए, उसी तरीके से इस गर्मी के मौसम में भी हमें कुछ बदलाव करने होंगे. जिस तरह हम खुद भी जाड़े के मौसम में सूट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, और जब गर्मी का मौसम आता है तो हम अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, तो इसी तरीके से पशुओं के लिए भी कुछ हमें बदलाव करने पड़ते हैं. तो अगर इसमें बात की जाए सबसे पहले, तो जो आपकी पशुशाला है, पशुशाला में वातावरण कूल होना चाहिए, ठंडा वातावरण होना चाहिए, क्योंकि इस समय अब गर्मी बहुत अधिक हो जाएगी, तो बहुत अधिक गर्मी के कारण से पशुओं में हीट स्ट्रोक होने की संभावना बनी रहती है. तो पशुओं में हीट स्ट्रोक ना हो उसको कैसे बचाना है, जो आपकी पशुशाला है, पशुशाला के ऊपर आप कुछ इस तरीके की चीजें डाल दें, कुछ उसके ऊपर बोरे फट्टे इत्यादि बिछा दें कि जिससे उसकी जो छत है वो अधिक गर्म ना हो. अगर आपकी पशुशाला में बिजली की व्यवस्था है, पंखा चल सकता है, तो कोशिश करें कि आप वहां पर पंखा भी चला दें जिससे कि गर्मी को, तापमान को कम किया जा सके. दूसरा क्या है, जो पशुशाला के खिड़की दरवाजे हैं उनको खोल के रखें जिससे कि हवा का पूरा आदान प्रदान होता रहे और बाहर से फ्रेश हवा पशुशाला के अंदर आए और अंदर की गर्म हवा जो है वो बाहर निकलती रहे. और आपने अगर बोरी फट्टे कुछ टांग के रखे होंगे खिड़कियों के ऊपर तो उनको भी हटा दें. तीसरा क्या है, जो दिन का बहुत अधिक गर्म समय होता है तो उस समय पे पशुओं को बाहर धूप में ना निकालें, या तो सुबह के मौसम में जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है उस समय, या शाम के मौसम में ही बाहर निकालें, धूप में ना निकालें, अधिकतर पशुओं को अपने छाई में रखें.
2: इसके अलावा गर्मी के दिनों में पानी की उपलब्धता बनाए रखें जिससे पशु के शरीर में पानी की मात्रा बनी रहे और वो बीमारी के शिकार ना हो पाए. साथ ही आहार में क्या तब्दीलियां करें, आइए जानते हैं.
4: गर्मी के मौसम में हम उन्हें थोड़ा सा इस तरीके का आहार देते हैं कि जो ज्यादा ऊर्जा पैदा करने वाला आहार हो, जिससे शरीर को थोड़ी गर्मी प्राप्त हो और जिससे कि वो ठंड के साथ में पशु लड़ सके. तो अब गर्मी के मौसम में उसको उतनी ज्यादा जो है उस तरीके के गर्मी पैदा करने वाले अनाज की आवश्यकता नहीं है, या उतनी ज्यादा कैल्शियम की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप उसको हरा चारा दें, उसके साथ में थोड़ा भूसा खिलाएं, और जो दलिया या खली देते हैं उसकी मात्रा आप थोड़ी कम कर सकते हैं अगर बहुत अधिक गर्मी है तो. और तीसरा बिंदु है इसमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, वो पानी का. जो पानी है वो गर्म पानी पशु को ना पिलाएं, क्योंकि एक तो मौसम का वातावरण जो है पहले ही गर्म है, ऊपर से आप उसको गर्म पानी पिलाएंगे तो वो और अपने आप में समस्या बढ़ाएगा. तो कोशिश करें कि पशु को ताजा ठंडा पानी ही हमेशा पिलाएं. इसके अलावा यदि आपको लगता है कि पशु आपका हीट स्ट्रोक में आ रहा है, गर्मी की वजह से वो चारा उसने खाना थोड़ा कम कर दिया है, तो पशु को दिन में एक दो बार ठंडे पानी से नहलाएं, तो उससे भी पशु की जो हीट स्ट्रोक है वो थोड़ी कम हो जाती है। और इसके अलावा आप जैसे बरसात का मौसम फिर आगे शुरू हो जाएगा तो उसमें कई तरीके की बीमारियां हैं, जैसे हेमरेजिक सेप्टिसीमिया है, ब्लैक क्वार्टर है, एंथ्रेक्स है, ये सारी बीमारियां भी होने का खतरा रहता है। तो इसलिए आवश्यक है इस मौसम में आप अपने पशुओं को नजदीकी पशु चिकित्सक से मिलकर जो टीके लगवाए जाते हैं बीमारियों के वो टीके भी लगवा लें, क्योंकि इस मौसम में ह्यूमिडिटी आगे बहुत अधिक हो जाती है, टेम्परेचर होता है, तो सभी प्रकार के बीमारियों के कीटाणुओं को पनपने के लिए एक बहुत ही भरपूर वातावरण मिलता है और बहुत अधिक बीमारियां फैलती हैं। तो उनमें जो भी टीकाकरण है इस मौसम में लगने वाले, जो मैंने आपको नाम बताए, उनके टीके आप अवश्य लगवा लें और खान पान का विशेष ध्यान रखें। पशु को गर्मी से हीट स्ट्रोक से कैसे बचाना है उसका ध्यान रखें। और इसके अलावा यदि कोई उसमें पार्टिकुलर कोई समस्या आती है तो उसके लिए आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से मिलें और उसका इलाज कराएं। हाँ, एक बिंदु और है, पशुओं में इस मौसम में एक्टोपैरासाइट्स की प्रॉब्लम बहुत अधिक हो जाती है, बाह्य परजीवी, उनके शरीर के ऊपर बहुत सारे टिक्स किलनी वगैरह हो जाती हैं, तो उसके लिए आप अपने पशु चिकित्सक से मिलकर और उसके बाह्य परजीवियों के लिए जो दवाई आती है साइपरमेथ्रिन वगैरह, उसका 2% घोल जो है वो ऊपर से लगाया जाता है, तो बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए उसका प्रयोग करें। और पेट के कीड़े हो जाते हैं तो पेट के कीड़ों के लिए 3-4 महीने पे एक बार दवा दे देनी चाहिए, और इस समय गर्मी के मौसम में और अधिक बरसात आएगी तो संभावना रहती है पेट में कीड़े होने की, तो उसके लिए भी आप उसको डिवर्मिंग टैबलेट्स जो हैं वो खिला दें।
2: इन तमाम बातों का ध्यान रखकर पशुपालक न सिर्फ पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य को बनाए रख सकेंगे बल्कि उनसे बेहतर दूध उत्पादन भी लेते रहेंगे।
3: पशुओं से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर।
1: लेकिन इस कैलेंडर को जानने से पहले हम सुनते हैं इस प्यारे से फीली गीत को। बने रहिए आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM, आपनो रेडियो अपनी बातें।

0: शराब मारे
1: पशुओं को HS एवं BQ रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं। इस माह में अधिक गर्मी की संभावना रहती है। पशुओं में जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन के लक्षण आ सकते हैं। ऐसे में पशु को तापमान से बचाने का इंतजाम करें। पशुओं को दोपहर में छाया एवं हवादार स्थान पर रखें। पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी पिलाएं। गाभिन पशुओं को अतिरिक्त आहार दें एवं ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें। भेड़ के मेमनों में भेड़ चेचक एवं एंट्रोटॉक्सिमिया का टीका पशु चिकित्सक की सलाह से जरूर लगवाएं। गोपालक फार्म की सफाई पर विशेष ध्यान दें। आवास को सूखा एवं स्वच्छ रखें। मुर्गियों में कृमिनाशक दवा का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य

0: अवश्य करें। साथ ही पानी की समुचित व्यवस्था रखें। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नियमित रूप से करें। पशुओं को अंतर परजीवी नाशक दवा पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। पशुओं को संक्रामक रोग जैसे गलघोंटू, ब्लैक वाटर के रोगरोधी टीके समय पर लगवाएं। इस मौसम में पशुओं में फास्फोरस की कमी के कारण पायका के लक्षण नजर आने लगते हैं, जिससे पशु मूत्र पीने, मिट्टी चाटने लगते हैं। बचाव के लिए पशुओं को खनिज लवण मिश्रण अवश्य दें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त करने के लिए पशुपालक एजोला खाद का उपयोग करें।
1: ये थी पशुपालन से जुड़ी हुई बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ।

जिसपे आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे किसान से जो गेहूं की अलग अलग विधि से बुआई करके गेहूं की अच्छी पैदावार ले रहे हैं और इसके साथ ही पानी की बचत भी कर रहे हैं। कैसे, ये जानने के लिए चलते हैं राजस्थान के जिला करौली।

0: गेहूं हमारे देश में रबी की प्रमुख फसल है। इसकी बेहतर उपज लेने के लिए किसान अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करते आए हैं, जिससे उतनी ही भूमि में बढ़िया पैदावार ली जा सके। हम गेहूं उगाने के कई तरीकों के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम आपको जिन कामयाब किसान से मिलवाने जा रहे हैं वो एक अलग ही विधि का प्रयोग कर रहे हैं। क्या है वो विधि, आइए जानते हैं। गेहूं की बाली को छू कर देख रहे ये है किसान शिवचरण मीणा, जो इस साल अपनी गेहूं की फसल को देख कर काफी खुश है। वजह भी साफ है, सीमित जगह, सीमित संसाधन और कम पानी में बढ़िया पैदावार, ऐसे में किसान का खुश होना लाजमी है। लेकिन शिवचरण ने ऐसा क्या किया जो उनकी पैदावार अपने इलाके में सबसे अच्छी हुई, जबकि राजस्थान की मिट्टी में खेती करना सामान्य खेती की तुलना में काफी कठिन है। लेकिन शिवचरण जी ने पहले समस्या को समझा और फिर समाधान निकाला। सबसे पहले जानते हैं उनकी मिट्टी की कहानी उन्हीं की जुबानी।
1: मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा खेत है बहुत क्षारीय था, और इस क्षारीयता को कैसे खत्म किया जाए इसके लिए हम बहुत सोच विचार किया। फिर डीडी किसान चैनल के माध्यम से हमें मालूम चला कि खेती को कैसे सुधारा जा सकता है। कुछ कृषि अधिकारियों से हमने सहायता ली तो हमने देखा कि जमीन का सबसे पहले वाटर लेवल होना जरूरी है। तो हमने अपने जॉन डियर का वाटर लेवलर मशीन को खरीदा, उससे खरीदने के बाद इस खेत को वाटर लेवल किया, और वाटर लेवल करने के बाद में हमने इसमें देसी खाद और सरसों का डीकम्पोज करके उसका जो डंठल थे उसको इसमें मिलाया। उसके बाद हमने इसमें करीब 18 इंची गहरी MB प्लाऊ से जोत निकाली। उससे जमीन की जो सख्त मिट्टी है नीचे 6 इंची के नीचे, जिसको कभी किसान जोतता नहीं है, उसको तोड़ने के बाद में मिट्टी पलट होने से इसमें पानी सोर्सिंग के लिए जमीन को बहुत अच्छा हो गया, जिससे ये अच्छे से पानी सोख सकती थी और उसमें फसल का गड़ना ये खत्म हो गया। उसके बाद हमने इसमें रोटावेटर लगाया, और रोटावेटर लगाने के बाद जमीन एकदम भुरभुरा करके गेहूं के लिए हमने इसको तैयार किया। जो भी खाद हमने इसमें मिलाना था वो हमने मिट्टी में पहले ही मिला लिया था रोटावेटर से पहले।
0: शिवचरण जी ने इस तरह से तो खेत को उपजाऊ बना लिया, लेकिन समस्याएं अभी भी दस्तक दे रही थी, और वो थी पानी की कमी। इसके लिए उन्होंने गेहूं की खेती की नई तकनीक का इस्तेमाल किया, और वो थी बेड बनाकर गेहूं की बुआई करना। ये देखने और सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन इसके परिणाम काफी सुखद रहे। तो आइए जानते हैं इस विधि के बारे में।
1: हमने बेड प्लांटर मशीन से इसमें 1 बीघा में 7 किलो बीज डाला है, और उस 7 किलो बीज शुरू में तो बहुत कम लगा, लेकिन उसके बाद जब हमने इसमें दूसरा पानी 20 दिन बाद दिया तब वो अपना रिजल्ट दिखाने लगा, जिसके बाद हमने इसमें कैल्शियम नाइट्रेट पर बीघा में 1 थैली 5 किलो की और गंधक 5 किलो इसमें डाला। उसके बाद खेत में कोई पौधे को एकदम विकास बहुत शानदार रहा, क्योंकि बेड पर होने के कारण इसमें क्या होता है कि पानी जड़ें जो पानी की तरफ ज्यादा जाती हैं, क्योंकि पानी इसके जड़ों में रहता है नीचे लाइन में और पेड़ ऊपर रहता है, तो पानी हमेशा पेड़ की जो जड़ें हैं वो पानी की तरफ दौड़ती हैं, तो पानी हम इसमें नीचे दे रहे हैं, तो इसकी वजह से जड़ों का विकास ज्यादा रहा और उससे पौधे का सर्वांगीय विकास हुआ।
0: आइए अब जान लेते हैं इस तकनीक से होने वाले फायदों के बारे में।
1: हमने 33 किलो बीज की बचत करी, उसके बाद पानी इसमें आधे से भी कम लगता है, क्योंकि 80% जमीन पे तो बेड बन जाते हैं, अब 20% नालियां रहती हैं, तो 20% नालियों में ही पानी देना है, जिससे अपन को सिर्फ उसमें नमी ही मिलती है पौधे के लिए, और पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, पौधे को सिर्फ नमी की जरूरत होती है। और इस पौधे की ये खासियत और है कि ये बेड पर होने के कारण ये गेहूं कभी प्रकृति प्रकोप या हवा से गिरेगा नहीं, और गिरेगा नहीं तो अपन को इसकी पूरी फसल मिलेगी। अगर पौधे अपन गेहूं तो अच्छे पैदा भी कर लेते हैं लो नॉर्मल भी किसान, लेकिन प्रकृति प्रकोप और हवा से उसको बचाया नहीं जा सकता अच्छा गेहूं, और गिरने के बाद गेहूं का प्रोडक्शन 50% से कम रह जाता है। तो सरकार भी यही बताती है कि पानी बचाना चाहिए खेती में, और पानी बचाएंगे तो वाटर लेवल है जमीन का वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, और खेती अपन कम पानी से ड्रिप के द्वारा या फवारे के द्वारा या बेड प्लांटर मशीन के द्वारा बहुत कम पानी में अधिक उपज ले सकते हैं। इसमें हमने कोई क्यारी नहीं बनाई, ये वाटर लेवल होने के कारण इसको हमने कतारों में लाइनों में बांट दिया खेत को 3-4 लाइनों में, जिससे हम 2-2 घंटे में पानी का स्रोत बदल देते हैं, बाकी इसमें रात भर हमें खड़े रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि किसान रात में भी मोड़ता है पानी, दिन में भी मोड़ता है, तो उसको रात में बड़ी समस्या होती है सर्दियों में, तो इस विधि से करने से हम बहुत संतुष्ट रहे हैं और हमारा प्रोडक्शन बाकी गेहूं से 20-25% ज्यादा रहेगा। इससे हमें साहब कम से कम आधा खर्चा आया है नॉर्मल पद्धति से गेहूं में और पानी में, और प्रोडक्शन हमारा 25% ज्यादा रहा है। यानी इसमें गेहूं 20 से 22 क्विंटल के लगभग बैठेगा और नॉर्मल पद्धति से 12 से 15 क्विंटल से ज्यादा नहीं बैठ सकता।
0: विशेषज्ञों से ली गई सलाह से शिवचरण जी के खेतों की तस्वीर बदल रही है। उनकी इस कामयाबी के साक्षी बने बाकी किसान भी अब इसे अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं।
2: आप तक देखा होगा कि बुवाई की पद्धति अलग अलग होती है। एक किसान छिड़कने वाली विधि से बुवाई करता है, दूसरा सीड ड्रिल से बुवाई करता है, लेकिन एक ये जो पद्धति है अभी अपनाई है, ये नई टेक्नोलॉजी और अच्छी जो उन्नत किसान है वो इस पद्धति को अपना रहे हैं। इसको कहते हैं बेड कल्टीवेशन। बेड कल्टीवेशन में हमें काफी फायदा है। इसके अंदर बीज की मात्रा बहुत कम लगती है, पानी की मात्रा हमें बहुत कम उपयोग में लेनी पड़ती है और फसल बहुत ही अच्छी इसके अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी इसके अंदर फसल उपजाऊ होती है। मैं किसान साथियों से ये निवेदन करता हूं कि पुरानी टेक्निक से हटके और ये टेक्निक अपनाएं। ये जो फसल की है, ये शिवचरण मीना जी ने अपने खेत में नई टेक्नोलॉजी से ये फसल का उत्पादन किया है। मैं इससे प्रभावित होकर सब किसानों को ये बताना चाहता हूं कि एक बार देखें और ये ही तरीका आप अपनी खेती में अपनाएं, जिससे कि आपको पैसे की, खाद की, पानी की और बीज की सारी बचत हो और उपज इसमें अच्छी आप प्राप्त करें।

0: जय आदिवासी, जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो, आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस प्यारे से जो बातचीत हुई उसको सुना और जाना किस तरीके से हमारे जो सफल किसान थे उन्होंने कितनी अच्छी बातचीत बताई है, किस तरीके से गेहूं की नई नई तकनीकी से हम अपनी खेती को कर सकते हैं। चूंकि हम अगर झाबुआ जिले की बात करें तो झाबुआ जिले में पथरीला इलाका है, हम एक बार देख सकते हैं, सुन सकते हैं और इस पर अपने कृषि विस्तार अधिकारी से सलाह ले सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें विशेष तौर पर ध्यान में रखना होगा। इसी के साथ साथ ही हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यार से गीत को। नमस्कार।

ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

हेलो दोस्तों, मैं बोल रहा हूं आपका रेडियो दोस्त समीर। और आइए, स्वागत है आपका हमारे अपने कलाकार प्रोग्राम में। हमारे चारों तरफ, हमारे मित्रों में, हमारे संबंधियों में कई कलाकार ऐसे हैं जो चुपके चुपके अपनी इस कला का मजा लेते रहते हैं, और हम भी जब भी हमें मौका मिलता है उनकी कला को सराहते हैं। तो आइए आज मुलाकात करते हैं ऐसे ही एक कलाकार से। आज के कलाकार प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है, और आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में हैं सुधा जी। शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को सुधा जी की आवाज में, इस गीत से।

0: सुधा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपका जन्म स्थान क्या है और उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
1: नमस्कार समीर जी और मेरे प्यारे दोस्त सुनने वालों को। मेरा जन्म स्थान है चेन्नई। वहाँ पर सुंदर समंदर का किनारा है, उसे मरीना बीच के नाम से भी जाने जाते हैं और वो टॉलीवुड यानी कि तमिल फिल्मों के लिए बहुत ही फेमस है। वहाँ काफी सारी शूटिंग्स होती रहती है।
0: बहुत बढ़िया। तो लीजिए दोस्तों, सुनते हैं सुधा जी की ही आवाज में ये गीत।

0: बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर गीत। सुधा जी, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि अभी आप कहाँ रहते हैं और उस जगह के बारे में क्या खास है?
1: जी, अभी मैं अहमदाबाद में रहती हूँ। ये मोदी जी का शहर है, उससे बड़ी रोचक बात और क्या हो सकती है। और यहाँ पर देखने लायक बहुत सारे खूबसूरत, जैसे सीधी सैयद की जाली है, गांधीनगर में अक्षरधाम बहुत फेमस है।
0: जी तो लीजिए दोस्तों, सुनते हैं सुधा जी की ही आवाज में ये एक और गीत।

0: सुधा जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप क्या करती हैं, किस तरह के प्रोफेशन में हैं या थी और कब से?
1: जी मैं हूँ तो एक रिटायर्ड टीचर और मैंने करीबन 30 साल तक स्कूल में सेवा की है, लेकिन मेरा पहला पैशन हमेशा संगीत रहा है।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी। तो लीजिए दोस्तों, सुने सुधा जी का ही गाया हुआ एक और गीत।

0: बहुत सुंदर गायकी, बहुत ही प्यारा गीत। सुधा जी, गाने का शौक आपको कब से हुआ, कब से गा रही हैं आप?
1: संगीत का शौक बचपन से हुआ है और मुझे ये संगीत विरासत में मिला है। मेरे भैया, उनकी बहुत बड़ी ऑर्केस्ट्रा थी चेन्नई में। मेरे पिताजी बहुत अच्छा गाते थे। अभी एट प्रेजेंट माय मदर एट द एज ऑफ 91, वो बहुत ही सुंदर गाती है
0: जी। तो आइए दोस्तों, हो जाए एक और गीत सुधा जी का।

0: सुधा जी, आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको संगीत में क्या क्या पसंद है, किस तरह के गाने, फिल्मी गाने, नॉन फिल्मी गाने, गजल्स, भजन या कुछ और?
1: संगीत एक ऐसी चीज है जिसमें पसंद ना पसंद की बात होती नहीं है। फिल्में हो या नॉन फिल्में हो, गजल हो या भजन हो, शास्त्रीय हो या नॉन सेमी क्लासिकल हो, सारे सारे म्यूजिक, हर तरफ के संगीत मुझे पसंद है, लेकिन क्लासिकल मुझे ज्यादा पसंद है।
0: जी, तो लीजिए दोस्तों, सुधा जी की ही आवाज में एक और गीत।

0: बहुत ही प्यारा गीत। सुधा जी, आपका सबसे पसंदीदा गायक या गायिका कौन है और क्यों?
1: पसंदीदा गायक और गायिका तो लिस्ट बहुत, सब इतनी अच्छी सुंदर गायिकाएं हैं, इतनी बढ़िया आवाज, मधुर आवाज, सबके बहुत अच्छे गाते हैं सब जैसे, लेकिन लता जी का स्थान आज तक किसी ने नहीं लिया है, तो मेरी पसंदीदा गायिका भी लता जी है। और अभी क्योंकि तो कोई रीजन नहीं, उसको तो सरस्वती माँ का दर्जा दिया है। और अभी आज के युग में पूछो तो मुझे श्रेया घोषाल बहुत ही पसंद है
0: जी। तो सुधा जी, हमारे सुनने वालों को एक और गीत सुनवाइए।

0: वाला गीत। सुधा जी, आपका सबसे पसंद का गीत कौन सा है और क्यों?
1: गीतों की भी लिस्ट बहुत बड़ी लंबी है और मैंने जो आज प्रोग्राम में गाए हैं वो सारे मेरे पसंदीदा गीत है
0: जी। तो सुनने वाले हमारे सारे दोस्तों, एक और गीत सुनते हैं सुधा जी का।

0: सुधा जी, आपकी हॉबीज क्या हैं? अपने खाली वक्त में आप क्या करना पसंद करती हैं?
1: मेरी हॉबीज तो है, संगीत मेरा पहला प्यार हमेशा रहा है, और उसके अलावा मुझे योगा बहुत पसंद है, और मैं काफ़ी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में भी बिजी रहती हूँ। मैं स्वामीनारायण सेक्स से बिलोंग करती हूँ, तो उनकी एक्टिविटीज़ काफ़ी मुझे बिजी रखती है और मुझे वो बहुत पसंद है
0: जी। तो हमारे सुनने वालों को एक और गीत सुनाइए सुधा जी।

0: सुधा जी, अपने जैसे ही सिंगर्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी आप?
1: बस मैं सभी सुनने वाले सिंगर्स को यही कहूंगी, गाते रहिए। और हमारा सौभाग्य है कि हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जो आजकल काफी लुप्त हो गया था।
0: तो लीजिए दोस्तों, एक

0: और सुधा जी, अब वक्त आ गया है जब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए, ऑडियंस के लिए कुछ कहिए, उन्हें कुछ संदेश दीजिए।
1: सुनने वाले दोस्तों को यही कहूंगी, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मधुर, अपने जिंदगी जैसे गीत संगीत मधुर है वैसे अपनी जिंदगी को भी मधुर बनाइए। थैंक यू सो मच।
0: लीजिए दोस्तों, एक और गीत सुधा जी की आवाज में।

0: बहुत ही सुंदर गीत, बहुत ही सुंदर गायकी। सुधा जी आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे प्रोग्राम में आए। आपके गीतों को सुनकर सचमुच बहुत मजा आया।
1: लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरी ये आवाज है, ये सब ऊपर वाले के देन, इनकी कृपा हमेशा हम सब पर बनी रहे, वही एक प्रार्थना रहेगी। थैंक यू।

तो दोस्तों, ये थी सुधा जी अहमदाबाद से। तो दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर। हम जल्द ही और भी इसी तरह के कलाकार आपके सामने लेकर आएंगे। सुनना ना भूलिएगा और अकेले मत सुनिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को भी बताइए। फिर मुलाकात होती है। सुनते रहिए।

हेलो दोस्तों, मैं बोल रहा हूं आपका रेडियो दोस्त समीर। और आइए, स्वागत है आपका हमारे अपने कलाकार प्रोग्राम में। हमारे चारों तरफ, हमारे मित्रों में, हमारे संबंधियों में कई कलाकार ऐसे हैं जो चुपके चुपके अपनी इस कला का मजा लेते रहते हैं, और हम भी जब भी हमें मौका मिलता है उनकी कला को सराहते हैं। तो आइए आज मुलाकात करते हैं ऐसे ही एक कलाकार से। दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम में हमारे साथ जो आज की कलाकारा हैं, उनका नाम है बिथिका कमल। आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं उनके गाए हुए इस खूबसूरत से गीत से।

0: बहुत सुंदर गीत। बितिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, आपका बहुत बहुत आभार। प्रोग्राम को शुरू करते हैं और मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहूंगा कि आपकी जन्म स्थली क्या है, आपका जन्म कहाँ पर हुआ, उस जगह के बारे में कुछ रोचक बताइए।
1: मैं अंडमान निकोबार से बिलोंग करती हूँ और उसके बारे में कुछ रोचक जानकारी ये है कि वहाँ पे सबसे फेमस जेल पुराने, जो कि सेलुलर जेल के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ पे है, अंडमान पे है। और वहाँ पे दुनिया के सबसे पुराने आदिवासियों में से एक जनजाति वहाँ रहती है, जिनको हम जरवा करके बुलाते हैं।
0: जी, ये जो दोस्तों सुनते हैं बितिका जी का गाया हुआ ये प्यारा सा गीत,

0: दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइए बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए। बहुत सुंदर गीत। नितिका जी, अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अब भी आप कहाँ रहती हैं और उस जगह के बारे में क्या रोचक है वो बताएं।
1: फिलहाल मैं राजस्थान के सीकर जिले में रह रही हूँ और यहाँ पे, जो कि मैं ज़्यादा टाइम से नहीं हूँ, तो मैं यहाँ के बारे में कुछ रोचक जानकारी मैं आपको नहीं दे पाऊंगी
0: जी। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है वेदिका जी का गाया हुआ एक और नगमा।

0: दोस्तों आपका बहुत बहुत आभार है जो हमारे कार्यक्रम के हमारे कलाकारों के गीत आप सुन रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। अगर आप भी इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, हमें संपर्क करें। बहुत सुंदर गायकी। वृतिका जी, आप किस तरह के प्रोफेशन में हैं, या मेरा मतलब आप क्या करते हैं या क्या करते थे, उसके बारे में कुछ कहें।
1: मेरा प्रोफेशन सिंगिंग ही है। मैं अंडमान निकोबार के रेडियो पे गाती थी, दूरदर्शन में भी गाती थी, और फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि 2020 में कोरोना के सेकेंड डोज लेने के बाद मैं काफी बीमार हो गई थी। अब ठीक हूँ, बेहतर हूँ, पर मैं अभी घर पे हूँ।
0: जी बहुत सुंदर, तभी आपकी आवाज में इतना सुरूर, इतना ठहराव और इतना पकड़ है हर सुर की, बहुत सुंदर। आइए दोस्तों सुनते हैं इनका ही गाया हुआ एक और नगमा।

0: दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी। बितिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस गीत के लिए। ये बताएं बितिका जी कि गाने का शौक आपको कब से हुआ, आप कब से गा रही हैं?
1: मैं बचपन से ही गाती हूँ, क्योंकि मेरे मम्मा पापा दोनों ही इस प्रोफेशन से ताल्लुक रखते थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, तो इसलिए मैं बचपन से ही गा रही हूँ।
0: जी, बहुत अच्छे। तो फिर हमारे दोस्तों को एक और गीत सुनाइए।

0: बेहद खूबसूरत गायकी। नितिका जी, अब आप ये बताएं कि आपको संगीत में क्या पसंद है, किस तरह के गाने पसंद हैं, फिल्मी, नॉन फिल्मी, गजलें, भजन, क्या चीज?
1: मैं ऑलमोस्ट सभी गाने गाती हूँ, तो उनमें से फेवरेट मेरे गजल ही पहले हैं और मैं फिल्मी गीत भी गाती हूँ, पर नए गाने मैं बहुत कम गाती हूँ क्योंकि मैं पुराने पसंद करती हूँ, तो मैं पुराने गाने ही गाती हूँ।
0: जी बिल्कुल ठीक है, तो बिदिका जी हमारे दोस्तों को एक और गीत सुनवाइए।

0: दोस्तों आपका बहुत बहुत आभार है जो हमारे कार्यक्रम के हमारे कलाकारों के गीत आप सुन रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। अगर आप भी इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, हमें संपर्क करें। अब एक छोटा सा टिपिकल सवाल बितिका जी, आपका सबसे पसंदीदा गायक और गायिका कौन है और भला क्यों?
1: मैं मेल में किशोर जी को, देन रफी जी को और फीमेल में आशा जी, लता जी, इनको पसंद करती।
0: जी हाँ, बहुत सुंदर। तो एक गीत हो जाए हमारे दोस्तों के लिए।

0: बहुत ही प्यारा गाना। बितिका जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपका सबसे पसंदीदा गीत कौन सा है?
1: एक गाना तो कहना बड़ा मुश्किल है। मैं लता जी के काफी सारे गाने पसंद करती हूँ, जिनमें से रुके रुके से कदम है, फिर तुम्हें देखती हूँ तो ये है, फिर पानी पानी रे, काफी सारे गाने हैं जो मैं पसंद करती हूँ
0: जी। तो लीजिए दोस्तों, सुनते हैं इन्हीं की आवाज में एक और प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार रेडियो के साथ। विदिका जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपकी हॉबीज क्या हैं? जब भी आपको खाली वक्त मिलता है तो उसमें क्या करना चाहते हैं आप?
1: मेरी हॉबी सिंगिंग है और कुछ स्पोर्ट्स है जो मैं पसंद करती हूँ और खेलती भी थी, जिनमें क्रिकेट है और साइकिलिंग है और कबड्डी। ये मेरी पसंदीदा, ये मेरे हॉबीज है।
0: बहुत सुंदर। तो लीजिए दोस्तों, एक और गीत सुनते हैं वितिका जी का।

0: बितिका जी, हम उस जगह आ चुके हैं जहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जैसे ही सिंगर्स को कुछ मैसेज दीजिए, कुछ संदेश दीजिए जिससे उनका हौसला बढ़े।
1: सारे सिंगर्स को मैं यही कहना चाहूंगी कि आप दिल से गाएं, और गाने में सिर्फ सुर लगाने से नहीं होते हैं, सुर, लय, ताल, भाव, ये सब जरूरी है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए आप गाएं और फ्यूचर में आप जरूर कामयाब होंगे।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संदेश। लीजिए दोस्तों, एक गीत सुनते हैं बितिका जी का।

0: और अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए भी कुछ मैसेज दीजिए।
1: सुनने वाले दर्शकों से मैं यही कहना चाहूंगी कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं जो गाते हैं, आपके दिल बहलाते हैं, उनको सुनिए और खुश हो जाइए।
0: बहुत बढ़िया बितिका जी, आपका बहुत बहुत आभार जो आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। आपके गीत सुनकर बहुत मजा आया, हम आपके गीत सुनते ही रहेंगे और कई और नए गीत सुनने की हमारी इच्छा बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।

दोस्तों आपका बहुत बहुत आभार है जो हमारे कार्यक्रम के हमारे कलाकारों के गीत आप सुन रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। अगर आप भी इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, हमें संपर्क करें।